चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026 सुबह के 5:54 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सात बजे हिंदी में समाचार, सात बजकर पांच मिनट से लेकर नौ बजे तक सुनना मत भूलिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10 बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, विषय रहेगा आम चर्चा खास पहचान। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12 बजकर 5 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा प्ले इट कूल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 6:05 और 37 सेकंड हो चुके हैं। उगते सूरज की रोशनी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नई उम्मीदों के संदेश के साथ एक खूबसूरत सुबह आप सभी का इंतजार कर रही है। नमस्कार सभी श्रोताओं को, और रविवार की इस ताजगी भरी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम है सुप्रभात, मेरा नाम है नेहा और आज है संडे। तो संडे की जब मॉर्निंग होती है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और पूरे हफ्ते की थकान मिटाने की पूरी तैयारी हमें रखनी होती है। तो आज की ये सुबह और आज का ये पूरा दिन आप सभी के लिए बेहद शुभ रहे, इस बात की उम्मीद के साथ चलिए कार्यक्रम का आगाज हो रहा है एक मधुर गीत के साथ। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात।

यूं तो आज रविवार है और अक्सर हम यही मानते हैं और समझते हैं कि रविवार सिर्फ आराम करने का दिन है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, रविवार सिर्फ आराम करने का दिन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि नेहा को क्या हो गया है? तो देखिए, रविवार सिर्फ आराम करने का दिन नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करने का भी तो दिन है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का भी तो दिन है। कभी अपने मन की सुनिए, तो कभी अपनों से कुछ बातें कीजिए और खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। पूरे हफ्ते हम लोग इतना काम करते हैं, चाहे लोग घर में काम कर रहे हों या घर के बाहर जाकर दफ्तर में या जहां भी काम करते हैं काम कर रहे हों, तो ये काम करते करते हम कई बार अपने आप को भूल जाते हैं। तो रविवार का ये दिन आप जैसे भी शुरू कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे दिन में आपके लिए मुस्कुराने की बहुत सारी वजहें आपको मिल जाएंगी और आकाशवाणी इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि आपके चेहरे पर ये प्यारी सी जो मुस्कुराहट मैं अभी महसूस कर रही हूँ, ये हमेशा बनी रहे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना

0: सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 6:19 लीजिए जी, 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आपने वो गाना सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या बात है, गाना तो आपने सुना ही होगा। तो जिंदगी एक सफर है ये बात हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, और हम सब अपनी अपनी यात्राओं पर हैं। तो इस बात को ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ध्यान रखें कि भाई किसी को इस यात्रा की मंजिल जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए हमें खुद की तुलना किसी और से करने के बजाय ज़िंदगी का ये जो खूबसूरत सा सफ़र है इसको महसूस करना चाहिए और इसके मज़े लेने चाहिए। क्या बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए कंपेयरिंग आर सेल्स विद अदर्स विल नेवर बी बेनिफिशियल फॉर अस। इसीलिए अपने आप से तुलना करें और साथ ही इस सफ़र को जितना हो सके एंजॉय करें।

0: बजे और उससे पहले 7 बजे भी आकाशवाणी पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आप सुनिएगा। और मैं 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में आप सभी से मुखातिब हो जाऊंगी। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जहां पर महाराज परीक्षित जानना चाहते हैं भगवान की सृष्टि लीला, माया के साथ भगवान कैसे खेलते हैं, कैसे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, कैसे इसमें इतने जीव आ जाते हैं, कैसे उनको इतने सारे विषय प्राप्त हो जाते हैं जीवों को, और जीवों के हृदय में ही कौन बैठा रहता है, सब कुछ जानना चाहते हैं ये जो माइक सृष्टि की लीला है इसके बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस लीला को बताने से पहले श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और उनमें डूब गए हैं। तो बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की। हमने 12वें 13वें श्लोक का आस्वादन किया था, आज 14वें श्लोक में कह रहे हैं, नमो नमस्ते अस्त्व वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उनसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तो ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर परब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी अपनी स्तुति में भगवान के तत्वों को उजागर करते जा रहे हैं, है ना। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो स्तुति कर रहे हैं तो भी कितनी प्रेम से भरी हुई स्तुति है। देखिए, भगवान की स्तुति करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो बड़े ही भक्तवत्सल है, आहा कितना प्रेम है ठाकुर जी, जो अद्वैय अखंड ज्ञान तत्व है, जो इतने असीम है, वो भक्तवत्सल है। ये कितना सुंदर समाचार है समस्त भक्तों के लिए, क्योंकि अखिल जगत ही तो वही है, उनसे अलग कोई भी वस्तु कहाँ है, सब में वो है, सब उनसे है। और तो भी ये जान करके जो उनकी ही शरणागति लेता है और उनके अलावा वो कुछ नहीं जानता, तो भगवान उनसे प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं, अतिशय। देखिए, इस जगत में ना हम किसी से भी प्रेम कर लें, लेकिन हमें प्रेम का प्रतिकार मिल नहीं पाएगा, कभी प्रेम का प्रतिकार मिल नहीं सकता, क्योंकि इस जगत में सब कुछ स्वार्थ पर आधारित है। अगर कहीं से हम किसी के काम नहीं आ पाए, कोई मजबूरी हो गई, तो सारा प्रेम सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भक्त अगर किसी गलत मार्ग पे भी चला जाए तो भी भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं, भगवान उसे पकड़कर वापस लाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, है ना। तो भक्त वत्सल हैं और भक्त को वो इतना प्रेम करते हैं कि उसके हृदय में वो प्रकट रहते हैं,

भक्त जान जाता है भगवत तत्व को, उनकी महिमा को, उनके प्रेम को। भक्त आस्वादन करता है भगवान का और भगवान आस्वादन करते हैं भक्त प्रेम का। लेकिन कोई हठ पूर्वक भगवान को पाना चाहे लेकिन भक्ति का सहारा ना ले, भक्तिहीन साधन करे, जैसे ज्ञान मार्गी जो भगवान को सेव्य नहीं समझते हैं, वो तो सोचते हैं कि हम ही भगवान में लीन हो जाएं और अपने आप को मिटा डालें और हम भगवान हो जाएं, हम ही सेव्य हो जाएं। तो उनके लिए सेव्य और सेवक का संबंध नहीं होता है, है ना। भगवान की कथा सुनाएंगे भी, भगवान की कथा सुनाते हुए रो भी देंगे, लेकिन वो सब मिथ्या ही हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ये सोचते हैं कि भगवान जब इस संसार में लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो वो माया का सहारा लेते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि भगवान का शरीर माइक शरीर है, वैसे तो वो ज्योति ही है। तो इस प्रकार से वो भगवान के शरीर की अवहेलना कर देते हैं, भक्तिहीन साधन करते हैं। कई लोग हठ योग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भगवान को तो क्या, भगवान की छाया को भी नहीं जान सकते हैं, उनकी छाया तो कुछ हो नहीं सकते हैं। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान, और भगवान के समान किसी का ऐश्वर्य भी नहीं है। किसी भी भगवत स्वरूप का ऐश्वर्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त है शास्त्रों के अनुसार। तो फिर उनसे तो अधिक किसी का हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ऐश्वर्य युक्त होकर के जो श्री कृष्ण अपने धाम में निरंतर विहार करते हैं, निरंतर अपने गोकुल धाम में, वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, जो नित्य धाम है उनमें विहार करते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी नमस्कार कर रहे हैं भगवान के श्री चरणों में, है ना। तो ये है कृपा युक्त भगवान, कृपा युक्त जिनको कुयोगी प्राप्त नहीं कर सकते, वो जिनके हृदय में भक्ति के संस्कार नहीं है। भक्ति के बिना तो किसी भी कार्य में सफलता मिलना असंभव है। हमने सुना था जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के साथ अगर कोई भगवान का भजन करे तो वो जिन कामनाओं को चाहता है वो भी भगवान ही देंगे, नहीं चाहता है कुछ और चाहता है तो वो भी देंगे, कोई मोक्ष चाहता है तो वो भी देंगे, भगवान के चरण चाहता है तो भगवत चरण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हमारे हृदय में क्या है इच्छा, हम क्या पाना चाहते हैं, बस सारी बात यहीं पर है। तो ऐसे जो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, वो भक्तों के पालक हैं। भक्तिहीन लोग उनको जान नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं जान सकते हैं, चाहे वो कितने ही ग्रंथ पढ़ लें। अगर हृदय में भक्ति नहीं है, संशय है, तो भगवान ने गीता में कहा ही है, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में अश्रद्धा है, संशय है, और उन संशयों को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, अंदर संशय बुद्धि रहे, विश्वास ही ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल है भगवान को जानना समझना। तो इसलिए श्री कृष्ण जो कि भक्तों के पालक हैं, वो भक्तिहीन लोगों के द्वारा समझे नहीं जा सकते हैं। वो तो तब बहुत ही गुप्त रहते हैं उनसे, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तो योग माया के द्वारा समावृत रहता हूँ, सबके हृदय में प्रकट नहीं होता हूँ। सबके हृदय में हैं तो भी उनके हृदय में प्रकट नहीं होते हैं, उन तक लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो फिर भगवान जब सबके हृदय में हैं, प्रकट हैं, और लोगों का उन तक ध्यान नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि संस्कार हमारे भगवान से विमुखता लिए हुए हैं। तो ये जो भगवान हैं, ये हैं भक्त वत्सल, लेकिन जो
भक्ति के द्वारा उनको जानने का प्रयास नहीं करता, पाने का प्रयास नहीं करता, वो उनको जान ही नहीं सकता कभी भी। तो क्यों प्रकट हुए हैं भगवान, भगवान का अवतार क्यों हुआ है ब्रज में? तो अंतरंग प्रयोजन बता रहे हैं कि ये यादवों के साथ नाना विहार के लिए अवतीर्ण हुए हैं, ये यादव श्रेष्ठ हैं, परंतु कृष्ण बहिर्मुख योगियों के लिए वो दुर्विज्ञ हैं, यानी उनको जानना असंभव है। और साक्षात ब्रह्म के रूप में अपने वैकुंठ धाम में भी क्रीड़ारत हैं, वहाँ भी वो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ खेल रहे हैं, वहाँ भी वो अपने परिकरों के साथ खेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं अपने अचिंत्य प्रभाव से दूसरों की समता और आतिश्य को अतिक्रम करके अपने धाम में खेलते हैं, क्रीड़ा परायण है। ऐसे भगवान को सुखदेव जी नमस्कार कर रहे हैं अचिंत्य प्रभाव से। भगवान यहाँ पे भी क्रीड़ा करते हैं विभिन्न प्रकार के परिकरों के साथ ब्रजमंडल में, और अनंत वैकुंठों में भी भगवान अनंत स्वरूप लेकर के क्रीड़ा करते हैं। और ये नहीं कि जब भगवान अपने निज परिकरों के साथ, पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं तो भक्तों को भूल जाते हैं, जी नहीं, यही तो अचिंत्य माया है भगवान की, यही अचिंत्य शक्ति है। ठाकुर जी अपने भक्तों को पालते हैं, लेकिन जो कैवल्यवादी कुयोगी गण है उनके लिए दुर्गम है, वो भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भगवान के तन को भी माइक मानते हैं, जो कि सच्चिद आनंद घन विग्रह है, ऐसे भगवान को वो माइक मानते हैं। तो इसलिए यहां पर उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। तो सुखदेव गोस्वामी जी 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यच्छ्रवणम यदरहणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। आहा, यानी जिनके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण, जिनका अर्चा विग्रह दर्शन, जिनके चरण में वंदन, जिनका अर्चन हमेशा हमेशा के लिए लोगों के अनर्थ को नष्ट कर डालते हैं, ऐसे सुमंगल कीर्ति माधुर्यमय श्री भगवान को पुनः पुनः नमस्कार है। तो देखिए कैसे प्राप्त हो सकते हैं भगवान, एक तरीके से ये बताया, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। अगर भगवान के विषय में श्रवण नहीं होगा, उनकी महिमा का, उनकी लीलाओं का कीर्तन नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, उनकी पूजा नहीं होगी, उनका दर्शन नहीं होगा, उनके चरणों में वंदन नहीं होगा, तो अनर्थ कौन नष्ट करेगा, कैसे ही होगा, है ना? इसलिए श्री कृष्ण के प्राप्त होने में जो चीजें आड़े आती हैं वो है पाप। यानी हम श्री कृष्ण को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उनकी शरण नहीं लेते हैं। क्यों शरण क्यों नहीं लेते हैं, शरण तो लेनी चाहिए ना? तो उत्तर है, इतने पाप किए होते हैं कि शरण ले ही नहीं पाते हैं। भगवान के चरणों में अनंत पाप है हमारे, हम महापापी हैं, इसलिए भगवान के नाम की तरफ कोई रुचि नहीं होती है, भगवान की कथा सुनने में कोई रुचि नहीं होती है। उल्टा जो भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान का नाम लेते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। हम कहने को तो इंसान कहलाते हैं, परंतु राक्षसों से भी भयानक हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने अनंत अनंत पाप कमाए हैं, इसलिए है ऐसा। तो पापों को नष्ट कैसे किया जा सकता है, उसी का उत्तर बता रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान के
नामों का कीर्तन किया जाए।

0: भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा यत कीर्तनम, जिनके कीर्तन, जिनके स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका अर्चन, तुरंत ही समस्त लोगों के समस्त पाप राशि को नष्ट कर देता है। तो यदि क्षणम कहा गया, यानी जिनको देखने से, तो देखना अर्थात उनकी प्रतिमा का दर्शन करना, उनकी शिवमूर्ति का दर्शन करना। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने जब 5 साधन बताए भक्ति के, तो उनमें एक साधन अर्चा विग्रह है, शिवमूर्ति का अर्चन, शिवमूर्ति का अर्चन भी है ना। और जितने भी गृहस्थ हैं उनको तो शिवमूर्ति का अर्चन करना ही होगा, तभी उनकी भक्ति बच सकती है। तो भगवान के नामों का संकीर्तन और साथ साथ अर्चा विग्रह का पूजन भी होना ही चाहिए। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं 15वें श्लोक पर, जहां बताया गया कि जिनके विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण और जिनका शिव विग्रह दर्शन करने से, जिनके चरणों में प्रणाम करने से, जिनका अर्चन करने से लोगों के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सुमंगल कीर्ति युक्त माधुर्यमय शिव भगवान को पुनः पुनः नमस्कार है। तो ठाकुर जी क्या है, अतिशय अतिशय माधुर्यमय है, और हम माधुर्य के उपासक हैं। सब लोग सब सुंदर वस्तुएं चाहते हैं, खाने के लिए, देखने के लिए, व्यवहार करने के लिए, साथी सुंदर हो, मधुर हो। तो ये मधुमय तो यहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ये सब वस्तुएं मधुमय हो जाती हैं यदि इनका संबंध भगवान से हो जाए, तो ये सब मधुमय हैं, सब मधुर हैं, तब सभी सुंदर हैं। भक्तों का संग बन जाता है तब तो, तब कौन नहीं चाहता है ऐसे लोगों का संग करना जो भक्त हो। तो यहाँ पर वास्तव में सुखदेव जी कह रहे हैं कि केवल अवतार के समय भगवान अपनी सुंदर लीला यहाँ ब्रजधाम में प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है। अन्यत्र भी उनकी ये लीला प्रकाशित हो जाती है। अर्थात अब तो जैसे इस समय भगवान की प्रकट लीला तो नहीं हो रही, हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करे, उनके नाम रूप गुण का कीर्तन करे, श्रवण करे, तो धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं। और ये जब भगवान की लीला स्फुरित हो गई, हृदय में ही हो गई, तो फिर तो भगवान भगवान है, फिर वहां और क्या रह जाएगा उनके सिवा, वहां कोई अनर्थ अनिष्ट रह ही नहीं जाएगा, वहां कोई अन्य संस्कार रह ही नहीं जाएंगे, वहां तो सिर्फ भगवान ही रहेंगे, है ना। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और देखिए सत्य तो यही है, ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा तत्व कहीं नहीं है। तो करना क्या चाहिए हम लोगों को, मनुष्य जो है वो कैसे अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, तो हमारे देखिए आचार्य कहते हैं कैसे जीना चाहिए। ये नहीं कहा कि आप गृहस्थी मत करो, आप बाल बच्चे पैदा मत करो, आप सिर्फ सारा दिन सारी रात हरी हरी हरी जाप करते रहो, ऐसा तो भगवान ने भी नहीं कहा। भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम मुझसे विमुख होकर कुछ मत करो, सब कुछ मैं ही तुम्हें दे रहा हूं, ये तो देखो। इसलिए जो भक्त हैं भगवान को कभी नहीं भूलते, वो कहते हैं हरि हे तुम्हें जगतेर पिता, तुम्हें जगतेर माता, दयित तनय हरि तुम्हें, तुम्हें सुहृन मित्र गुरु, तुम्हें गति कल्प तरु, त्वदीय संबंध मात्र अमी। कि हे प्रभु आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत की मां हैं, आप ही पुत्र हैं, आप ही बेस्ट फ्रेंड हैं, सुहृद मित्र, आप ही गुरु हैं, आप ही हमें गति प्रदायक रूपी कल्प तरु हैं, बस आपके संबंध को ही मैं जानता हूं, आपके संबंध से ही मैं रहूं। तो मेरे घर में जो कुछ भी है वो वस्तुतः मेरा नहीं, वो आपका है। तव भृत्त परिजन गति प्रार्थी अकिंचन, प्रपन्न तुमार श्री चरणे, तव सत्व तव धन तुमार पालित जन, अमार ममता तव जने। आहा, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, माँ पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बाल बच्चे, इन्हें हम अपना बोलकर मानते हैं, ये हमारे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है। पर यहाँ हमें हमारे आचार्य समझा रहे हैं कि ये सब आपके सेवक हैं, ये सब आपके चरणों में शरणागत हैं, आप ही इन्हें गति प्रदान कर सकते हैं, ये आपके धन हैं, ये आपके पालित जन हैं, आप इनका पालन कर रहे हैं। और अगर मैं इनमें ममता बुद्धि रखूं तो यही सोच के रखूं कि आपके जन हैं, मेरे जन हैं, ये सोच के ना रखूं, आपके जन हैं, आपसे इनका संबंध है, इसलिए मेरी ममता बुद्धि इनमें है। अमार ममता तव जने, एई भक्ति विनोद कोय, अहंता ममता नोय, कृष्ण संबंध अभिमाने। तो यदि किसी के साथ प्रेम हो रहा है तो उसे श्री कृष्ण के संबंध से जोड़ करके प्रेम कीजिए। तो श्री कृष्ण का संबंध अगर बीच में रहेगा तो प्रेम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति ममता है और ये सब श्री कृष्ण के हैं, ये श्री कृष्ण का भक्त है। इसलिए प्रभु चूंकि ये आपका भक्त है या ये आपका जन है, इसलिए मुझे इसमें ममता है। तो सेवार संबंध धरी, अहमता ममता कोरी, तदितर प्राकृत विधाने। तो प्रभु मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, यानी ये आपका जन है इसलिए इनकी सेवा कर रहा हूं। तो सेवा के संबंध को लेकर अहमता ममता का काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्राकृतिक हो जाएगी सारी चीजें। ये लगने लगेगा ये तो मेरा बच्चा है, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा लाल है। सोचना जबकि ये है कि प्रभु आपके द्वारा प्रदत्त है, मेरा संबंध सिर्फ आपसे है, ये आपका जन है, आप ही को इसका पालन करना है, मैं तो बस आपका भृत्य हूं, प्रार्थी हूं, अकिंचन हूं, आपके चरणों में शरणागत हूं, मेरा भी पालन आपको करना है। ऐसा ना हो कि मैं इनमें इतना मत हो जाऊं कि आप ही को भूल जाऊं, ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना हो। तो एक जो भक्त है वो हमेशा भगवान के संबंध को लेकर ही किसी से व्यवहार करता है, नहीं तो भक्त को डर रहता है कि कहीं भगवान ना छूट जाए और माया ही मुझ पर हावी ना हो जाए। तो ऐसे जो भगवान है उनको अनंत अनंत प्रणाम कर रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी जी, है ना। भगवान का कीर्तन जीव के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और ये तो देखिए युग ही भगवान के नाम संकीर्तन का है। कलयुग इसीलिए तो धन्य माना जाता है कि यहाँ बहुत श्रम नहीं करना पड़ता भगवान को पाने के लिए, सिर्फ उनका नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम और राम राम और हरे हरे, कितना समय लगा, थोड़ी देर बैठकर संकीर्तन कर लीजिए भगवान के नामों का, थोड़ी देर बैठकर भगवान के नाम का जप कर लीजिए, भगवान की लीला का

स्मरण कर लीजिए, कितनी लीलाएं की हैं भगवान ने। चित्त किसी भी प्रकार भगवान में लग जाए, यही उद्देश्य है जीवन का। किसी भी प्रकार उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में कैसे भी ये चित्त पूरी तरह शामिल हो जाए तो चित्त मार्जित हो जाता है, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे हृदय में चला आता है। हम सारा समय माइक वस्तुओं का, माइक लोगों का ध्यान करते रहेंगे तो हमारा चित्त मलिन हो जाएगा, क्योंकि चित्त में एक गुण है, वो रंजित हो जाता है, वो रंग जाता है। जिस जगह उसे रख दोगे वो उसी रंग में रंग जाएगा। तो इस चित्त को साफ करना होगा, इस चित्त को भगवान में डुबोना है। तो उनके नामों का कीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनकी लीलाओं का स्मरण, और घर में भगवान की शिव मूर्ति को रख करके उनकी सेवा, उनका दर्शन, उनको वंदन, उनका पूजन, तो अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुण्य कीर्ति भगवान है। तो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनका स्मरण, इनका कीर्तन, इनका दर्शन, इनके चरणों में वंदन, नमस्कार, श्रवण, पूजन, सब जीवों के अनंत पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। बैठे बैठे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा कि दूर जाया जाए, वहां जाकर गंगा जी में डुबकी लगाया जाए। तो डुबकी लगा के क्या होगा? डुबकी लगाकर यदि पाप समाप्त भी हो गए तो बाहर आएंगे तो पाप फिर से करेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति तो नहीं गई। पाप करने की प्रवृत्ति तो है ही, क्योंकि चित्त तो रंजित है, रंजित है, रंगा हुआ चित्त है, दुसंग में गलत संग करते हैं, गलत चीजें पढ़ते हैं, गलत चीजें देखते हैं, दिन रात अपने को डुबो दिया है उसमें, तो क्या होगा? तब फिर भगवान याद नहीं आएंगे। भगवान में मन ऐसा डूबना चाहिए कि हर पल हर क्षण उनकी याद बनी रहे। तब क्या होगा? तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि चित्त में अन्य कोई वासना होगी नहीं, कोई इच्छा होगी नहीं। अनंत जन्मों के पापों से रंजित चित्त, भारी चित्त, भला भगवान में क्या लगेगा? तो शुरू में तो नहीं लगेगा, लेकिन जब लगने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि फिर कहीं और नहीं जाएगा। इसलिए हर चीज तुरंत तो फल नहीं देता। आप आम का पेड़ लगाइए, तुरंत तो फल नहीं आएगा, कई साल इंतजार करना पड़ता है ना। आप कुछ भी कीजिए, पढ़ने बैठिए, तुरंत तो नौकरी नहीं लग जाएगी। 25-30-40 साल लग जाते हैं लोगों को पढ़ते पढ़ते, तब कहीं एक अच्छी नौकरी लगती है। तुरंत ब्याह कीजिए, तुरंत तो बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, कम से कम साल तो लगेगा ही। तो समय तो लगता है हर चीज में। जब हर चीज में समय लगता है तो कोई ये क्यों सोचता है कि तुरंत अभी भजन करने बैठे मन लग जाएगा? जी नहीं, समय लगेगा, लेकिन अभ्यास करना होगा। निरंतर निरंतर निरंतर अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते चित्त भगवान में रंजित हो जाएगा, रंग जाएगा, और तब सब बहुत आसान हो जाएगा। भगवान के लिए रुचि पैदा हो जाएगी, आसक्ति पैदा हो जाएगी, और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार बारंबार नमस्कार है, जो जीवों के समस्त पापों को नाम मात्र लेने से नष्ट कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही है और इसी को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को

आपकी वाणी आकाशवाणी। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आ गया है आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला जिसे आप सुनते रहते हैं लगातार और अपने साथ साथ गुनगुनाते भी रहते हैं। जून का महीना चल रहा है लेकिन जून के महीने के अंदर मून की ठंडी वाली हवा को तरस रहे हैं। क्या करें भाई, ये जो महीना है ना साहब, ये ऐसा ही है। और जैसे जैसे मन में एक ख्याल आता है कि अब थोड़ा ये गर्मी है थोड़ा, तभी उस समय देखते हैं कि तेज धूप दोपहर में, पर रात में आजकल एक ऐसा हो जाता है कि तेज वाली आंधी होती है, फिर उसके बाद बरसात होती है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हम ये बात भूल जाते हैं। और जैसे ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, यानी कि देखा जाए सब कुछ मिक्स मिक्स मिक्स सा हो जाता है। तो फिर इस मिक्स मिक्स के साथ साथ हमारे साथ पास भी साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगातार आपके लिए काम की होंगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आपके साथ शुरू हो चुका है, आपका दोस्त लेकर आ गया है संडे वाला यानी कि फंडे वाला शो। तो फिर हमारी गली और मैं क्या जी उठ गए, होगी नींद पूरी आपके लिए।

और जी मैंने कहा कभी साड़ी गली भी आया करो, क्योंकि साड़ी गली विच बहुत कुछ है थोड़े वास्ते, क्योंकि असी भी थोड़े वास्ते लेकर आए ने चंगी चंगी इन्फॉर्मेशन, चंगी चंगी जानकारी। तो जानकारी में लेकर आपको बताएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन लेकर चलते हैं आपको आज वाले सफर में कि आज के दिन आखिर 14 जून का जो दिन था इतिहास के पन्नों पर उन्होंने क्या क्या कुछ ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो आपको आज याद करनी बेहद बेहद जरूरी है। तो हम देखेंगे 1775 के अंदर भाई किसकी स्थापना हुई थी, क्या कुछ हुआ था, गोल्फ वाले खेल का जो आयोजन था वो कहां पर हुआ था, किसने रेडियो पर अपना जो पहली बार भाषण दिया था, जाने माने वो कौन से निर्देशक थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था इस फिल्म के लिए, याद करेंगे कुछ खास व्यक्तियों को भी, और ऐसा कौन सा एक वो काम है जिस काम को करने के बाद आप लोगों की जान भी बचा सकते हैं, किसके साथ आप मनाएंगे अपना हैप्पी वाला बर्थडे और कहां पर चल रहा है उत्सव, इस सारी की सारी जानकारी देंगे हम आपको यहां पर। तो फिर बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर। रेडियो पर इंगे को मैं हूं, उंगे को तम हो, तो फिर हमारे साथ साथ में बने रहो भैया, क्योंकि आप हो तो हम हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बंधु। नीरज श्रीधर और कविता सेठ जी।

अगर आपको ये जानना है कि भाई 14 तारीख जो है आज की, जून के महीने की, वो भी 2026 की, ये आज तो आप जो कुछ कुछ नया नया इतिहास बनाएंगे ही। कोई किसी को आज पहली बार मिल रहा होगा, कोई किसी को आज गिफ्ट दे रहा होगा, कोई किसी को आज उपहार दे रहा होगा, किसी को गाड़ी मिलेगी, किसी को घर मिलेगा। लेकिन ये तो घटेगा कब, जब दिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों पर क्या कुछ लिखा हुआ है, ये आपको पता चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करते हैं 14 जून 1775 की, जब अमेरिकी सेना की स्थापना हुई थी। 1901 की 14 जून की वो तारीख थी जब पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और हम आपको बता दें कि जितनी भी जानकारी हम आपको देते हैं ये आपके काम की है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत काम आती है। तो फिर काम की बात ये है कि 14 जून 1907 की बात करते हैं, जब नॉर्वे में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिल गया था। 1922 की वो तारीख थी 14 जून की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति वॉरेन जी हॉर्डिंग ने रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया था। बात करते हैं 1949 की, जब वियतनाम राष्ट्र का गठन हुआ था 14 जून को। 1958 की बात करते हैं, जब डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 की बात करते हैं, 1999 14 जून को जब थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए थे। ले चल रहे हैं आगे आपको। अब 2007 की अगर हम बात करें तो 2026 अभी

राय, और मात्र 19 साल पहले की बात करते हैं, तो चीन के गोवी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। सोचिए अभी की बात, यानी कि अभी भी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ मिल रहा है। 14 जून की बात है वो, यानी कि इतिहास के पन्नों पर बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ ना कुछ रोजाना घट रहा है, आज भी कुछ ना कुछ घटेगा, तो ये जब होगा तो आपको पता लग जाएगा। बस गीत के बाद और आपको जानकारी देंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज किसके साथ आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गीत के बाद आपको बताएंगे कि आज किन की जयंती है, कि दोनों के दोनों एक अभिनेता एक निर्माता और निर्देशक कौन थे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, बंदे का नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला।

9 बजे से लेके 10 बजे तक जब दिल के तराने गाने नए पुराने होंगे, जब बैक टू बैक आपको म्यूजिक मिलता है, वहीं पर हम इनके गीत चलाएंगे, आपको इनके गीत से वहां पर रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि आज इनकी जयंती है। हम दो कलाकार की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत भूषण जी की, जिनकी आज जयंती है। आप देखेंगे अपने 52 साल के लंबे करियर के दौरान में, मतलब कितनी सारी उन्होंने फिल्में करी हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मुझे बरसात की रात की बात याद आती है, सुहाग राज उनकी मूवी थी जो 1948 की, वो बहुत मतलब इतनी कमाल का उन्होंने उस समय वो बिजनेस किया था। 1941 की फिल्म चित्रलेखा से उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप देखेंगे उनको, जो स्टारडम जिसको हम कहते हैं ना, 1941 से लेकर 1962 तक के बीच में जो उन्होंने निभाया, आहा, मैं कहता हूँ अगर आप एक गाना देखेंगे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये वाला गाना रफ़ी साहब के भी बहुत ही ज़्यादा करीब रहा। और कहते कि वो दुनिया की रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, तू गंगा की मौज में, ये वाले गीत कहते कि नौशाद साहब का संगीत और रफ़ी साहब की गायकी, और फिर ये उस दौरान में अलग अलग समय पर अगर हम किसी को कहते थे तो सबसे ज़्यादा यहाँ, हालांकि मधुबाला जी ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान में कहा था कि भारत भूषण जी बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं। अब देखिए तो कितना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, हालांकि अपने इस सफ़र के दौरान में उनको फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म मिर्ज़ा गालिब के लिए वो नॉमिनेट हुए थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार 1955 के अंदर जो फिल्म आई थी मिला गया। अब भाई देखिए, कलाकार जब आते हैं तो जब एक स्टारडम होता है उस समय तो सब ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे धीरे चल के फिर आप वो कहते हैं ना कि हम जब कैमियो करेक्टर हम करने शुरू करते हैं, तो 1992 भी अगर आप देखेंगे हम शक्ल फिल्म आई थी उसके अंदर भी इनकी भूमिका रही। अब बात करते हैं एक, मैं कहूंगा कि उस महान इंसान के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, करीम आसिफ साहब। फिल्म, इस फिल्म को बनाने के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपना घर तक दांव पर लगा दिया था। लेकिन जब कहते हैं ना कि आदमी को एक जुनून हो जाता है कि नहीं, जो फिल्म बनानी है, तो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हम कहेंगे निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, और मुगले आजम जैसी फिल्म जो बनाई, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कई सारी से फिल्में रही, लगातार काम करने वाली जो फिल्में होती हैं अपने आप में बड़े कमाल की फिल्में होती हैं साहब। और ये फिल्म 1960 की, कहते हैं ना कि फिल्म फिर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार भी मिला इसीलिए मिला। धूप फूल फिल्म आई थी 1945 में, हलचल आई 1951 के अंदर में, कई सारी फिल्में अगर आप देखेंगे ना होकर भी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी जो लगातार एक ऐसा एक आइकन बना के चली गई। मुगले आजम जब भी आती है, मैं एक मतलब व्यक्तिगत थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में अगर मुगले आजम फिल्म आ जाए तो फिर वो टीवी कहीं और किसी चैनल पर लग नहीं सकता, ज़्यादा नहीं तो

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

देखो, आपका दिल डांस और भी अच्छे से कर सकता है। अच्छे से मतलब जैसे आप चाहते हैं वैसे, और आपको ये दुआएं देता रहेगा कि वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या किया आपने। छोटी सी एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, जब मैं छोटी छोटी सी क्लासेस के अंदर पढ़ा करता था, तो वहाँ पर हमारे टीचर हुआ करते थे, उपाध्याय सर उनका नाम था। जब भी वो किसी बात को पूछने के लिए हम बच्चों से चाहते थे ना कि ये बात इनसे कैसे सच पूछी जाए, वो कसम देते थे, मम्मी मम्मी की कसम है। तो मैं कसम तो नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, देखो आपको सच सच बताना है, आप सच बताइए कि योग कौन कौन करता है। आप सुबह उठकर पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, नहीं करते हैं? वैसे भी अब देखो योग दिवस आने वाला ना 21 जून के लिए, तो अगर आप योग करते हैं तो उसमें आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कहावत यहां तक नहीं, सब विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, अच्छा मतलब एक छोटा सा एक मिथ है इसको आप कह सकते हैं कि भाई जो योग है वो तो भाई जब 50-60 साल के बाद हो जाते तब करना जाता है। साहब आप आज से करना शुरू कर दीजिए, मैं कहता हूं आपकी उम्र मात्र 25 साल है, 30 साल है, योग करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार। और एक बात और, कभी भी आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, जैसे हम भगवान जी से कुछ मांगा, ऐसे तो होता नहीं ना आपको एक ही दिन में मिल जाए, तो मिलेगा आपको जरूर, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसे ही योग पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो योग है उसकी भूमिका क्या हो सकती है, आप देखिए, हम आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, इवन कभी कभी बड़ी हंसी सी बात है, छोटे छोटे बच्चों से अगर स्कूल के अंदर जब मैं जाता हूँ, पूछते हैं छोटे बच्चे, अरे सर आपको पता नहीं गुरुजी, बहुत सर बहुत टेंशन है। अच्छा टेंशन है, किस बात की टेंशन है, इतना ये इतना वो। तो तनाव जो है ना साहब, वो हर किसी की जिंदगी के अंदर जुड़ा पड़ा है, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में हो। जो इंसान सोचिए अस्पताल के अंदर है, अगर वो अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहा है तो उसको भी तनाव है, घर में काम करना है वो भी तनाव है, सुबह बच्चों को उठने के लिए बोल दी वो तनाव है। तो अगर आप योग से जुड़ जाते हैं, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास हमारे शरीर को लड़ाई और उड़ान की स्थिति से, कहते हैं ना कि आपस में जो होता है, इससे निकालकर मरम्मत की अवस्था में लेकर आते हैं और आपको तनाव से मुक्ति दिलाते हैं साहब। अब एक शब्द है, मतलब बड़े बड़े लोगों के मैं कभी इंटरव्यू सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ मैं उनके, वो एक शब्द बोलते हैं कि ये हमारी जिंदगी के अंदर ये शब्द आ कहाँ से गया, नाम है डिप्रेशन। क्या बात है साहब, अवसाद जो शब्द है, कहते हैं कि ये पता नहीं भारत देश के अंदर ये शब्द कहाँ से आ गया, जबकि ये शब्द हमारे पास होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या कहते हैं, छोटे छोटे मतलब देखो हर किसी, अरे बस अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। किस बात का डिप्रेशन है भाई, आपकी जिंदगी अच्छी है, आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा एक शरीर दिया है, मानव रचना अगर आपको मिल गई तो फिर सब कुछ आपको मिल गया, तो उसके लिए अब उसका हमें ख्याल रखना।

नियमित योगा से आप अपने जो मस्तिष्क के अंदर जो कहते हैं ना डिप्रेशन वाला जो शब्द है वो जो धीरे धीरे बढ़ता है, आप इसको अपने चिंता और अवसाद के जितने भी लक्षण हैं ये सब कम हो जाएंगे अगर आप योग करना शुरू कर देंगे। और फिर आपके मन के अंदर क्या होगा, आपके मन के अंदर फिर लगातार पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आप नाचेंगे। और अब मैंने कहा ना आपका दिल आपको खुद थैंक यू बोला करेगा, वो थैंक यू लेकिन बोलेगा तभी जब आप लगातार इसके साथ काम करेंगे। मेडिटेशन योग लगातार कीजिए, ध्यान लगाइए, यकीन मानिए, मैं आपसे सच में विश्वास कीजिए इस बात पर कि ये बिल्कुल सही रहेगा और आपको देख देख कर और भी लोग आपसे प्रेरित होंगे। करेंगे ना, करेंगे ना। अब देखिए भाई, मैंने हमारे सर की तरफ से तो हम आपको कसम तो नहीं दे रहा लेकिन मैं आपसे बस पूछ ही सकता हूँ, करोगे नहीं करोगे बताओ मेरे को जल्दी से। और फिर अगर आप करोगे तो आप आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे किन के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। जुबिन नौटियाल का आपने नाम सुना होगा, जुबिन नौटियाल जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। प्रीतम चक्रवर्ती संगीतकार, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। किरण खेर, आज उनका भी हैप्पी वाला बर्थडे है। और पंजाबी सिंगर सरबजीत चीमा, आज उनके साथ भी आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आज शेखर सुमन जी का भी लिखा हुआ था लेकिन नहीं, आज नहीं है, वो गलत है, तो हमने आपको सही जानकारी आपको दे दी है, इसलिए बस अनजाय अनजाय। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, रेडियो पर इस तरफ मैं उस तरफ आप।

0: ओम नाम दीन्दु नाम भट ओम नाम भी वाम।
1: गाने के अंदर भी ऐसे ही कर रहे थे मिक्का जी, आम भट, अरे भाई साहब हटा के रखिए आप। यहाँ पर संगीत का जो जादू है इसको चलने दीजिए, लोगों के ऊपर खुशी की लहर बिखरने दीजिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी खास बात आगे बढ़ाने में है साहब। खुद आप बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरों को अगर आप बढ़ाएंगे, उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे, अगर आप उनको भी एक सही राह दिखाएंगे तो फिर वो आपके ही गुणगान जिंदगी भर तक गाएंगे। सोच के रखिए, क्योंकि लोगों को आगे बढ़ाने वाला इंसान जो है ना साहब, इस दुनिया के अंदर बहुत कम है। हर किसी इंसान को अगर आप देखेंगे वो टांग पीछे खींच के आपको बहुत दूर ले जाएंगे, तो फिर वहां नहीं जाना ना। अगर आप किसी का आगे लेकर जा सकते हैं तो अच्छी बात है। लोगों को जिंदगी अगर आप दे सकते हैं, इससे बढ़िया क्या कुछ होगा साहब। अब आप सोचेंगे यार क्या किया जाए, ऐसे क्या किया जाए साहब। आज के दिन तो कम से कम ये वाला काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के दिन का जो आज ये दिन है ना, इसको हम बोलते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है साहब। 14 जून 1868 से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता कॉल लैंडस्टीनर की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की उन्होंने खोज की थी। अब 2026 की जो इसकी थीम है, थीम क्या है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। अब इस जो देशों को लेकर नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि अरे भाई साहब अगर हमने ब्लड दे दिया कमजोरी आ जाएगी, पता नहीं रोड पर चलते चलते कब मैं गिर जाऊं। हैं भैया, अगर आपने खून दे दिया ना एक बार, बस उसके बाद तो तुम भाई साहब ऐसा हो जाएगा बिल्कुल बीमारी तुमको घेर लेगी। इतने सारे मिथ हैं, यानी कि लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है और उसकी भरपाई करने में भाई साहब महीनों लग जाते हैं। वाह, इतनी सारी गलत फहमियाँ पाल के रखते हो आप। लोगों को लगता है कि जो भ्रम है इस कदर लोगों के अंदर है, अरे भाई साहब मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि लोबाग रक्तदान का नाम सुनते ही अरे भाई इधर भागो, उधर घुस जाओ, टेबल के नीचे घुस जाओ, कोई हमें पकड़ कर ना ले जाए। अरे मेरे भले मानस, लोग अगर आप किसी को ब्लड देकर किसी की जान बचा सकते हो, और जो अगर आपका ब्लड है ना उसके अंदर अलग अलग जो रेड सेल्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, ब्लड निकाल लेते हैं, वो अलग अलग 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। 16 साल से अगर 60 साल की उम्र के बीच में आपकी उम्र है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका वजन 45 किलोग्राम से ऊपर है तो आप ब्लड दे सकते हैं। आप 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली साहब आपका जो ब्लड है, कहते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी पूर्ति जो है वो अपने आप में पूरी हो जाती है। एक बार में अगर कोई आपको ब्लड देगा 1 यूनिट यानी कि 350 ग्राम जो आपका वो ब्लड निकलेगा, क्या है साहब। लेकिन उस ब्लड को देने से आप सोच के देखिए कितने सारे ऐसे जो लोग हैं आप उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। एक आपको आंकड़ा बताता हूं, आप शायद उस आंकड़े को सुनकर आपको

लगेगा कि ये कमाल है यार, ऐसा भी है भारत देश के अंदर जो ब्लड रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी ज्यादा है कि यानी कि 1 करोड़ यूनिट की हमें आवश्यकता होती है 1 साल के अंदर। मिलता कितना है? 75 लाख। रह कितना गया? 25 लाख। कौन भरपाई करेगा साहब? कोई दूसरे देश वाले लोग आकर थोड़ी देंगे, हमारा देश है, हमें ही लोगों की जान बचानी है। भगवान न करे कल को कोई ऐसा हादसा हमारे परिवार वालों के साथ हो जाए, उस दौरान आप देखेंगे आप शायद अपने दोस्तों को फोन कर करके पूछते हैं, अरे यार कोई ब्लड डोनेट करने वाला है क्या, किसी के पास कोई ब्लड डोनेट का वो कार्ड पड़ा हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ होगा ना साहब आपके पास भी, तो आप ये काम आप भी कर सकते हैं, करके देखिए साहब लोगों की जिंदगी में सच में आप कैसे ना, अगर उजाला आप कर सकते हैं तो वो फिर आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप कहते ना कि कुछ काम जो वो बातों से नहीं वो करने से होते हैं, तो इसलिए करके देखिए। रोजाना नहीं कर सकते, आज तो ब्लड डोनेट वाला दे है तो आज ही कर दीजिए, ठीक रहेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे अब मुझे बताओ, पहले आप करोगे ना? 9868107070 मेरा नंबर है, इस नंबर पर मैंने आपसे दो ही चीजें पूछी हैं, एक आप रोजाना योगा करते हैं या नहीं करते हैं, दूसरी जानकारी ब्लड डोनेट करोगे ना? हाँ? गीत के बाद आपको बताएंगे कि कहां पर उत्सव मनाया जा रहा है, आज से शुरुआत होगी उसकी, सुनते रहिए साहब।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: और जी उड़ीसा वालों, अपनी अपनी पीठ को थोड़ा थोड़ा सा थपथपा लो, क्योंकि हमने कहा था ना गीत से पहले आपको बताएंगे कि आज से जो 3 दिन का उत्सव मनाया जाने का शुरुआत जिसकी हो रही है राजा संक्रांति, जिसको कहते हैं आप राजा परबा या इसको मिथुन संक्रांति भी कह सकते हैं, ओडिशा के अंदर मनाया जाने वाला ये 3 दिवसीय अनूठा त्यौहार है और इसकी शुरुआत कृषि कार्यों की शुरुआत के लिए और इसके साथ साथ धरती माता की उर्वरता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आज से शुरू होगा, ये 16 तारीख तक चलेगा, यानी कि आज कल परसों पहला दिन होगा इस त्यौहार की। पूर्व संध्या पर यह तैयारी का दिन होता है। साथ साथ में देखेंगे तो कल यानी कि मुख्य दिन होगा जब राशि जो है वो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेगी और कहते हैं कि यहां से मानसून की शुरुआत होती है। तीसरा दिन धरती माता को विश्राम दिया जाता है और तब ये उत्सव जो है समाप्त हो जाता है। तो फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बहुत बधाई, ओडिशा वालों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। टिंग टिंग टिंग के साथ अब नेहा फिर तैयार, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको काम की जानकारी मिलेगी। लगातार सुनते रहिए, 9 बजे से 10 बजे तक होगा बैक टू बैक झमाझम।
1: हो पैसे की हो बात तो कड़के बड़े बड़े बन जाते, पर ढन ढन गोपालों

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम ही तो हैं जो जमाना बनाते हैं और जमाने में जो मजेदार काम होते हैं, जिस बात से जमाना याद हमें रखता है वो हम ही तो करते हैं ना। तो आज संडे के दिन ऐसी क्या खास चीजें आप करने वाले हैं कि ये जमाना आपको याद रखेगा? भाई संडे के दिन तो रेस्ट वाला डे होता है, लेकिन खुद पे रिफ्लेक्ट करने वाला डे भी होता है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं। इसी बात से हमने शुरुआत की थी सुप्रभात की, और अब गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में नेहा मुखातिब है आप सभी से। सुबह के 8 बज चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार, और आप सभी को विश कर रही हूं अ वेरी वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग। आराम से आराम नाल हम सभी उठते हैं संडे के दिन, और कोशिश रहती है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करके आराम करें, और आराम के साथ जो काम करने हैं, अगले हफ्ते की तैयारी करनी है, वो भी धीरे धीरे धीरे हम करते रहें। तो ये जो लेजी सा डे है ना, इस लेजी सा डे को कुछ मज़ेदार बनाने के लिए अमेजिंग गाने हैं आज की प्लेलिस्ट में शामिल, और साथ में कुछ जानकारियों का पिटारा वो भी बीच बीच में खुलता रहेगा थ्रू आउट दिस शो। और फिलहाल सोनू निगम की आवाज में जरा क्या कह रहा है उनका गुस्ताख दिल, ये जान ले। गुड मॉर्निंग मेरी जान।

मैं हूं ना से गोरी गोरी, क्या बात है, बढ़िया सा गाना आपने सुन लिया। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मेरा नाम है नेहा और समय आपको बता दूं सुबह के 8:11 हो गए हैं। और अब बात कर लें आज के मौसम के, क्या मिजाज हैं, क्या कह रहा है आज का वेदर इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो फिलहाल दिल्ली का तापमान 31 और 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 38 डिग्री तक ये जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पर गिरेगा। यानी कि धूप खिली रहेगी आज और बारिश के आसार तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन पता है क्या होता है, गर्मियों की सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगती है कि गर्मियों में जब धूप खिली होती है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना, और बहुत आसानी से काम हो जाता है। और यही बात परेशानी की बन जाती है जब विंटर्स होती हैं और कई दिनों तक सूर्य देव अपने दर्शन नहीं देते और हमारे मोटे मोटे गर्म कपड़े धोना और उनको सुखाना एक चैलेंज बन जाता है। तो आज का ये जो धूप खिली हुई वाला मौसम है ना, आप इसका फायदा उठाइए, अपने कपड़ों को धूप दिखाइए और खुद भी अपना ख्याल आप जरूर रखिए। और हाँ, आपका अगर म्यूजिक वाला जो ख्याल रखने वाली बात है ना कि अच्छा म्यूजिक मैंने आपको प्ले करके सुनवाना है, तो वो यहाँ हो रहा है। अगला गाना एंजॉय कीजिए, तड़कते भड़कते मजेदार गाने आपके संडे को और बेहतरीन बनाने के लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मेरे साथ माई नेम इज नेहा।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट हौसलों

की उड़ान यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

सुबह के 8:20 और 36 सेकंड हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा है आपके साथ। और पता है अभी आप जब गाने सुन रहे थे तो मैं बैठे बैठे कुछ पुराने दिनों में चली गई थी। संडे का जो दिन है ये मुझे याद दिला रहा था। अब संडे का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन संडे को वक्त मिल जाता है थोड़ा सा सोच विचार करने का, तो मेरे दिमाग में पता है कौन सी बात आई कि जब मैं कॉलेज के दिनों की बात याद कर रही थी तो याद आया कि मैं बहुत ज़्यादा बस से सफ़र किया करती थी। DTC की जो बसें हैं उनमें आना जाना हुआ करता था, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और वो सफ़र मुझे बहुत ही मज़ेदार भी लगता था क्योंकि मेरी कोशिश रहती थी कि सबसे पहले जाकर आप पीछे की जो सीट होती है जो थोड़ी सी ऊंची होती है, और अगर विंडो सीट मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और फिर नज़ारे देखते हुए आप अपने गंतव्य तक पहुँचते थे। मुझे वो सफ़र बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा बस से सफ़र नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेट्रो से आना जाना होता है, या फिर आप ऑटो के ज़रिए सफ़र करते हैं, या फिर कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा बस से आना जाना बहुत बहुत कम हो गया है। लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर से बस राइड लूँ, और कैसा न्यू एक्सपीरियंस रहेगा फिर से आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आपके लिए एक ख़बर है, अगर आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि DTC बसों में सफ़र करते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। DTC ने सफ़र के दौरान यात्रियों के अनुभव और उम्मीदों को समझने के लिए एक ऑनलाइन पब्लिक फीडबैक सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे में शामिल होने के लिए लोगों को एक QR कोड स्कैन करके अपने फीडबैक के तौर पर कुछ आसान से सवालों का जवाब देना होगा, और आप सभी इस सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इस बस यानी कि DTC की बसों से सफ़र करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये QR कोड हमें कहाँ मिलेगा, तो DTC बसों के अंदर आपको ये QR कोड चिपका हुआ मिल जाएगा। बस स्टॉप पर आप ये देख सकते हैं, या फिर टर्मिनलों पर लगे पोस्टर्स पर भी आपको DTC बस फीडबैक QR कोड मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इस काम को करें और अपना फीडबैक शेयर करें, किस तरह की असुविधा अगर आपको हो रही है या फिर कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसका भी मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रश्न ज़रूर होगा, और आप अपना फीडबैक बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे गाने जो सच में जब भी सुनो हमेशा नए लगते हैं और बहुत दिल को छू जाते हैं।

90s के गानों की बहुत ही खास बात ये है कि वो कभी भी पुराने महसूस नहीं होते। हम जब भी सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में हैं जिस दौर में ये गाने आए थे, और हमेशा माइंड फ्रेश हो जाता है इन गानों को सुनकर। अब जब पुराने गानों की यानी कि 90s के गानों की बात हो रही है, तो एक और गाना मेरी प्लेलिस्ट में है आपके लिए। लेकिन आपको एक खास बात और बताऊं, मैं इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक रिसर्चर हैं और भारत देश के निवासी हैं तो आपके लिए क्या खास खबर लेकर आया है भारत सरकार, और ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और ये जो अगला गाना है, माय गुडनेस आई लव दिस सॉन्ग, सुनने में मजेदार, देखने में कमाल, गोविंदा और करिश्मा कपूर स्क्रीन पर है। फिलहाल आप इमेजिन कीजिए गाना कैसा है, कितना प्यारा है, और उसके बाद जानकारी सिर्फ आपके लिए।

0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक

0: वर्ड गूंजेगा
1: म्यूजिक मस्ती
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

वादे के अनुसार गाने के उस पार बताने आ गए हैं आपको एक जरूरी बात, और वो ये है कि अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप फाइनेंशियल हेल्प ढूंढ रही हैं, आर्थिक मदद के लिए आप किसी सरकारी फेलोशिप का लाभ चाहते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय की प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के लिए PMRC 2026 की शुरुआत की है। इस फेलोशिप के तहत वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और शोध संस्थानों में रिसर्च करने का मौका दिया जा रहा है। अगर ऐसे में आप भी भारत सरकार की इस फेलोशिप में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और वेबसाइट का पता मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, PMRC.education.gov.in। यह है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि रजिस्ट्रेशन विंडो 15 जुलाई तक पोर्टल पर ओपन रहेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और अब एक इम्पोर्टेंट गाना आपके लिए आ रहा है। वाई इम्पोर्टेंट? बिकॉज सोनू निगम बहुत मस्ती से धमाल कर रहे हैं, बाकी साथी भी गा रहे हैं, गाने में साथ दे रहे हैं। तो चलिए वॉल्यूम बढ़ा लीजिए थोड़ा सा और नाचिए थिरकिए।

0: 848 बाय द रेनबो क्लॉक। और अब आपको बता दें कि इंजीनियरिंग सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी की ओर से एक खास अपडेट है। और अपडेट ये है कि इंजीनियरिंग मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा 21 जून को होने वाली है, जिसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का पता है upsc.gov.in। तो इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर आप जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसके बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और मन में विश्वास के साथ आप दीजिए अपनी यूपीएससी की परीक्षा।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, Always wherever you are, 102.6 आपके लिए।

क्या बात है, मज़ेदार मस्ती भरा गाना आपने सुन लिया गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा और हमारा स्टूडियो अब कह रहा है, यानी घड़ी कह रही है स्टूडियो की कि अभी क्या वक्त हो गया है, सुबह के 8:53 हो चुके हैं और ऐसे में बस अब वाइंड अप करने का वक्त आ गया है कि शो को समेटा जाए और अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अगले बंदे को आने का मौका दिया जाए। तो आपको बता दें अगला शो रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, जिसमें जैसा नाम है वैसा काम होगा, नए और पुराने दोनों माने के गाने आपको सुनवाएंगे मनीष आजाद और उनके साथ आप एंजॉय कीजिएगा। और इसी तरीके से हर घंटे नया कार्यक्रम होगा, नया प्रेजेंटर, नई थीम और नई इंफॉर्मेशन के साथ न्यू एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आएंगे आकाशवाणी के सभी प्रेजेंटर्स। और आप सभी क्या करेंगे, अपने संडे को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करेंगे। कोशिश कीजिए बाहर ना जाए जब तक बहुत जरूरी काम नहीं है, घर पर चिल मारिए क्योंकि सारा दिन बाहर ही तो रहते हैं हफ्ते भर में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपना तो ख्याल रखेंगे, साथ में जो हमारे आसपास के लोग हैं, जीव जंतु हैं, कोशिश करेंगे कि उनका भी ख्याल हम रखें। और जो लोग ये करते हैं वो बहुत बहुत नेक काम करते हैं और हम इंसान हैं तो हमें नेक काम ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, बिना किसी के कहे, अपने मन से, अपनी मर्जी से। और हाँ, एक काम और है जो हमें अपनी मर्जी से और अपने मन से करना चाहिए, वो ये है कि अपने आसपास सफाई भी हमें बना कर रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई नहीं बना के रखेंगे तो हमें ही गंदगी का सामना करना पड़ेगा जो बीमारी का और परेशानियों का बहुत बड़ा सबब बन जाता है। चलिए आज के शो का आखिरी गाना मैंने शुरू कर दिया है आपके लिए, क्या बात है, अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल साथ में टीम अप होकर बना रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन गाना। इस गाने के साथ दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ, हैव अ वंडरफुल संडे, एंजॉय योरसेल्फ, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

और जी मैंने कहा समय बिल्कुल ये बदल चुका है, जब समय बदल चुका है तो इसका मतलब अब कुछ कमाल धमाल होने वाला है। कमाल धमाल होगा जरूर, क्योंकि दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर हाजिर आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला, हम यहाँ पर तुम वहां पर, तो फिर संगीत कहाँ पर भाई, संगीत भी आपके साथ में ही होगा, इसलिए सुनते रहिए और महकते रहिए और खुशबू को दूर तक बिखेरते रहिए, क्योंकि ये जो खुशबू है ना साहब, झमाझम वाला म्यूजिक बैक टू बैक होगा आपके साथ में। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, दोस्तों को पड़ोसियों को रिश्तेदारों को बता देना, शो शुरू हो चुका है, रेडियो पर आ चुका है मनीष आजाद रेडियो वाला। अरे हम अर्श और फर्श सब जगह पर हैं।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वैसे तो दिन इतवार का है, छुट्टी। अब छुट्टी का दिन है तो भाई आपको कहीं ना कहीं जाना तो होगा, क्योंकि आप तो घर में बैठने वाले हो नहीं ना। जब घर में बैठने वाले नहीं हो तो मैं आपको बता दें कि साहब जो बाहर का टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा बेकार है साहब, कहीं मत निकलो, घर में रहो। पंखा भी चलाओगे तो ठीक रहेगा, एसी की ज़रूरत वैसे अभी थोड़ी सी दोपहर में थोड़ी सी लगेगी, लेकिन अब तक तो सुबह तो ठीक रहेगा। फिर भी आपको नहीं मनीष भाई जाना है तो जाइए। मैक्सिमम टेम्परेचर इस समय जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस है साहब, कम वाले की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस है मौसम इस समय, यानी कि अभी तक तो ठीक ठाक है। शाम को फिर कह रहे हैं साहब ये आंधी आएगी, तूफान आएगा, फिर उसके बाद बारिश आएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी राहत मिलेगी, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक नया रात में सोते सोते सपना आएगा कि आप कहीं बाहर घूमने चले गए। सुबह जैसी होएगी जब सूरज आएगा, भाभी जी उठाएंगी, जाना है, तुम कहोगे नहीं क्योंकि जेब को अभी और जरा थोड़ा सा सताना है। फिलहाल दिल के तराने गाने नए पुराने के अंदर ये जो सेगमेंट है ना साहब, बिल्कुल बैक टू बैक झमाझम वाला म्यूजिक। और अब जो हमारे जो तड़के लग रहे हैं रेट्रो म्यूजिक वाले, हमने आपसे कहा था भारत भूषण और के आसिफ साहब, तो फिर कोशिश करेंगे लगातार उनके ही फिल्म के कोई गीत आपको सुनवाने के लिए। बेनी दयाल

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

चलो भाई साहब थोड़ा सा तेज़ चलो, चल चलो भाई साहब, चलो आगे को चलो भाई साहब, थोड़ा आगे को चलो मेरे भाई, आगे को चलो भाई, थोड़ा भाई थोड़ा गाड़ी देख के चलो भाई, कैसे चला रहे हो आप, कैसे चला रहे हो, हम भी चल रहे हैं, आप भी रोड पे चल रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी कि तेज़ चलाओगे तो आगे निकल जाओगे भाई, इनके को देख लो भाई, ऐसे होता ना रोड पर हैं, जब आप एक दूसरे को देख कर चलते हैं, कोई आगे आपसे निकल जाए तो आपको लगता है ये आगे निकल गया है, आप लगातार उस पर आँख बनाए रखते हैं कि ये आगे तो नहीं निकल रहा, अच्छा वो आगे निकल गया, अब अगले इसमें मैं आगे निकलूँगा, मेरा भाई ये ट्रैफिक है ट्रैफिक, इसके चक्कर में अगर पड़ गए तो भाई साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम आपको बता दें, अगर आप इस समय दिल्ली गेट से जाओगे आगे की तरफ दरियागंज की तरफ, तो जहाँ पे संजीवन हॉस्पिटल आता है वहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा ना इस समय ट्रैफिक जो है वो थोड़ा थोड़ा सा रुकिया पड़ा है, वहाँ पर लाल लाल लाल लाल है रही है, ठीक है, मतलब रुका नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मध्यम मध्यम चल रहा है, जो आपकी गाड़ी की स्पीड है पहले तो वो 40-50 होगी, लेकिन वहाँ पे जाकर वो 20 हो जानी है, बस इतना ही देर का है बस। अगर आप इस समय क्रॉट पेस का जो आउटर सर्कल है, इस आउटर सर्कल से अगर आप चेम्सफोर्ड रोड की तरफ निकलते हैं, फिर वहाँ से आप आगे नई दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस समय पहाड़गंज की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे आप लिबर्टी सिनेमा की तरफ, तो भी आपको ट्रैफिक का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। आरके आश्रम से जहां पर इस समय एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, एक तरफ का ट्रैफिक रोका हुआ है, इस वजह से वहां पर भीड़ और रिक्शे वालों को ये हाँ ये देखो यहाँ पर ये भी खड़ा भाई साहब, ये हरा वाला छोटा छोटा सा हाथी जिसको बोलते हैं वो भी यहीं पर खड़ा है। यहां से अगर आप निकल के जाएंगे जैसे झंडे वालन की तरफ, तो जब आप झंडे वालन से नोवल्टी सिनेमा की तरफ आप मुड़ेंगे तो वहां पर भी जो गोल चौराहा है वहां पर इस समय ट्रैफिक हल्का हल्का सा चल रहा है। ओ भाई साहब जी, अगर आप इस समय राजेंद्र पैलेस से अगर आप जेपी सिद्धार्थ होटल की तरफ से लेकर पटेल नगर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी देर वाला ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस समय मंदिर लेन से वंदे मातरम की तरफ जो जाता है, जो सेंट्रल रिज की तरफ निकल जाता है, मंदिर लेन से जब जैसे आप टर्न लेंगे ना आप शंकर रोड की तरफ, लंबा वाला ट्रैफिक है, यानी कि स्पीड जो है आपकी 10 हो जानी है, वहां पर चलता रहेगा लेकिन चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से एक तरफ वाला जो ट्रैफिक है धीरे धीरे धीरे वहां पर चला रहे हैं, क्योंकि वहां पर हाँ ये पटेल चौक से अगर आप वहां से आ जाएंगे तो आप अच्छी तरफ से निकलेंगे, अगर आप सामने वाले रोड से आएंगे तो वहां पर ट्रैफिक को धीरे धीरे धीरे करके एडजस्ट किया जा रहा है। ओ अगर आप इस समय चावड़ी बाजार की तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इस समय आपको हल्का सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। मिठाई पुल इस समय बिल्कुल भी, अगर आप देखेंगे दिल्ली जंक्शन जो आपका पुरानी दिल्ली स्टेशन से लेकर मिठाई पुल की तरफ जो रोड जा रहा है वहाँ पर ये लंबा वाला जाम आपको दिख रहा है, तो अगर आप अल्टरनेट रूट लेना चाहते हैं तो मोरी गेट की तरफ निकल जाए, वहाँ पर कश्मीर गेट, वहाँ से हैमिल्टन रोड और उसके बाद फिर जोरावर सिंह मार्ग पर आ सकते हैं। ट्रैफिक मैं आपको पूरा पूरा यहां पर बताऊंगा भाई साहब ये कहां पर है, बाकी तो ये चकाचक दिख रहा। ओ अगर आप इस समय प्रीतमपुरा की तरफ हैं तो मधुबन चौक पे जो है जहां पर जो रास्ता शिवा मार्केट की तरफ जाता है, मधुबन चौक से शिवा मार्केट की तरफ, वहां पर भी आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। बस बाकी तो आप इन इन जगह पर अनलकी है, बाकी तो आप लकी हैं क्योंकि आपको संडे वाले दिन तो

आपको घर से बाहर निकलना ही है ना, मुझे क्या करे। सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो पर। रेडियो की तरफ से जो आवाज आ रही है वो मेरी है, मनीष आजाद रेडियो वाला हूं। उधर आप बैठे हो, मुंडा सिंह की करण से भी किन्ने प्यार से फोटो की गल कर रहा है।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
9: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
10: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
11: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
12: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
13: भाई साहब, हम तो देखो

जा रहे हैं हम, लेकिन बता दें आपको कि हमारे जाने के बाद हिमानी स्टूडियो के अंदर होंगे लेकर प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, उसके बाद राजेश आएंगे प्रोग्राम लेकर पोस्ट बॉक्स 111 आपके साथ में होगा प्रोग्राम, उसके बाद आपके साथ में होंगी गीतिका उनियाल लेकर प्रोग्राम आशियाना, भावना नैयर आएंगे लेकर प्रोग्राम आपके साथ रेडियो डॉक्टर, इसके बाद चंद्रानी मुखर्जी आपके साथ होंगी, उनका प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। आज भाई भारत और पाकिस्तान का वुमेंस वाला मैच है, ज़रूर देखना साहब, हौसला बढ़ाना है भाजी, ध्यान रख लेना तुसी, है ना। उसके बाद में प्रज्ञा तिवारी आएंगी लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रहे, और हम भाई साहब उंगे के माइको जाती रहें, अपना ध्यान रखना है। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी हमें मैसेज किए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है जी, धन्यवाद है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के

0: यात्रा है, या ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली

0: योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम, फलों का राजा, जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में, हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
2: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान

0: में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
2: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
2: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है। करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान आम उत्पादक, हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर। और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन $57 मिलियन का ये हमारे यहाँ से जाता है। ये ताजा फलों के रूप में जाता है और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पचेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुफ्त उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं
1: जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
3: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र किया, दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है, दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली है। और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
1: जी।
3: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण।

0: हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं। और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए। और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है। और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी, तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
2: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं।
1: जी,
2: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है, इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी, संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
3: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं। और इसमें जो विभिन्नता है, उस समय के जो आपने सुना होगा, जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे, जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा रामकेला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है, जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं। और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री, यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह के खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है, जिससे उसमें अंश बहुत काम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है। और यहां जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए, और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्रायः देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है, तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है, जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।

0: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जितने हमारे शोध संस्थान हैं, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आधार पे कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
0: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे हो कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है, और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉयल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो आते हैं उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया है जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यही रिडक्शन वो कराते हैं, फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा, तो वहां जो मार्ग से झुक जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे, और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब
0: हमें हाँ, हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहाँ एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं, और सिंगापुर, हांगकांग ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है, और ये मैं कहूँ कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूंगा कि हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोगों ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वतन की चिट्ठी आई है, ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना सुनवा

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथ हैं। डॉक्टर जय प्रकाश प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं, उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास से उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखे तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है, और उसमें अभी भी हर साल फल आता है। तो सबसे अच्छी अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि

0: ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता था, हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है। तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं, उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
1: जी।
0: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं, जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था, इसलिए हिम सागर रखा। तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
1: जी,
0: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
1: जी,
0: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
1: जी।
0: तो वो जो उसका देखें तो करेक्टर है,
1: गुण हो गया।
0: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
1: जी।
0: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा, और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुण है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो, और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए
1: जी,
0: अगर आपने मैंजीफोरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे, अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
1: जी।
0: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेसिक हो जाए
1: जी। डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
0: निश्चित रूप से आजकल देखें तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया, और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफार्म, जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है, तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है
1: जी,
0: उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे लगा के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और जो MIDH है, जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें। हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है। जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे, ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे कहा जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया, लगभग 6 इंच गहरा बनाया, और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती
1: है।
2: उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं उसे मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया, उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि ये फरवरी का महीना होगा, फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
2: हमें जो फसल जो है लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी। इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
2: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
2: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है, तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
2: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा
1: रहती है जी। और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
2: गाना तो मैं जो है किसान आदमी हूँ, तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना सुना
1: जी ठीक है।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उड़ जाता है
0: जी। और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है
0: जी। मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती है और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमास है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर पाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी न बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है, ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर, जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल, लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये

0: वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही है जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं तो वहीं से उत्पाद आते हैं। तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में इसकी विशेष मांग रहती है। तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असामयिक बरसात हो गई टेम्परेचर बढ़ गया तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना उसे जब लगाना हो जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4 से 5 किस्मों का समूह लगाते हैं। इसमें होता क्या है कुछ अगैती होती है कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली और कुछ पछैती होती है तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से हम ताजा फल खाते हैं कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है। जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है जुलाई अगस्त की रहती है और उसमें जैसे रेशा कम होता है भंडारण क्षमता अच्छी होती है मध्यम मिठास की होती है खट्टा मीठा टेस्ट होता है अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है। तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान अब आगे बढ़ रहा है उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ अब हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए और विदेशी बड़े मार्केट है
1: जी।
0: उनके लिए भी देखना है और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है। हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात।
0: देखिए जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है खट्टा मीठा होगा कलर अलग होंगे छोटा बड़ा साइज होगा लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है रतौल है हमारे यहाँ से जाता है लंगड़ा चौसा दशहरी केसर है बैगन पल्ली है तोता परी इत्यादि जाती हैं। इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है पहला मांग वो है। दूसरा है जो वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं जो विदेशी लोग हैं यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन है वो मध्यम मिठास चाहिए वो खटास भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहां के मांग को मीट कर सके डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है जहाँ पे आम की वैरायटी जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें उसको ड्रिप पे ले जाएं उसको फर्टिगेशन पे रखें मल्चिंग करें बैगिंग करें इत्यादि से जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं जो उत्पादक है जो भंडारण करता है एग्रीगेशन करता है जो कोल्ड चेन से ले जाता है रिटेल में ले जाता है एक्सपोर्ट करता है ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें और 1-2 वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे इस तरह से होता है
1: जी। बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है
1: जी
0: वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे
1: जी। बिल्कुल।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जिसे हम टिकोरा कहते हैं या टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहने बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है, और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है। जैसे कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रह गई, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है, क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है जिसके चलते ये सारे फलों का दाम मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से ड्राइव कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति या परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाए। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है। लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: जी, यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा,
1: निश्चित रूप।
0: जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
1: 3-4 रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं, उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए। इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है, जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है, और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं।
0: जी, मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे, क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है इसलिए?
2: देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे, उससे फल को नुकसान नहीं होता था, अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है, इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
0: कमी आती है,
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते जाते हैं,
0: जी वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो जो है फल पैदा नहीं होगा।
0: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी, तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना चाहिए, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है, अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है।
0: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाएगा,
2: वो भी सब धुल जाता है।
0: जी, डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे, अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदें, चाहे कीटनाशक खरीदें, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पे आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसके उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
0: जी।
3: और जाके देखना भी चाहिए, जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहां तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहां के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहां किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूं कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आए, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा।
0: जी, चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
3: एक बात हो रही है, जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हों उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाए और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो, तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्य क्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है, फिर उत्पाद बनता है। आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है, तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं, किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
0: जी।
3: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्त भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज हुआ, बायोसेंसर्स कहते हैं वो, उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं अब खाने योग्य नहीं, इसको आप फेंक सकते हैं। तो जो भी AI है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन

0: स्टेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरी इंडस्ट्री को कर सकते हैं और ये क्षमता है और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूं, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए। और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं, गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।
2: धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज की ताज़ा।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
5: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: वेलकम बैक, योर विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो, एंड आई थिंक आई मिस्ड आउट लेटिंग यू नो माय नेम। ऑफ कोर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड इट, बट जस्ट इन केस समबडी आउट देयर स्टिल डजंट नो, वेल, yours truly Himani joining you for this edition of Play It Cool. And Ashish Nanta, oh my god, Ashish Nanta from Shimla, what do I say to you? I mean, thank you is a very very small word in front of this. Guess what, friends, he is trekking with his friends in the beautiful mountains of Shimla, surrounded by cedar trees, and along with that, can you imagine, he's tuned into our show. Thank you for so much love. We are truly indebted to you for this. And, well, the amazing music, I can't take credit for this one, because on this show, the music that comes out is on the request of each and every one of you out there. So thank you for making this show so very lively and so very meaningful. And Ashish, enjoy, but yes, please do be careful. And of course, M. Rajkumar from Trichy, Tamil Nadu is tuned in, and he says, reading book Digital Minimalism by Cal Newport, must read for everyone to better know the working of internet-based companies which shatter our attention. Okay, seems like an important one. Digital Minimalism by Cal Newport. And he says, also rereading The Art of Spending Money by Morgan Housel. Wow, that's great. And, Rich Dad, Poor Dad, beautiful book. And he says, reading books is my other passion apart from listening to Akashwani Rainbow. Wow, that's good. Yes, we know you are one of the most ardent admirers of Akashwani Rainbow, and we are grateful to you for that. And then this is D. Srinath once again. She says, currently I'm reading Pride and Prejudice by Jane Austen. What a classic. Absolutely. Wow, enjoy that one. And moving on, time now for me to put out another track. And D. Srinath, on your request, I found the one that you requested for. And why make you wait? Here it is.

0: Wet. With love is all around, and right now, please allow me to take a itsy bitsy break, and I'll see you on the other side with the trust that you will remain with me.
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य

0: सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें india post.gov.in।
4: मन की परतें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा

किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसके बारे में थोड़ी ही देर पहले अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार, और इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुँचा सकते हैं। और वैसे भी रविवार की ये जो दोपहर होती है वो अपने आप में खास होती है, क्योंकि आप बाकी दिनों की तुलना में इस दिन होते हैं थोड़े रिलैक्स्ड, आराम से 1 बजे लंच करते हैं, और लंच के दौरान आप लगातार जो बातें अपनी करते ही रहते हैं, और हम तो आपके साथ होते ही हैं 24 घंटे अपनी बातें लेकर, कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग जानकारियां लेकर, और गीत आपकी पसंद के इस प्रोग्राम में तो आप तक पहुंचते ही हैं। लेकिन कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हरदम हमारे अंदर एक भूख होती है कुछ नया करने की, एक ऐसी चाह जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इंसान को यही चाह साधारण से असाधारण बनाती है, और यही वो भावना है जो हमें हर सुबह एक नए उत्साह के साथ जगाती है और जीवन को केवल जीने के बजाय उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। तो क्या नया करते हैं आप, या क्या नया ऐसा है जो आप लगातार ट्राई करते हैं? कई बार होता है ना कि ऐसा हम सोचते हैं कि क्या नया, नया हर जगह हो सकता है। मसलन जो हम काम करते हैं हम उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या ऐसी नई चीज़ हम डालें जो हमारा काम बेहतर हो। अब जैसे

खिलाड़ी हैं, देखिए एथलीट्स हैं, लगातार दौड़ते हैं, हर समय ये ट्राई करते हैं कि पिछली बार जो समय निकाला था उससे बेहतर समय निकाले। कुछ इसी तरह से हम जो भी काम करते हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश हमारी होती है, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएं। कई बार ये होता है कि इन कोशिशों में सारी बातें आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन एक चीज़ है जो पहुँचती है, और वो ये है कि आपकी पसंद के गीत। तो आपको बता दें कि आप इस प्रोग्राम में अपनी पसंद के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी पसंद, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9868107070 9868107070। और आपका स्वागत करता हूं मैं इस गीत के साथ।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और मेरे साथ है बहुत सारे हमारे साथी जो व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातें, अपनी पसंद के गीत और उनसे जुड़ी हुई कुछ और दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे बात कर रहे थे कि कुछ नया करने की जो हमारी चाह होती है वो हमें बनाती है खास, क्योंकि जब हम अपने काम को और भी अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उत्कृष्टता की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो फिर हमारा काम बेहतर होता चला जाता है और हरदम कुछ नया करने की जो हमारी चाह है, जो भूख है, वो भी शांत होती रहती है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ नई चीज़ें आप सभी तक पहुँचाएँ। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर, और देखते हैं कि क्या नया, क्या खास आपने भेजा है, आज हमारे साथ साझा किया है। तो जैसे ही एक बजा, तब से ही आपके मैसेजेस जो है लगातार हम तक पहुंचने शुरू हो गए। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे कई दोस्तों ने हमारे साथ अपनी बातें साझा की और अपनी फरमाइशें हम तक पहुँचाई। उनके नाम मैं बता देता हूँ। नाम है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। इन्होंने मैसेज किया सबसे पहले, और उसके बाद पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कहाँ पीछे रहने वाले, तो एकदम मैसेज लिखकर तैयार थे। जैसे ही एक बजा, लंबा सा मैसेज इन्होंने भेज दिया और अपना जो मैसेज है उसमें उन्होंने बहुत सारे गीत भी हमें सजेस्ट किए कि ये गीत बजा सकते हैं, वो गीत बजा सकते हैं, और अच्छा लगा आपका ये मैसेज देख के। इसके अलावा सतरंग श्रोता परिवार के भी कई सदस्य हैं। अच्छा, सतरंग बोला है, देखते हैं 7 लोग हैं कि नहीं। नहीं, 6 लोग हैं और 4 लोग उधर, 10 लोगों का ये मैसेज एक साथ आया। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और अजय सोनवने, ये पुणावले पुणे से हैं, करिश्मा सोनवने, आविका सोनवने और विशाखा सोनवने, इन्होंने भी मैसेज किया है और अपनी बात लिखकर पहुंचाई है। हालांकि ये दोनों ही मैसेज हमें एक ही व्यक्ति द्वारा मिले हैं। इसके अलावा कविता टिहरी गढ़वाल से मैसेज लिखा, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। आपके इस गाने को मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तो नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, किसी और दिन हम ढूंढेंगे और इसको आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हीरो नंबर 1 फिल्म से गाना सुनाने की ये फरमाइश की है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल ने। इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में हैं हमारे कुछ और साथी जिनके नाम है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, और उनके साथ कई और लोग भी हैं, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ये सभी लोग हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि एक गाना सुनवाइए, और गाना भी क्या कमाल का था, क्या कमाल का है और क्या कमाल का रहेगा। और वो फिल्म भी बड़ी ही कमाल की थी, विश्वात्मा, और उस फिल्म का जो गाना आपने सुनना चाहा है

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे आप दिल से दिल तक और सात समुंदर पार भी हम सुने जाते हैं, क्योंकि अपने मोबाइल पर जब आप हमारा रेडियो ऑन करते हैं ऐप के जरिए न्यूज़ ऑन एयर, तो हम आप तक लगातार पहुंचे होते हैं। कहीं भी आप रहें, हमारा और आपका साथ लगातार बना रहता है। और इस साथ को बनाने में हम तो लगातार आपके साथ होते हैं, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लगातार मैसेज करते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते हैं। और जब हम आपसे कहते हैं कि क्या खास करते हैं, क्या नया प्रयास करते हैं, तो वो भी आप हमें बताते हैं कि हम ये नया कर रहे हैं। और नया करने की जो चाह है वो एक नई राह की तरफ हमें लेकर जाती है, और हम भी उस राह पर चल पड़े हैं। आपके मैसेजेस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए कि और आपने क्या क्या बातें लिखी हैं। गांव मलवाला ज़िला बठिंडा से बलराज सिंह मान और बलकार सिंह मान का मैसेज आया है। इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। गुड्डू धाकड़ जी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं बेडावन गाँव से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में हैं कई और हमारे साथी, जिनका नाम है राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा। इन्होंने मैसेज किया है हमें जम्मू और कश्मीर से, और इन्होंने कहा है कि किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो बिल्कुल जी, हमने इस प्रोग्राम में आपका नाम शामिल कर लिया है। और मैसेज किया है हमें, किसने भेजा है मैसेज, ये जनकपुरी नई दिल्ली से प्रदीप सलूजा और संगीता सलूजा जी ने, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं अपने दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जैसे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, जब अपनी बातें लिखकर पहुंचाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और साथी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ ने अपना मैसेज तो भेजा है लेकिन अपना नाम नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, नाम नहीं भेजा है तो अगली बार जब आप मैसेज करें तो नाम भी ज़रूर भेजें, और कहां से आप हमें मैसेज कर रहे हैं वो भी ज़रूर भेजें। हमें अच्छा लगता है जानना कि देश के किस हिस्से से आप हमारे साथ जुड़े हो रहे हैं और अपनी बातें जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत रावत का ऋषिकेश से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और मैसेज भेजने वालों में हैं कुछ और हमारे साथी, मैं उनके नाम ढूंढ रहा हूँ और नाम जो है लगातार बता रहा हूँ। सो वी हैव अनदर मैसेज फ्रॉम जर्मनी एंड दैट इज़ फ्रॉम इला एंड सौरभ, और उन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। शुक्रिया दोस्त आपका इतनी दूर से हमें मैसेज करने के लिए और अपने आप को हमारे साथ जोड़ने के लिए। और हमारे साथी हैं सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो

बस शो को इंजॉय करता हूँ और लगातार ये शो, ये इसी तरह से शो को इंजॉय करते हुए हमें अपनी बातें लिखकर पहुँचाते हैं। और मैसेज भेजने वालों में हैं, इनका नाम है, आपका नाम है बागेश्वर निषाद, गोरखपुर यूपी से आपने मैसेज हमें पहुँचाया है और आपने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और साथ ही साथ कुछ और भी हमारे साथी हैं। इन साथियों के नाम भी होते हैं, नाम है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, साथ ही खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है। और इन सभी लोगों ने मैसेज किया है और गाना सुनने की भी फरमाइश की है। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से इन्होंने शुभ दोपहरिया बोला है और लिखा है कि एक गाना है फिल्म दिलजले से, वो सुनवा दीजिए। तो दोस्त हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस गीत को आपने जो बोला है और उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की भी कोशिश करेंगे। और अगला जो मैसेज है वो है एक बार फिर से बोधराज खोरवाल, कमलारानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। साथ ही साथ मैसेज किया है हमें, किसने मैसेज किया है भाई, नाम तो आपका दिख ही नहीं रहा है, राहत और गजल। अच्छा ये आपका नाम है, मुझे लगा आप कुछ और ही, मतलब किसी सिंगर का आपने नाम लिखा है, कुछ गजल सुनना चाहते, लेकिन अच्छा है। नेटा और बिजनौर यूपी से आपने ये मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। और अगला जो मैसेज है ये है आफसा खानम का, धामपुर ज़िले से, बिजनौर ज़िला बिजनौर से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है, उत्तर प्रदेश से। पूछा है कैसे आप, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो आपकी फरमाइशें लगातार हम तक आ रही है और हम भी कहाँ पीछे हैं, आपकी फरमाइशों पर आप तक गीत पहुँचा रहे हैं। ये लीजिए

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस फरमाइशी प्रोग्राम में जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं और आपकी जो पसंद के गीत हमें मिलते हैं पहुंचते हैं हम तक वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचते हैं जो है 9868107070 9868107070। तो आप इस बीच क्या नया करने की आपकी लगातार चाह बनी रहती है कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि जो अभी तक मैसेजेस आए हैं कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका मैसेज नहीं है अब तक ऑन एयर किया गया है तो वो इसलिए होता है कि दोस्त हम धीरे धीरे धीरे धीरे आपके मैसेज तक पहुँचते हैं और जब तक हम पहुँचे तब तक आप एक और मैसेज करते हैं और आपका मैसेज चला जाता है एकदम ऊपर और हमें उस तक पहुँचने में फिर थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपका मैसेज अब तक नहीं पहुँचा है तो थोड़ा सा सब्र करें। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और हाँ कई बार समय की वजह से आपकी पसंद के गीत ना भी चलें तो भी हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गीत हम चलाएं जो आपकी पसंद के हैं और अधिक से अधिक गीतों को शामिल करें। लेकिन अगर नहीं भी चला तो कोई बात नहीं आपका नाम तो शामिल हो ही रहा है और आप हमें मालूम है कि समय की पाबंदियों को समझते हैं और समय ये कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और आपकी पसंद के गीत आप तक पहुँचाते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार।

0: सौजन्य से।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और मेरे साथ हैं बहुत सारे लिसनर्स। चलिए पहले चलते हैं अपने लिसनर्स की तरफ, यानी कि उनके मैसेजेस की तरफ, और देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दिया है। मोहम्मद मिमशाद अली बिहार से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और हमारे कुछ और साथी हैं जो हमसे जुड़े हैं और बहुत ही प्यार से लिखा है। प्रिय प्रसारक जी, प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। लिखा है कि प्लीज़ एनी सॉन्ग। और ये धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। बहुत अच्छे, अच्छी बात है आपने लिखकर मैसेज हमें पहुंचाया, भेजा हम तक। मोनिका पौड़ी गढ़वाल से, इनका भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और जैद और हुदा का भी मैसेज आया है गाज़ियाबाद से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज किया है विश्व ओम त्यागी ने मुरादनगर से, और मुरादनगर से ही गांव दूल्हापुर से भेजा है मैसेज हमें कई लोगों ने। उनके नाम मैं बता देता हूँ, नाम कई हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, तो जी बिल्कुल ठीक है, आपको हमने पूरे प्रोग्राम में ही शामिल कर लिया है, गीत से ज़्यादा बढ़ के। और अगला मैसेज है कविता जी का, इनकी पसंद का गीत तो नहीं चला, लेकिन इनका एक मैसेज है बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा है मैसेज में अपने कि देवभूमि उत्तराखंड अभी चारधाम यात्रा चल रही है, तो कृपया तीर्थ स्थल पर कूड़ा कचरा ना छोड़ें, किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। ये बात इन्होंने लिखकर हम तक पहुँचाई है। और अगला जो मैसेज है वो है, किसका है ये मैसेज? हाँ, डॉली का मैसेज है, दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आए। हाँ, कई बार थोड़ा सा अंतराल हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े दिन के बाद आते हैं तो थोड़ा कहने के लिए बहुत कुछ होता है एक दूसरे के साथ। तो आपने भी कहा ये है कि कुछ नया करने का कुछ फिक्स नहीं होता है, बस जो भी करती हूँ ये सोच कर करती हूँ कि पहली बार कर रही हूँ, और आइडिया अपने आप आ जाता है। वाह वाह, क्या बात है, ये ज़रूरी है। कहते हैं ना कि कोई भी काम तब तक नहीं होता शुरू जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। एक बार हम शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उस काम को करने के, उसको सफल बनाने के रास्ते हमें मिलते रहते हैं। विवा का गोवा से मैसेज आया है, पूछा है कि आपका खाना हुआ है कि नहीं। बिल्कुल खा पी कर आए, और हमें उम्मीद है कि आप भी अब तक लंच जो है कर चुके होंगे। और दिल्ली में बारिश शुरू हो गई ऐसा पूछा है इन्होंने, तो दिल्ली में बारिश अभी मैं स्टूडियो के बाहर देख रहा हूँ तो थोड़ी धूप लग रही है। हाँ, ये धूप छाँव का खेल चल रहा है। बीच में दो दिन पहले रात को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो ऐसा देखते हैं कब होती है बारिश। बारिश का इंतज़ार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैसेज किया है हमें प्रकाश शिंदे जी ने, इन्होंने लिखा है कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर दिन किसी अच्छी प्रेरणादायक या व्यावहारिक किताब का कम से कम एक अध्याय

ज्ञान में वृद्धि हो। क्या बात है, ये पढ़ने की आदत जो है ना वो जिंदगी भर हमारा साथ देती है, और जब एक बार ये किताबों से दोस्ती हो जाए तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है ज्ञान अर्जन का, बहुत सारी जानकारियों का। और किताबें जो है, कहा भी जाता है कि हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे आप हमारे दोस्त हैं। अगला जो मैसेज है, किसका है मैसेज, ये देख रहे हैं आपका नाम मिल नहीं रहा है लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाम है आपका श्याम शंकर मौर्य, और ये हमने कहाँ से ढूंढा, आपके प्रोफाइल पिक के जस्ट नीचे लिखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, आपने लिखा है अपने गाने की फरमाइश, और बिल्कुल दोस्त हम कोशिश करेंगे इसको ढूंढने की। और भी मैसेज है कई जिन्होंने हमें मैसेज तो भेजा बाद में लेकिन डिलीट भी कर दिया, पता नहीं क्यों डिलीट किया, क्या लिखा होगा। अब ये मैं सोचता रहूँगा, लेकिन सोचने से क्या होगा, करने से होगा। करते ये हैं कि अगला मैसेज हम शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से एक बार फिर से इनका मैसेज आया, और इन्होंने किसी बात के लिए धन्यवाद कहा, तो शुक्रिया दोस्त आपका भी। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और तायरा का भी मैसेज आया है ऊपरकोट बुलंदशहर से, और कई हमारे और साथी इनके साथ, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार, ये सभी लोग मैसेज करके बोलते हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल जी, हमने शामिल कर लिया आपको। मेरठ से संजय बोल रहे हैं, लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और बोलने की स्पीड जो है थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही है, तो पत्नी मायके चली गई हैं तो ये जो है हमारी भी हाजिरी लगा लो, तो स्पीड ज़्यादा तो ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए धीरे धीरे बोलता हूँ। पत्नी मायके चली गई हैं तो सारे घर के काम आपको खुद करने पड़ रहे होंगे, थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन ये जो वो समय है जब आपको आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि समय के साथ आत्मनिर्भर बनते हुए आप सभी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। कंचन सोनिया विहार से लिखा है इन्होंने कि हमें मुस्कान मूवी का गाना सुनना है, ये गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की। तो दोस्त कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी इसलिए भी बोलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और अच्छा लगा कि आप लोग समय के साथ साथ फीडबैक देते हैं और हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए अब कोशिश हमारी ये है कि एक और फरमाइश आप तक पहुँचे, और वो जो फरमाइश है वो है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, और गाना जो आपने सुनने की फरमाइश की है वो है ये वाला।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और अब समय है इस प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और लेने का, और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी जो बातें हम तक पहुंची है उनको हम और लोगों तक पहुंचाते हैं, साथ ही आपकी जो पसंद के गीत हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश और मेरे साथ है बहुत सारे हमारे साथी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजा है जोया ने और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। वैसे एक बात आपकी, जो आपने बताया ना कि मेलबर्न से आपने भेजा है और आपकी बात से ही मुझे एक हमारी लिसनर है डॉली, उनकी बात याद आई कि उनका एक सपना है कि कभी वो सात समुंदर पार जाए। जब वो गाना सुन रही थी तो उनको लगा कि सात समुंदर पार कभी किसी दूसरे देश जाए और वहाँ से हमें मैसेज भेजे। तो एक तरह से कई बार क्या होता है कि जो हम कर रहे होते हैं वो किसी और का सपना हो सकता है, और बहुत सारे सपने हमें ऐसे भी होते हैं हमारे साथ कि हम उनको पूरा कर सकते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए बस थोड़े एफर्ट की जरूरत होती है, कुछ नया करने की जरूरत होती है। तो वो नया करने की कोशिश लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैसेज है राधेश्याम शर्मा जी, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का है। इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और जिला पन्ना मध्य प्रदेश से कई साथी हैं हमारे, इन्होंने मैसेज भेजा है, सारा डिटेल भेज दिया इन्होंने फिल्म का, कैसे कैसे क्या है, किसने गाना लिखा था, और ये गाना सुनना भी इन्होंने चाहा है। हर्षवर्धन जी, AK पांडे, इनका मैसेज आया है और लिखा है, किसने लिखा है मैसेज, ये दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने लिखा है कि हमने भेज दिया था मैसेज। तो दोस्त भेजा था आपने, लेकिन थोड़ा सा वेट करते तो हम ज़रूर आपके मैसेज तक पहुँचते। कई बार क्या होता है कि हम आप तक पहुँचे इससे पहले ही आपका मैसेज आ जाता है और हमसे आपसे थोड़ा सा दूर हो जाते, फिर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जैसे हम पहुँच गए आपके पास, फिर से इसी तरह से हम पहुंचे जाते हैं आपके पास एक बार फिर से। और अगला जो मैसेज है वो है सुषमा का, दार्जिलिंग से रेगुलर लिसनर है हमारी और इन्होंने के गाने की फरमाइश की थी। इनकी फरमाइश जो है वो पूरी भी हो चुकी है और उसके बाद इनका एक बहुत ही प्यारा सा इमोजी भी आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला जो मैसेज है वो है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नाम मिल गया, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का मैसेज है, एक गाने की फरमाइश की है। और साथ ही साथ मैसेज हमें भेजा है हमारे कुछ और साथी हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इनका भी मैसेज आया है हम तक पहुंचा है। और अगला जो लिखा है मैसेज, लिखा है इन्होंने, थोड़ा लिखा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं, आपका नाम है रामदेवरा से दिनेश चौहान जी। अच्छा, आपने दोबारा से ये बातें लिखी, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, आपने प्यार भरा मैसेज जो हम तक पहुंचाया, हमने उस मैसेज को पूरा पढ़ा और निश्चित रूप से आपके जो मैसेज हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें नई ऊर्जा देते हैं नया कुछ करने के लिए, लगातार आपके साथ बने रहने के लिए, कुछ और बातें आप तक पहुँचाने के लिए। अगला जो मैसेज है इनका नाम है, नाम है इनका हरिकिरण सिंह जी, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लगातार मैसेज अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैसेज हमारे साथ साझा करने के लिए, आपकी बात जो है हम तक पहुंच गई है। और मीनाक्षी का बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मैसेज आया है, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। साथ ही साथ मैसेज भेजा है हमें, किसने भेजा है, इनका नाम है आकांक्षा मुंबई से। इन्होंने लिखा है कि काफ़ी दिनों बाद आपको सुन के अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों बाद आप लोग एक बार फिर से प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आप तो लगातार बने ही रहते हैं, लेकिन हाँ कई बार हम बीच में नहीं होते हैं तो फिर जब आते हैं तो अच्छा लगता है आपकी बातें जो हम तक पहुँचती हैं, उनको पढ़कर, उनको जानकर, आपके बारे में जानकर। अगला जो मैसेज है इनका नाम है मनोज सिंह लाजवंती गार्डन से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है रोहिणी दिल्ली से है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इनका नाम है तवाब और मैसेज किया है, किसने किया है दोस्त, आपके मैसेजेस दोबारा भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर इन सभी चीज़ों को। नवलू वर्क मलपड़ गोवा से इन्होंने लिखा है, मैसेज हम भेजते हैं लगातार, मैसेज कई बार नहीं पढ़ा जाता, तो दोस्त कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी पढ़ा जाता है मैसेज, तो आप उसको बुरा ना माने, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और इस कोशिश में अगर कई बार होता है ऐसा, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे इतने करीब हैं कि आप हमारी इन चीज़ों को दरकिनार करके आप हमें फिर से मैसेज करेंगे और अपनी बातें हम तक पहुंचाएंगे, और हम अगली बार आपके मैसेज को ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैसेज किया है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशुन है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और साथी हैं हमारे, इनका नाम है आपका नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, इन्होंने लिखा है, अपनी बात लिखकर पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं ना हमारे जिनका मैसेज ना आया तो लगता है कि कहाँ हैं ये लोग, तो इस तरह के हमारे ये भी हैं साथी जो लगातार अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं और अपनी बात लिखकर पहुँचाई है, अपनी पसंद का गाना सुनने की भी फरमाइश की है। सोनिया विहार दिल्ली से कंचन का भी मैसेज आया है। तो दोस्त अब समय है कि एक और गीत आप तक पहुँचाया जाए और उसके बाद वापस आया जाए आपकी कुछ और बातों को आप तक पहुंचाने के लिए।

दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनकी वाइब ही अलग होती है। मतलब ये गाना आप सुनते तो ऐसा लगता है कि ये कुछ अरेंज मैरिज का मामला है और इनको पता नहीं है कि कैसे होगी। इसके अलावा भी कई गाने ऐसे रहे हैं, जैसे एक गाना बहुत पहले आया था वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है, तो कुछ इसी तरह की फीलिंग्स देते हैं। खैर गाने से निकल कर हम वापस आते हैं आपके मैसेजेस की ओर आते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुँचा दी हैं। तो मैसेज जो भेजा है अगला ताहिर कुरैशी ने भेजा है, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। थोड़ा पुराना है लेकिन ठीक है, आपने ये गाना बोला है तो इस गाने को हम ढूंढेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और प्रमिला कर्नाटका से भी मैसेज इनका आया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। सतवीर सैनी, गौरव सैनी का बिजनौर से मैसेज आया है। और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं जिनका नाम मैं जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ओखला के संगम विहार से, दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता का भी मैसेज आया है हमारे पास। और मैसेज किया है ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, बहुत सारे हमारे साथी हैं, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार पोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का। अगला जो मैसेज है वो है अभिनव ध्यानी का और नीरज ध्यानी का, कोटद्वार गढ़वाल से, इन्होंने भी मैसेज किया है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और मैसेज किया है उमेश कुमार ने ख्याला से और लिखा है कि हमारा मैसेज कहाँ इग्नोर कर दिया। कहाँ इग्नोर किया दोस्त, जब तक हम आपके मैसेज तक पहुँचे आपका अब एक और मैसेज था और आपका मैसेज जो है वो और ऊपर चला गया। इसके अलावा मैसेज आया है, इनका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, अच्छा इनका नाम तो हमने शामिल कर लिया था, हरकिरण सिंह फर्रुखाबाद से इनका मैसेज आया था। और देवेंद्र इंगती का मैसेज आया है, ज़िला कार्बी अंगलोंग असम से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैसेज

0: भेजने वालों में हमारे साथ हैं हमारे साथी जी एस गिल पटियाला से, इन्होंने मैसेज भेजा है, और मैसेज भेजा है हमारे साथ राजेश भल्ला जी जो कि एडवोकेट हैं कंकरखेड़ा मेरठ से। बड़ा थोड़ा देर में आपने मैसेज भेजा है दोस्त, लेकिन आपने भेजा मैसेज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगा आपका मैसेज देखकर। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और हमारे साथी हैं मोहम्मद फुरकान, लगातार शिकायतों का दौर चल रहा है दोस्त, थोड़ा सा इंतज़ार अगर आप कर लेना तो ये शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाए। देखिए आपका प्रोग्राम में हमने मैसेज शामिल किया है और अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, कई बार शिकायतें भी करते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो फिर ये शिकायतें दूर भी हो सकती हैं। इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में कुछ और हमारे साथी हैं, जल्दी जल्दी उनका नाम ले लेते हैं क्योंकि समय अब जो है वो थोड़ा कम बचा हुआ है इस प्रोग्राम में। तो मैसेज जो है इनका नाम है मनोज सिंह, इन्होंने मैसेज किया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लगता है, जब मैं काम से आता हूं तो एफएम रेनबो चलाता हूं, तो बहुत अच्छा करते हैं आप ये। तो और मैसेज भेजा है किसने, इनका नाम है नोएडा से योगेश, और मैसेज भेजा है किसने, इनका नाम है ग्राम रजौनी ज़िला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और परिवार है। तो ये तो रहे हमारे वो साथी जिन्होंने मैसेज किया, लोगों के नाम हमने शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपका नाम शामिल नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नाराज मत होइए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैसेज हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो आपसे थोड़ी देर बाद जो प्रोग्राम लेकर आएंगे वो हैं गीतिका उनियाल, प्रोग्राम छोटे उस्ताद में बहुत सारी बातें आपसे वो करने वाली हैं और आप उनकी बातचीत सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल राजेश को दीजिए अनुमति, और चलते चलते एक और जो मैसेज आया है वो अनुज कुमार का, सुनीत कुमार का, दिनेश कुमार, उमेश कुमार, अच्छा इनका नाम रह गया था, इन्होंने ख्याल से मैसेज भेजा है, तो आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और अब वो वाला गाना जिसकी फरमाइश की है हमारे एक साथी ने, और वो गाना थोड़ा सा पुराना है, लेकिन कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये गाना थोड़ा सा सुनने को कम मिलता है, तो हमने सोचा कि चलिए इसको हम बिल्कुल आखिर में आप तक पहुंचाएंगे, और वो गाना जो है वो अब हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो इस गाने के साथ ही राजेश को दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर जिसका नाम है 102.6 एफएम रेनबो। चलते चलते ये गीत आपके लिए, नमस्कार।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाला, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम। आपके आशियाने में रह गुजर है उन छोटे छोटे परिंदों की जिनको आप उड़ना सिखा रहे हैं, और जब एक दिन वो उड़ना सीख जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि आपके छोटे छोटे उस्ताद अब उड़ान भरने लगे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आपसे आज साझा करूंगी बड़े ही कमाल की बात कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सोचते, कितने बड़े बड़े सपने हम खुद पिरोते हैं अपने हाथों से। लेकिन कहते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक पहल, हर एक कदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले बच्चों का खान पान और उनका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। तो चांद की तरह चमकेंगे हमारे घर के उस्ताद, खास तौर पर तब जब हम उनका रखेंगे ख्याल।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त छोटे उस्ताद, आपके घर के उस्ताद, यानी कि छोटे उस्ताद आपके जीवन में एक खासा जगह रखते हैं, एक अलग मुकाम, एक अलग पायदान पर आपने उन्हें रखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो आप हर बात को एक जिम्मेदारी समझ लेते हैं और आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे का भाग्य निश्चित रूप से आप द्वारा ही निर्मित होना है। किस तरह की परवरिश बच्चे को दी जाए, किस तरह की पढ़ाई, कौन से स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, किस तरह के कपड़े बच्चे पहने, कैसा उनका आचार व्यवहार हो, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज के युग में बना हुआ है ज़्यादातर अभिभावकों के साथ, वो ये बच्चों का खान पान। बच्चों का खान पान हमारी लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी बदल गया है। एक वक्त होता था जब बच्चे 3 वक्त का आहार लेते थे, वो भी पौष्टिक आहार, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और हम हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि पेट भर लिया जाए, खाना खा लिया जाए, चाहे जो भी मिले। अब जब इस आदत का शुमार हमने कर लिया है कि कुछ भी खा लिया जाए, समय नहीं है बहुत से लोगों के पास कि वो घर पर एक बैलेंस डाइट मील बना सकें, तो ऐसे में बच्चों को भी वही परोसा जाता है जो माता पिता खाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब अर्ली और डेवलपिंग ईयर्स होते हैं बच्चों के, तो उस वक्त पौष्टिक आहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको नज़रअंदाज करने का अर्थ ये है कि आने वाला कल इन बच्चों का खतरे में हो सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से ये ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के उस पड़ाव में जब शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए था, तब हमने पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जूसेस देकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, उनकी सोच को बिगाड़ दिया, उनके मन को बिगाड़ दिया। तो क्यों है महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार और कैसे हम पौष्टिक आहार को रोज़मर्रा की जीवन में शामिल करें, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे को भी उचित आहार मिले। तो आप मेरे साथ गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर छोटे उस्ताद।

भाई हम तो यही कहेंगी कि आपके घर के बच्चे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत प्यारे हैं आपके लिए, और क्योंकि आप जानते हैं और आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपका बच्चा कल चलकर किसी मुकाम पर पहुँचे। पर हम यही कहेंगे कि हर वो संस्कार जो घर में प्राप्त होता है उसी लेगेसी को बच्चा आगे लेकर चलता है, चाहे फिर वो अच्छा खाने की आदत ही क्यों ना हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा खाना क्या होता है, क्या हम चाट पकौड़े ना खाएं, क्या हम अपनी जीभ को सुख ना दें, क्या हम तमाम व्यंजनों का स्वाद ले ये महसूस ना करें कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम कुछ भी खाएं, हम खाएं सब कुछ लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यवस्थित कर लें। कहते हैं कि हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, हमारे बच्चे हमसे वही सीखते हैं और वही कहते और करते हैं, और ये बात हमारे खान पान पर भी लागू होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम जो उसे खिलाते हैं वो वही खाता है, क्योंकि बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। जब बच्चा स्वाद लेना शुरू करता है, खाना शुरू करता है, तो हम उसे अलग अलग चीज़ें खिलाकर ये आभास दिलाते हैं कि स्वाद कैसा है। दूध पीते बच्चे को दूध पिलाकर खुश किया जा सकता है, लेकिन जब एक बच्चा एक स्टेज पर पहुंचता है जहां उसे सॉलिड्स खाने होते हैं, तो वहीं बहुत से माता पिता कुछ ऐसा बना बना कर अपने बच्चे को खिलाते हैं कि उसे महसूस होने लगता है कि हाँ ये स्वाद है। अब जब बच्चा छोटा होता है, उस वक्त जब हम अलग अलग चीज़ों को बच्चे तक ले जाते हैं, उसे खिलाते हैं, हेल्दी फूड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक प्यारा सा आभास खाने के प्रति उत्पन्न होता है। बहुत से माता पिता हर कौर हर निवाला बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, लेकिन कुछ माता पिता बच्चे को स्वयं खाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक साथ बैठ जाना और उसके बाद बच्चे की थाली में वही खाना रखना जो खाना आप खुद खाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे में खाने के संस्कार को उत्पन्न करता है। और जब बच्चा आपको खाते हुए देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये खाना है और इसे खाना है और इस तरह से खाना है। आप हाथ से खाते हैं तो आपका बच्चा हाथ से खाएगा, अगर आप चम्मच से खाते हैं तो बच्चा चम्मच से खाएगा। खैर, यहाँ मुद्दा ये है कि आप अपने बच्चे की डाइट को कैसे पहले से प्लान करें, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप जो खाएं वही अपने बच्चे को खिलाएं, जो खाना आपके प्लेट में हो वो उसकी प्लेट में हो, सब मिलजुल बैठकर जब खाएंगे तो बच्चों को खाने की आदत बनेगी। अब अक्सर हम बच्चों को ऐसे पदार्थ हाथों में पकड़ा देते हैं जिन्हें पकड़ाकर हमें लगता है कि हमने अपना दायित्व तो अपनी जिम्मेदारी खत्म की। जो बच्चे खाने पीने में आनाकानी करते हैं, हम सोचते हैं बच्चा कुछ तो खा ले, इसके पेट में कुछ

तो जाए। यहां मुद्दा कुछ तो जाने का नहीं है, यहां मुद्दा है कि आपके बच्चे के पेट में कुछ ऐसा जाए जिसको खाने के बाद उसको स्वाद भी महसूस हो और कहीं ना कहीं उसके शरीर तक भी वो पौष्टिक तत्व पहुंचे जिनके लिए आप इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। कहते हैं कि शरीर का हर एक भाग अच्छे खाने के लिए तड़पता है, तरसता है, और जिस तरह से उसे वो खाना मिलता है, शरीर के उस हिस्से का विकास उस तरीके से होता चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर चाहे फैट्स हों, विटामिन्स हों, आयरन हों, मिनरल्स हों, सब कुछ ही तो महत्वपूर्ण है ना। तो हमें इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है कि जो हमें खाना है वो बच्चे को खिलाना है, और जितनी कोशिश करनी है वो ये कि हमें बच्चों को बाहर के खाने से, पैक्ड फूड से, बचपन से ही दूर रखना है। क्योंकि जो बच्चे बाहर का खाना बचपन से ही खाने लगते हैं, फिर वो घर में खाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, वो ना नुकुर करने लगते हैं और आपको अपने पीछे भगाते हैं। आप एक एक निवारा लेकर उनके पीछे भागते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको कुछ और टेस्ट करा दिया है जो ज़्यादा चटपटा है, जो जीभ को ज़्यादा स्वाद दे रहा है। तो भाई जनाब, अभी आप पे निर्भर करता है कि आप अर्ली स्टेज से ही अपने बच्चे की खाने की आदतों को कैसे डेवलप करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, खास तौर पर छोटे बच्चों को लेकर, साझा करूंगी ज़रूर। और सब माता पिता कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे तो जी बात होगी, लेकिन हम उसके लिए काम कुछ नहीं करते।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वैसे प्यार करते करते इतना प्यार करने लगते हैं कि बच्चे फिर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और एक कहने लगते हैं कि आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, और बस बच्चों की बात सुनकर उनकी मन चाही चीज़ हम बाजार से लेकर उनको खिलाते हैं। अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए क्योंकि बच्चों को ज़िंदगी के हर रंग से रूबरू तो कराना है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें निर्धारित करना है कि कब बच्चे को कौन सी चीज़ खिलाई जाएगी। और कहते हैं कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, तो इस मेहनत की चाह को अपने बच्चे के अंदर भी हमें डेवलप करना होगा। अगर बच्चा फरमाइश करता है और ये कहता है कि आज आइसक्रीम खिला दीजिए, आज चिप्स का पैकेट ले आइए, आज ये कर दीजिए, आज वो खिला दीजिए, तो आप ना उनके आगे एक छोटी सी शर्त रखिए कि आज पेज एक पेज हैंडराइटिंग तुमने मुझे कर दिखा दी, या 10 दिन तक करके दिखा दिए, या 10 पेज करके दिखा दिए, जो भी आप निर्धारित करें, तो मैं तुम्हें ये चीज़ खिलाऊंगा। लेकिन इसको भी आदत ना बनाए ये तब कि जब बच्चा बहुत जिद करता है और कहता है कि नहीं मुझे तो खाना ही है, तो खाना ही है इसका तोड़ मैंने आपको बता दिया। कि बच्चे को एक टारगेट दीजिए और टारगेट देने के बाद उसकी मन चाही चीज़ हफ्ते में एक दिन के लिए निर्धारित कीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन खाने का भी होना चाहिए। कितने बजे खाना है, क्या खाना है।

प्लेट में रखी हुई हर चीज का स्वाद लेना है, पेट भर के खाना है। जब बच्चा पेट भर के खा लेता है तो उसका दिल जो है कुछ और खाने के लिए नहीं भटकता है। वैसे तो बच्चे चाहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहे, ये उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है जो भरपेट भोजन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी आदतों में शुमार करना होगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर बच्चे तक ब्रेकफास्ट पहुँचे, हेल्दी ब्रेकफास्ट पहुँचे, लंच के टाइम पर लंच और डिनर के टाइम पर डिनर। खाने का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। कितना खाना है, कैसे खाना है, ये तो आप अपने घरों में किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं इस बात पर निर्धारित करेगा। लेकिन आप टाइम टेबल अगर बना लेते हैं कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है तो ब्रेकफास्ट खाना ही है। अब देखिए आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैक्सिमम बच्चे देर से उठते हैं। अब देर से उठते हैं तो फिर देर से खाते पीते हैं और देर से खाते हैं तो पूरी दिनचर्या इसमें बदल जाती है। ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिन्हें बचपन से ही लागू कर हम अपने बच्चों को निर्धारित कर सकते हैं। और जैसे जैसे पढ़ाई बच्चों की आगे बढ़ती है ना, तो ऐसे में बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ हेल्दी बनाकर दे सकते हैं 3 मील्स के बाद भी, क्योंकि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अक्सर ये चाहते हैं कि उन तक कुछ ऐसा पहुंचे कि वो बीच बीच में खाते भी रहें और पढ़ाई भी करते रहें, और क्यों ना करें। कहते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका दिमाग स्वस्थ होता है, तो आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। और ये बच्चों के साथ भी होता है ना। पर हाँ, एक आदत जो आपने अपने बच्चों के अंदर डाल दी है बचपन से ही ना, उसके लिए अब आप कंप्लेन मत कीजिए। आप यही कहेंगे ना कि हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उनकी ये आदत जा ही नहीं रही। अब उस आदत का शुमार, उस आदत की शुरुआत भी तो आपने ही की है। कौन सी है वो आदत, बात करेंगे इस नगमे के बाद।

चकरकचीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद और छोटे उस्ताद में आज हम जिक्र कर रहे हैं कि क्यों, कैसे, किन बातों का हम ध्यान रखें, खास तौर पर जब हम बच्चों की डाइट के, उनके हेल्दी फूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि आप उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा आहार, अच्छा पोषण ज़रूर पहुंचाएं। और वो कैसे होगा, जब आपकी किचन बहुत हेल्दी होगी, आपकी किचन में वो तमाम सामग्री उपलब्ध होगी जो सिर्फ हेल्दी फूड की ओर अग्रसर होगी। अब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे की प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, दाल, रोटी, सब्जी, है ना, दूध, दही, मक्खन, तो आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिसनर्स, अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए ऐसी बात कह रही हूँ। और अलग अलग तरीके हम ढूंढते हैं, कभी हम दाल का चीला बना लेते हैं कि बच्चे कुछ ना हो तो अपने टिफ़िन में दाल का चीला लेकर जाए, इडली बना लेते हैं घर पे, और हम चाहते हैं कि बच्चों तक वो सभी पौष्टिक तत्व पहुँचें, इसलिए हम आयरन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, एक उम्र में बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है, तो हम उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं उसके आहार में, चाहे वो स्कूल का टिफ़िन हो या फिर लंच हो या हो हमारा डिनर, जो ज़्यादातर लोग अक्सर साथ बैठकर करते हैं, कि दिन में वर्किंग पेरेंट्स घर पर नहीं होते, दादा दादी घर पर हैं, तो बड़े प्यार से अपने हाथ से बच्चों को खिलाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा खाना पूर्ण रूप से खाए। अक्सर माता पिता देखते हैं कि बच्चों के टिफिन जो हैं वो

वापस आ रही हैं, तो मदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चे के टिफ़िन को कैसे हेल्दी बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के टिफ़िन में फ्रूट्स ज़रूर रखें। फ्रूट्स से कहीं ना कहीं बच्चे को तरावट महसूस होती है, ख़ासतौर पर जब गर्मियों का जिक्र होता है, गर्मियों की बात होती है तो खाने का मन थोड़ा कम करता है। ऐसे में नॉन फ्राइड फूड हम अपने बच्चों के टिफ़िन में रखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं और खुश खुश होकर घर आते हैं, उनका टिफ़िन भी हमें खाली मिलता है। नहीं तो अक्सर जब टिफ़िन भरे घर आते हैं तो ज़्यादातर गृहिणियाँ यही कोशिश करती हैं कि फूड को, खाने को वेस्ट नहीं करना, वो खुद खा लेती हैं। क्या करें, हम मदर्स होती ही कुछ ऐसी हैं। तो हमें बच्चों की फूड हैबिट्स को पहले डेवलप करना होगा, जो हम खाएं वो उन्हें खिलाएं, उनको आदत डलवाएं कि इस निश्चित समय पर हमें खाना खाना है, उनकी प्लेट में हमेशा हेल्दी खाना हो, सब कुछ हो, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, पल्सेस हों यानी कि दाल हो और दही हो, रोटियों में अगर बच्चे घी लगाकर खाते हैं ज़रूर आप उनको घी दें और उनकी दाल में भी आप घी उन्हें दे सकते हैं तो उनको फैट भी मिलेगा। बच्चे क्योंकि दौड़ते भागते कूदते फांते रहते हैं तो यकीन मानिए उनका फैट वैसे ही सारा गल जाता है। लेकिन वो पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाहर का खाना खिलाते हैं, उन बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है और कहते हैं कि जब कोई समस्या घर कर जाती है तब फिर उसके लिए बच्चों से ये कहना कि अब आप मत खाओ या आप ऐसी चीज़ें खाओ जो हेल्दी है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक जिम्मेदारी जिसे आज के पेरेंट्स को, यानी कि आज के जो यंग पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा, वो ये कि हर माता पिता ये कहता है कि हमारा बच्चा बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना खाता ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मोबाइल फ़ोन का ये जो चस्का है बिल्कुल खाने के साथ साथ जो फ़ोन को देखकर खाने का जो चस्का है, ये चस्का भी जनाब आप ही ने दिलाया है। एक तो आपके पास सहनशीलता का कम होना और ऊपर से समय की कमी, और तीसरा बस आपका ये सोच लेना बच्चा खा ले, बस इसके पेट में कुछ चला जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं, हम चैन की नींद सोएं। पर जनाब कहते हैं कि बच्चों के लिए ना आपको हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके खान पान पर भी अर्ली स्टेजेस में बहुत ध्यान देना होता है। अब हम करते क्या है, बच्चों को खिलाने के लिए अक्सर फ़ोन पर कार्टून्स लगा दिया करते हैं। जिस दिन आप बच्चे को कार्टून या मोबाइल फ़ोन नहीं देते हैं, मैं यकीनन इस बात को यहाँ दावे के साथ पेश कर सकती हूँ कि आपका बच्चा उस दिन खाना नहीं खाता। वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि वो जो इतना बड़ा सा मुंह खोल लेता है हर एक निवाले के लिए, वो उस निवाले के लिए नहीं, वो उस कार्टून कैरेक्टर के लिए, उस मोबाइल फ़ोन के लिए अपना मुंह खोल लेता है जिसके लिए वो तड़प रहा होता है। मुँह तो बस खुल जाया करता है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल कहेंगे इसके पीछे एक तोड़ छुपा हुआ है, जोड़ छुपा हुआ है। तोड़ की बात तो बाद में होगी पर पहले जोड़ छुपा हुआ है, क्योंकि बच्चा उस वक्त अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं है। उसको बस इतना मालूम है कि उसकी आंखें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, तरंगें उसकी आंखों तक पहुंच रही हैं, उसके मुँह के स्वाद से ज़्यादा उसको आँखों का जो चित्रण है, जो यानी कि उसकी आंखों तक पहुंचने वाली जो रोशनी है वो ज़्यादा आकर्षित महसूस होती है। तो सब कॉन्शियसली वो अपना मुंह खोल देता है क्योंकि उसके सामने निवाला आता है और उस निवाले को बिना चबाए वो घूट जाता है। और आप सोचते हैं कि बच्चे ने खाना ख़त्म कर लिया, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो यही सबसे बड़ी गलती हमारी है। और फिर आगे चल के आप कहते हैं कि बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप उससे फ़ोन ले लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपना खाना खुद खाओ, अब हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यही होता है कि बच्चा खाना बंद कर देता है और आप बस कंप्लेन करते रह जाते हैं कि इन बच्चों के हाल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ये बच्चे बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना खाते ही नहीं है। जी ये बात एकदम सच है, आजकल मैक्सिमम बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते। लेकिन इन चट्टे बट्टों की, जिनको आप कह रहे हैं ना कि हर बच्चे का हाल यही है, जिस घर में जाओ, जिस माता पिता से पूछो, यही कहते हैं कि हमारे बच्चों ने दुखी कर रखा है, खाना खाते नहीं है, मोबाइल फ़ोन के बिना तो इनके मुँह में एक निवाला नहीं जाता। पर इसका श्रेय जो है ना, इसका ताज, इसकी ताजपोशी केवल आपके, आपको करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये आदत भी तो हमने ही डलाई है ना। हम ही चाहते थे कि बस हमारा काम निपटे। बच्चों को खाना खिलाना कोई काम नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेशेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, बच्चे

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

एक्ट फूड बच्चों को ना खिलाएं, शुगरी कंटेंट जो है अपने बच्चों के खाने में कम से कम कर दें, खासतौर पर जब वो बाहर का हो। और कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए बहुत कार्य करना होता है, बचपन से ही अगर हम बच्चों के मन में इस बात को डाल देते हैं कि अगर अच्छा खाओगे तो ताकतवर बनोगे, निश्चित रूप से आपका बच्चा कल सही राह पकड़ेगा और सही राह पर चलेगा, फिर चाहे वो खाने की ही

और हेल्दी खाने के साथ साथ हमें ध्यान देना है अपने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए। आप बच्चों को अच्छा खाने के लिए प्रेरित इसीलिए कर रहे हैं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे और जीवन में वो मुकाम हासिल करे जिसके लिए वो सपने देख रहा है। सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन सपनों के लिए हमें कार्य करना होता है। उसमें सर्वप्रथम हमारा स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम खुद भी योग करें और अपने बच्चों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। 21 जून को हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसके तहत हम आप सभी से हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि योग को अपने जीवन में शामिल कर आप एक स्वस्थ जीवन जिए। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है, अगर आप इसे करते हैं तो आप एक सुखद अनुभूति करते हैं। ताड़ासन योग का मूलभूत आसन है जो सीधे खड़े होने, शरीर का संतुलन बनाने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। ये संस्कृत के शब्द ताड़, जिसका अर्थ ताड़ का पेड़ या पर्वत है, और आसन यानी कि मुद्रा से मिलकर बना है। इसके लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों, पंजों व एड़ियों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाने के बाद हथेलियों को जांघों के पास सटा लें। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से रखें, हाथों को ऊपर उठाएं, गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर हो। पूरे शरीर को खींचें, सांस अंदर भरते हुए हाथों, कंधों और छाती को ऊपर की ओर खींचें। इसके साथ अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल संतुलन बनाएं। स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और एड़ियों को जमीन पर टिकाएं। अब आप कहेंगे कि ताड़ासन करने के क्या फायदे होते हैं? तो जनाब, ताड़ासन करने के बहुत से फायदे हैं जिनका जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ। सबसे पहले इससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है, शरीर का पोस्चर सुधरता है, जांघों, घुटनों, पिंडलियों, टखनों को मजबूती मिलती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। पर याद रखें, यदि आपको घुटने या कूल्हे में दर्द है या कोई चोट लगी है तो इस आसन को ना करें। इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें चक्कर आने की समस्या होती है, वे भी इस आसन को ना करें। तो योग आपको हमेशा ये बताता है कि योग करने से, आसन करने से आपको कितने फायदे हैं, लेकिन योग में हमें एहतियात भी बरतनी होती है। कौन सा आसन हमारे लिए बेहतर नहीं है, या कहते हैं कि हर शरीर की ना अपनी अपनी कुछ एक बात होती है, हर शरीर की अपनी एक मांग होती है, हर शरीर किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा होता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर की सुने कि हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है। फिलहाल आपकी ये दोस्त गीतिका आपसे यहाँ इजाज़त लेती है, होगी आपसे फिर मुलाकात। बनी रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर हमें हरदम हर पल, और FM रेनबो पर गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। धन्यवाद रक्तदाता। 14 जून 2004 को पहली बार वर्ल्ड डोनर डे मनाया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस की दुनिया भर के रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान के लिए धन्यवाद देने और रोगियों और दाताओं दोनों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का सम्मान करने का अवसर है। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदान से जुड़े आपके प्रश्न और जिज्ञासाओं का स्वागत है। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर भी हैं, पधार चुके हैं, पर सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि वो 125 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं और उनको एम्स के सेंचुरियन डोनर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। एक बहुत हस्ती बड़ी हमारे साथ है और उस बड़ी हस्ती के साथ एक बहुत बड़ा दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा की, जो चीफ रह चुके हैं जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली के, और साथ ही कई वर्षों तक आप प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में। प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स के नॉर्थ इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल में। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा का।
3: नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: तो सेंचुरियन डोनर कैसा है, कैसा कैसे मिला आपको ये, जो आपका इतनी बड़ी उपाधि है ये?
3: ऐसा है कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज में जब एंटर ही किया तो पहले मेरे पिताजी को, फिर मेरे माताजी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, और जब ब्लड डोनेशन की बात हुई तब पहली बार शायद मैंने ब्लड डोनेशन किया। और क्योंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष के नीचे से लोगों से ब्लड नहीं लिया जाता है। वेस्ट में हालांकि शुरू हो गया कि 16-17 साल का व्यक्ति भी अगर जैसे वयस्क की तरह है तो उससे भी लिया जा सकता है। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और फिर मैंने ये नियम बना लिया कि साल में 4 बार मुझे ब्लड डोनेशन करना ही है। और इसलिए मेरे सब एम्स के स्टाफ के लोग भी सब जानते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन, मेरे भांजे का जन्मदिन, मेरी माताजी का जन्मदिन और मेरी पत्नी का जन्मदिन, ये 4 दिन ऐसे जो 3-3 महीने के अंतराल पे आते हैं। और उन दिनों में क्योंकि वो तारीख याद रहे, अच्छा, तो उस दिन सुबह 8 बजे क्योंकि हम लोग ब्लड डोनेशन के बाद हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके काम भी करते हैं, ओपीडी भी करते हैं, सब काम करते हैं, तो सुबह 8 बजे ही समय रहता है, तो ब्लड बैंक स्पेशली आधा घंटा पहले उस दिन शुरू हो जाता है। फिर मेरी पत्नी का जन्मदिन 28 दिसंबर को रहता है, तो एक बार जब वो छुट्टी थी तो मैंने 1 जनवरी को दिया, तो मेरे ब्लड बैंक वालों ने ये बोला कि सर जब आपने 1 जनवरी को ब्लड दिया तो हमें खूब उस साल यूनिट मिले। तो फिर उसके बाद ये नियम मिल गया कि 1 जनवरी को वहां जाके ब्लड देना ही है।
2: तो आप जो नए साल की शुरुआत करते हैं वो रक्तदान से करते हैं,
3: सुबह 8 बजे।
2: अरे वाह, क्या कहना है। और इसीलिए मैं ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इससे बेहतर हमें आज के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल सकता था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया कि कई बार अब तो शायद गिनती भी करते हैं कि गिनती करते नहीं हैं आप।
3: एक्चुअली वो लोग करते हैं, वो मुझे बताते हैं।
2: अच्छा तो एक बहुत अच्छा मौका है श्रोताओं, आपको अगर कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आ रहा है रक्तदान से संबंधित, रक्तदाता से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर साहब आज यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत सारे मिथ्स जो हैं

0: इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग समझते हैं। मैं आगे जब कार्यक्रम बढ़ेगा तो जरूर हमें प्रश्न भी आएंगे इस तरह के कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, रक्तदान करने से ये होता है वो होता है, तो हम चाहेंगे जरूर उन मिथ्स को आप ब्रेक करें। पर जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं तो यहां पे स्टूडियो में डॉक्टर साहब के सामने बैठी हूं, मैं देख रही हूं डॉक्टर साहब को, तो मुझे जो लगता है डॉक्टर साहब क्योंकि इतने फिट हैंडसम यंग है
1: धन्यवाद
0: बिकॉज ऑफ आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज यू डोनेट सो रेगुलरली,
1: दैट इज सो ट्रू एक्चुअली, ये बिल्कुल सच है और इसके बारे में तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक मोटे तौर पे किसी को सिंपल भाषा में समझाना चाहूं कि एक जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ नहीं खाते पूरे दिन, लेकिन से दुनिया का मानना है कि आप कुछ नहीं खाते लेकिन आपके स्वास्थ्य में वर्धन होता है और आप फिट होते हैं और आपके बॉडी के सिस्टम बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो जब हम इसके बारे में और बात करेंगे, कुछ रक्त शरीर से निकलने से एक जो एक रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ ब्लड पे ही नहीं होती है, ब्लड तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है दोबारा, लेकिन जो पूरे बॉडी पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है, मैं ये समझता हूँ इसी तरह से है जिस तरह से आप व्रत रखते हैं और आपको स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है, इसी तरह जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जितने भी इसके स्वास्थ्य के बारे में अच्छे इफेक्ट बहुत से बताए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो सब संभव है और सत्य है।
0: तो इस एक पूरे घंटे यानी 4 बजे तक हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे स्टूडियो में, और आप रहिएगा अपने रेडियो सेट के साथ या अपने फोन के साथ, क्योंकि हम इस पर बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी लेंगे, किस तरह से डोनेट किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है और क्या कोई परेशानी होती नहीं होती। बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं प्रश्न, पर आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती हैं, मिथ्स भी होते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ और बातचीत करिए रक्तदान पर। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर आते हैं लौटकर।

0: जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी हाँ, रक्त सबसे अनमोल उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। पर्याप्त संख्या में स्वस्थ लोगों द्वारा नियमित रक्तदान की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी और जहां भी रक्त की आवश्यकता हो वो हमेशा उपलब्ध रहे। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पर जुड़े हैं, आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, जी आप हैं रेडियो डॉक्टर में।
1: हाँ जी, नमस्कार जी आप दोनों को।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
0: जी जी,
2: धन्यवाद। आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला हरियाणा से।
2: जी नमस्कार मिसेस बेदी।
1: नमस्कार जी,
0: आप कुछ पूछना भी चाहती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और सही कहा आपने,
1: बधाई के पात्र हैं। देखिए डॉक्टर, मैं

0: हूँ डायबिटिक 32 साल से
1: जी,
0: और 25 साल से मैं योगा में हूँ
1: जी,
0: वहाँ की हेड हूँ। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि डायबिटिक का ब्लड डायबिटिक को भी क्यों नहीं दे सकते।
1: सो डायबिटीज में ना आपको बहुत सारी इन्फेक्शंस का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी भावना को भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा एक बेसिक जो रूल है, कभी भी हम कोई भी चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो है कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन का रिस्क या किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, किसी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये रहता है कि कई बार जो है वो डायबिटिक्स बहुत सारी दवाइयों पर होते हैं, अगर आपको बहुत सारी मेडिसिंस मिल रही हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो वो सब चीज़ें हैं जिसको वो ब्लड देते हैं उसके लिए कुछ नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखती हैं, तो उस सेफ्टी को देखते हुए ये नियम कड़ा रखना पड़ता है।
0: मेरा बहुत दिल करता था, मैं कॉलेज टाइम में ब्लड दिया हुआ है, मेरे ब्रदर रेगुलर डोनर रहे हैं, हस्बैंड भी देते रहे हैं, पर मेरे को मन में ये रहता है, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा ये करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत
1: जी। मैं आपसे यही कहने वाला था मिसेस बेदी कि आप इस कार्यक्रम में फिर भी एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, आप
0: तो उनको
1: जी वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आफ्टरऑल हमारे दी हुई एक यूनिट से तो पूरा काम नहीं चलता, लेकिन जो लोग मोटिवेट होते हैं और जो लोग और देते हैं उसी से ही देश का और समाज का और दुनिया का भला हो सकता है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप एक्चुअली मुझसे ज्यादा बधाई की पात्र है, क्योंकि मेरी बात तो एक व्यक्ति की बात है और आप जो है इतने लोगों से डोनेट कराती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे वही है कि स्टूडेंट से टीचर जो है वो ज्यादा महान होता है।
0: मैं तो इस तरह से कहती हूँ कि देखो, हम अगर हमें ब्लड की जरूरत है, हम चाहते हैं हमें फटाफट ब्लड मिल जाए, पर जब हमें देने की बारी आती है हम क्यों पीछे।
1: और वो खेत में नहीं उगता, पेड़ पे नहीं लगता, बना नहीं सकते, तो फिर
0: मैं
1: देना ही पड़ेगा।
0: टाइप हूँ मैं तो डांटती हूँ कि दो, सबको करती हूँ। बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गोल्ड मेडल के हकदार
2: जी, बिल्कुल। और ये गोल्ड मेडल हमने आपको भी दिया आकाशवाणी की तरफ से, रेनबो की टीम की तरफ से, क्योंकि मिसेस बेदी आप भी एक बहुत बड़ी जो मोटिवेशन का काम कर रही है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है आपने, और इसी तरह से आप जैसे लोग कुछ और हो जाएं हमारे अगर समाज में, तो जो ये समस्या है कि रक्त नहीं मिलता है समय पर, वो समस्या ना आए किसी को।
0: मेरी कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरे मदर को एक बार ब्लड की जरूरत थी, तो हमने 4 डोनर बुलाए, उनको लकीली चढ़ानी ब्लड, हमने वो सारा ब्लड डोनेशन में दे दिया। वो कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे ले लो, नहीं, दान है ये, बहुत बड़ा दान है,
2: बहुत बड़ा दान है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन पे जुड़ने के लिए और इतनी इतनी प्रेरणादायक बातें करने के लिए। हमारे बहुत सारे श्रोता इंस्पायर हो रहे होंगे आपसे आज।
0: डॉक्टर, आपको सलाम है मेरा,
1: नमस्कार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि जैसे ये बता रहे हैं मिसेस बेदी की ये डायबिटिक है, ये ब्लड नहीं दे पाती है, तो इस तरह के और कौन सी लोग हैं जिन जो लिमिटेड है, नहीं दे सकते हैं, कोमोर्बिडिटीज हैं
1: जी? सबसे पहली तो एनीमिया है, अगर आप में ही खून की कमी है, तो इसी तरह से किसी का भी रक्त लेने से पहले उसका कुछ फिटनेस स्टैंडर्ड होता है।
2: अच्छा।
1: जैसे कि वेट जो है, वेट आपका एक बिल्कुल लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए। 50 किलो या 45 किलो अलग अलग ब्लड बैंक रखते हैं, 50 किलो सेफ है, तो इतना आपको होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 13 ग्राम होना चाहिए। और आप किसी तरह की बीमारी जो किसी तरह से भी रक्त जिसको दिया जाता है उसको इन्फेक्शन उससे हो सके, जैसे कि हेपेटाइटिस है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, या किसी को HIV की इन्फेक्शन है, या किसी को कोई कैंसर है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हमें कारण पता नहीं लगा है, तो ऐसी बीमारी भी संभवतया कभी ना कभी ऐसा पता लगे भविष्य में कि वो इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसी सब बीमारियां जिनमें कि किसी को भी प्राप्त करने वाले को किसी तरह का भी जोखिम हो सकता है, उन लोगों को हम लोग मना करते हैं। इसी तरह एक एज भी आप पूछेंगे जरूर, तो 65 साल उम्र नॉर्मली रखी जाती है, लेकिन कई कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां लोग फिट होते हैं वो 70 तक भी देते हैं, कई देशों में ये 60 तक ही है, पर 65 एक मैं समझता हूँ इसका ठीक एक बैलेंस्ड एक फिगर है कि 65 साल की एज तक आप।

0: सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, जब कोई ब्लड डोनेशन करने की इच्छा जाहिर करता है, जाता है डोनेशन के लिए, तो क्या ये सारी चीजों का टेस्ट पहले किया
0: जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, इनफैक्ट जो क्वेश्चनेयर भरने को बोला जाता है, जो प्रश्नावली होती है आपके लिए, उसमें ये भी पूछा जाता है कि आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया, आपने नाश्ता किया कि नहीं किया। जवान लोग होते हैं, कई बार बहादुर बहुत होते हैं कि बोलते हैं नहीं, हम सुबह नाश्ता नहीं किया, चल दिए, देर हो रही है कि हम रास्ते में ब्लड देते हुए जाएंगे। तो वो ऐसा काम भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप रात में ठीक से सोए, क्या आपने ठीक से खाना खाया, क्या आपको कुछ दिन पहले खांसी जुकाम हुआ है। तो खांसी जुकाम भी जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उसमें आप डोनेट नहीं कर सकते। क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपका उस समय ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, बहुत लो है दवाओं की वजह से, तो ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है आपका। और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों की सेफ्टी जरूरी है, आप एक व्यक्ति का नुकसान करके दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकते। आपका देने वाले का चाहे जितना मर्जी अच्छा इमोशन हो, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो कई बार हमें उन्हें मना करना पड़ता है।
1: जी जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम जी को शालीनता के साथ रघुविंदर सिंह चड्ढा का नमस्कार।
1: नमस्कार चड्ढा जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी प्रश्न कर,
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्कार चड्ढा साहब।
2: डॉक्टर साहब, आज मैं आपको बधाई नहीं दूंगा क्योंकि जब पिछली बार आप आए थे तो आपने कहा था मेरे को बहुत बधाई होगी, अब मुझे बधाई की जरूरत नहीं है।
0: शुभकामनाओं की हमेशा जरूरत रहती है जी। बधाई बधाई ऐसा है कि जो काम अपने कर्तव्य की तरह किया जाता है उसके लिए बधाई में थोड़ा सा, मैंने पिछली बारी मुझे याद है आपको यही बताया था कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है, तो इतना सारा बधाई ऐसे लगता है कि कोई ऐसा कुछ काम किया जो बहुत ही विशेष है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये कर्तव्य है और कर्तव्य करने के लिए इतनी ज्यादा बधाई मिलना थोड़ा सा एम्बेरसिंग है।
1: तो आप आज क्या कहना चाह रहे?
2: मेरा पहला प्रश्न से पहले मैं ये कहूंगा, रक्तदान मीन्स वक्त दान। अगर हम अपना रक्तदान करते हैं तो हम किसी का जीवन आगे बढ़ाते हैं
0: जी।
2: और मेरा क्वेश्चन ये है कि रक्तदान करने से कितने टाइम पहले हमको कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए?
0: अगर कोई नॉर्मल जैसे आप मेडिसिन कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की लेते हैं वो तो आपको लेते रहना है। अगर आप कोई ऐसे लेते हैं जैसे कोई नींद की दवाई लेते हैं या इस तरह की दवाई लेते हैं, तो उनको कम से कम 24 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। पर ये अलग अलग दवाओं के लिए ये अवधि अलग अलग होती है। पर अगर आप वैसे भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर ले रहे हैं तो आपको रक्तदान ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी दवाई है जो आप नॉर्मली लेते हैं, जैसे थायराइड की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, तो वो आपको वैसे भी लेनी ही चाहिए। रक्तदान देने के लिए आपको उनको बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये बात जो है ना वो ऐसी चीजों के लिए आती है कि अगर कोई नींद की दवाई लेता है कुछ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां लेते हैं, जैसे कि आप ब्लड थिनर लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ब्लड डोनेशन वैसे ही अलाउड नहीं है। तो आप हार्ट प्रॉब्लम है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, या आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हें बंद करें, क्योंकि उनसे जो होने वाला रिस्क है वो आपको आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप जब ब्लड बैंक जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई दवाई आपने पिछले 24 घंटे में ली है या कोई और दवा है जो आप रेगुलरली लेते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड सवाल तो लिखे ही होते हैं। अगर आपको मलेरिया डेंगू भी हुआ है तो भी उसकी हिस्ट्री में अगर आप है तो आपसे ब्लड नहीं लिया जाता है। तो अगर किसी बीमारी के लिए शॉर्ट टर्म आप दवा ले रहे हैं तो आपको वैसे ही उसके पूरा रिकवर होने के बाद ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की है उस पे बेसिस पे आपके ब्लड बैंक वाले डिसीजन ले लेंगे कि उस समय लेना ठीक है कि आपको फिर दोबारा अगर बुलाया जाए तो। पर ज्यादातर जो अगर क्रॉनिक डिसीजेज हैं जिनमें बहुत दवाई लगातार लेनी पड़ती है, उसमें ज्यादातर में फिटनेस का इशू रहता ही है थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप पता कर ले और ज्ञान रखें इस बात का, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में बताया जाएगा कि मैंने कुछ बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको बताया, अगर दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आपको डोनेशन नहीं करना, लेकिन आप कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं जैसे मिसेज बेदी कर रही है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी हम बता दें अपने श्रोताओं को कि आज जितने भी गाने बज रहे हैं वो आपकी पसंद के हैं, आपने खासतौर पर ये लिस्ट तैयार कराई है गानों की प्लेलिस्ट जो कि, और जो अब अगला गाना जो बजने वाला है उसके उस गाने के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे मैं श्रोताओं को
0: जी।
1: कितनी अच्छी है गाना
0: जी, जी। मेरी माता जी का ये हमेशा से हमें संस्कार रहे कि हम

0: हमेशा मदद करो, कमजोर की मदद करो, गरीब की मदद करो। कभी अगर हम हरिद्वार जाते थे तो वो देख के किसी कहती थी इसने खाना नहीं खाया, किसी ने अगर आके बोला खाना नहीं खाया तो बोलेंगे इसको खाना खिलाओ, अगर किसी को बोला कि कभी बोलती थी इन सबको चाय पिला दो, तो उनको ये बड़ा दुखदाई लगता था कि कोई भूखा रहे, उन्हें बड़ा दुखदाई लगता था कि किसी को ठंड लग रही है कुछ है। तो एक जो ये इस तरह का जो प्रभाव हमारे चरित्र पे हम तीनों भाई बहनों के पड़ा, वो माता जी के से पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज जब हम दान की बात कर रहे हैं और आज हम लोग भी माता पिता हैं, श्रोताओं में बहुत सारे भी माता पिता होंगे, तो हम भी अपने बच्चों को प्रेरणा कर सकते हैं जिस तरह से सौभाग्य से हमें प्रेरणा मिली, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए क्योंकि उन्हीं ने ये संस्कार हमें दिए, मैं चाहता था ये गाना
1: जी, आप उन्होंने एक ऐसा बेटा और बहुत सारे ऐसे आपके जो भाई बहन जो आप बता रहे हैं जो सब इसी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह के बच्चे इस दुनिया में लाए जो बाकी लोगों की मदद करें। मैं देख रही हूँ भावुक हो रहे हैं डॉक्टर साहब इस समय और अपनी माता जी को याद कर रहे हैं। हम सबकी ओर से भी उनको नमन। सुन लेते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, बहुत प्यारी होती है माँ, और वो माँ जो संस्कार देती है अपने बच्चों को, और सही संस्कार, सही लालन पालन से ही एक इंसान बनता है जो दूसरे के दर्द में दर्द महसूस करता है, और उसी के दिल में सच्चा दिल होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। और ऐसे ही एक शख्स, ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप चीफ रह चुके हैं JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स नई दिल्ली में, साथ ही साथ कई वर्षों तक आप प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में, और अभी प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स नॉर्थ इंडिया अपोलो हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कई बार ब्लड दे चुके हैं, यानी जितनी बार मैक्सिमम पॉसिबल है मैं यही कहूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि साल में 4 बार ही दे सकते हैं, वो 4 बार देते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं मैसेज के माध्यम से, हमारे एक श्रोता फोन पर भी वेट कर रहे हैं। आप बताइए, पहले फोन लूं कि पहले मैसेज लूं?
1: फोन वाले के पहले बात कर लेते हैं।
0: कर लेते हैं, चलिए जैसा आप कहें। हेलो,
2: रेडियो डॉक्टर की आन बान शान शालिनी मैम को बेहद शालीनता से नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको,
2: और ब्लड डोनर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं ब्लड डोनर राजेंद्र करमपुरा से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है। सवाल तो मेरा ये है कि मतलब जब हमें ब्लड देना है तो क्या खाली पेट भी ब्लड दिया जा सकता है जब फास्ट रखते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है
1: जी।
2: और दूसरा सवाल ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते में या महीने में या फिर साल में कितनी मरतबा ब्लड डोनेट कर सकता है या उसे करना चाहिए? सुझाव मेरा ये है सर प्लीज, क्योंकि एफएम रेनबो पूरा हिंदुस्तान सुनता है, अभी नहीं हमारे जितने बॉडी पार्ट्स है जो डोनेट किए जा सकते हैं हमें वो सब डोनेट करने चाहिए। और इस मामले में सरकार को, एनजीओ को, जो भी संस्थाएं हैं बिजनेस, उनको कुछ इसको कोई पुरस्कार कोई इनाम वनाम रखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है
1: जी। बहुत अच्छी बातें कही आपने। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। जो चीज है ये टेक्निकल है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी तरह का होने का अगर आप मिल जी, आप बहुत बहादुर हैं और आप खाली पेट दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी अगर आपको खाली पेट ब्लड देने से कुछ समस्या होती है तो उसमें पूरे कार्यक्रम को नुकसान पहुंचता है। लोगों को ऐसा लगता है जी कि उन्होंने ब्लड दिया, वो उनके साथ उनको घबराहट हो गई या कुछ हो गया। तो बल्कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको हम कुछ खिला के, बिस्किट या उनको कुछ जूस वाला ड्रिंक, फ्रूट वाला ड्रिंक पिला के, पानी पिला के तभी भेजते हैं, और उनको कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं उनकी, और उनसे पूछा जाता है कि आप ठीक फील कर रहे हैं, तभी उनको भेजते हैं। तो इस तरह की तो सुझाव मैं आपको नहीं दूंगा कि आपको खाली पेट ब्लड देना चाहिए। आपको बल्कि प्रॉपरली नाश्ता करके और तब खाना खा के तब डोनेशन करना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, 3-3 महीने के अंतराल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कोई आप डेट 3-3 महीने बाद वाली जो आपको याद रहती हो ऐसा आप कर सकते हैं। और जो आपका सुझाव है बहुत अच्छा है। हमारा एम्स का जो जहां मैंने 44 साल में रहा वहां पे नियमित रूप से ब्लड डोनर्स को, खास करके जो लोग नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते हैं उनको बुला के उनका सम्मान किया जाता है। पुरस्कार कोई राशि वाली बात इसमें नहीं होती है, लेकिन एक दूसरों को इससे इंस्पिरेशन मिले और इस पर्पस से किया जाता है। तो उसमें जो सेंचुरियन डोनर्स है उनको शील्ड भी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। या सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे ये कहा जाता है कि आप 2 शब्द कहें कि आपको, जैसे शालिनी जी ने आज मुझे बार बार पूछा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, और मिसेज बेदी से कहा कि आप कैसे लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज में जागरूकता हो, ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो। हमारे यंग जो है, हमारे युवा है, वो भी एक हमारा इसमें एक उद्देश्य रहता है कि वो इस कार्यक्रम में आ गया है। और आपको जैसे शालिनी जी ने बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर का प्रमुख था, और कई बार ऐसा होता था कि एक जवान आदमी एक्सीडेंट के साथ आया तो उसको 20 25 30 बोतल ब्लड भी चढ़ जाता था, और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता था, या हम किसी अटेंडेंट को ढूंढते भी नहीं थे कि कोई ब्लड देने आएगा तो हम इसको ब्लड देंगे। तो उसी को देख के समय समय पर हम कभी लायंस क्लब के साथ, कभी दूसरे क्लब के साथ जब कैंप करते थे, CRPF वाले, CISF वाले, BSF वाले, कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज रेगुलरली नियमित रूप से एम्स में आके ब्लड डोनेशन करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं, रोटेरियंस है, तो बहुत सारे लोग जो है कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं कि आपको एकदम एक ऐसी फीलिंग आती है कि कितना लोग तत्पर है एक जान बचाने के लिए दूसरों की, और एक बहुत ही अच्छी खुशी की अनुभूति होती है, और ये सब बधाई के पात्र है, और उनका पुरस्कार उस खुशी में ही है कि उनके ब्लड से किसी की जान बच गई, लेकिन अक्सर ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: जी जी, और मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि ऑर्गन डोनेशन की भी बात होनी चाहिए, तो हम ऑर्गन डोनेशन पर भी कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर ये बात कहते रहते हैं कि किस तरह से हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने डॉक्टर साहब और बोली कि एफएम रेनबो को पूरे भारत में सुना जा रहा है, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि ये पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सुना जाता है, ग्लोबल है हमारा, क्योंकि आप इसको सिर्फ 102.6 पर ही नहीं सुन रहे हैं, आप इसे प्रसार भारती ऐप न्यूज AIR पर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज इसको अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारे यानी आकाशवाणी के जितने भी चैनल हैं, सिर्फ एफएम रेनबो दिल्ली ही नहीं, जितने भी चैनल हैं आप उनको सुन सकते हैं और उनसे इसी तरह से प्रेरणा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम ना सिर्फ जानकारी देते हैं, ना सिर्फ सूचना देते हैं, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, ये सारे पैकेज, कंप्लीट पैकेज होता है। बहुत सारे श्रोता है जो सर जुड़ गए हैं हमारे साथ मैसेज के माध्यम से, और सारे सारे यही लिख रहे हैं कि वो आज इंस्पायर हो चुके हैं और कोई तो डोनेट करने आज ही जा रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूं, एक तो ये प्रवीण गुवाहाटी से लिख रहे हैं कि कैन आई डोनेट ब्लड, आई एम 71 इयर्स ओल्ड।
1: जी प्रवीण जी, थोड़ा देर हो गई है, 71 साल की उम्र में आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो कई बार हम लोग 80 साल के व्यक्ति का भी हड्डियों का ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि जैसे वो 40 साल का हो और उसको उतना ही उससे काम लेना है, लेकिन ये जो नियम है, लॉ है, ये काफी और गाइडलाइंस है काफी स्ट्रिक्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाख या 1 करोड़ या पूरी समाज की, पूरी दुनिया का भी फायदा करके हमें ये लिबर्टी नहीं मिलती है कि एक भी व्यक्ति का किसी तरह से नुकसान हो, और ये सब नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इसमें सेफ्टी जो है वो पूर्णतया सुरक्षित वो रहे,
0: किसी और को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मुझे ये लगता है इनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं कि ये आज का कार्यक्रम सुन के मोटिवेट हुए और चाहते हैं डोनेट करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बेटे को या घर में बहू को, अपनी बेटी को मोटिवेट कर सकते हैं डोनेट करवाने के लिए ब्लड। और चंद्र प्रकाश जी हमें लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, ब्लड डोनेशन के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब, और किस एज तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: सो 18 से 65 साल की आयु तक के स्वस्थ व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट रक्तदान कर सकते हैं, और जो कट ऑफ है जिसको हम कहते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो स्त्रियों में 12 ग्राम कम से कम होना चाहिए और पुरुषों में 13 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप

0: ब्लड रहता है, और क्योंकि फिगर 10% से कम है तो इसमें 350 ml किसी भी 60 किलो के व्यक्ति को देने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जो उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें हमारे रक्त में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा रहता है और एक सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो तो 48 घंटे में पूरा हो जाता है, और इसलिए कोई वॉल्यूम की 24 से 48 घंटे के अंदर ही वॉल्यूम की कमी तो हो जाती है पूरी। जो सेल्स होती है वो 4 से 6 हफ्ते लेती है, और इसलिए सेफ्टी के लिए आपको डबल इंटरवल दिया जाता है कि आप 3 महीने बाद आके दोबारा ब्लड दे सकते हैं। और जहां तक कमजोरी की बात है तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, अब बहुत सारे लोग और भी जिनको मैं जानता हूं जो बहुत बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो हम लोग सुबह ऐसा भी रहा है कि सुबह 8 बजे ब्लड डोनेट करके पूरे दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किए। आप बिल्कुल सामान्य रूप से अपनी सामान्य जो आपका दिनचर्या है उसका पालन कर सकते हैं बिना किसी कमजोरी को महसूस किए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैंने आपसे कहा कि जैसे पहले एक श्रोता ने कहा कि खाली पेट ब्लड दे दे, या रात को सोए नहीं है, या ठीक से खाना नहीं खाया है ठीक से, तो वो सब चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक स्वस्थ तरीके से एक दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सिस्टम है, जो ब्लड बैंक की फैसिलिटी है, उसको इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हो। बल्कि जैसा कि अभी हम शायद, मुझे पता है कि शालिनी जी जरूर बात करेंगी, उसका फायदा जरूर होता है आपको, आपको शारीरिक रूप से भी फायदा होता है, आपको जो अच्छा लगता है या आपकी मानसिकता में पॉजिटिविटी आती है और आपको ये फीलिंग आती है, आपके दिल को अच्छा लगता है कि आपने किसी की जान बचाई। और कभी आपको देखना हो तो आप देखें किस तरह इमरजेंसी में, हमारी इमरजेंसी में, ट्रॉमा सेंटर में या बाकी इमरजेंसीज में किस तरह से आपका दिए हुए रक्त से लोगों की जान बचती है और लोगों के परिवार बचते हैं, जिसमें एक युवा व्यक्ति किसी की जान जा रही हो या किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए ऑपरेशन होना, जिससे उसकी जान बचती है, और वो पूरे परिवार पे आपका जो है वो एहसान रहता है, वो आपके लिए आभारी रहते हैं आपके, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पूरा काम कर सकते हैं, स्वस्थ फील करेंगे और कुछ इसमें कमजोरी नहीं होती
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मानसिक रूप से एक बहुत संतुष्टि मिलती है, एक कि हमने किसी की मदद की, एक नेगेटिविटी जो आपके अराउंड चारों तरफ रहती है आज के टाइम में वो शायद कहीं ना कहीं कम भी होती है, लेकिन फिजिकल, मैंने सुना है कि फिजिकल भी फायदा होता है एक डोनर को, कि नए ब्लड सेल्स बनते हैं और उसके कारण शायद हार्ट अटैक की समस्या कम हो सकती है, ये मैंने सुना है। आप एज ए स्पेशलिस्ट बताएं।
0: बिल्कुल, मैंने इसीलिए इसमें एक संदर्भ शुरू में किया था, एक कंटेक्स्ट सेट किया था कि एक जब आप फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत एविडेंस है कि जब आप व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस होती हैं जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, हालांकि आपने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरह से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, और कुछ स्टडीज में ये कहा गया कि हार्ट अटैक की संभावना 88% तक कम हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को इससे फायदा होता है, आपकी स्किन की से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी बीमारियों में फर्क पड़ता है, इसमें आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ावा होता है। और एक और ऐसी बात होती है, देखिए हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सारे पॉइजंस को बॉडी से निकालता है, और जब लिवर में बहुत सारा आयरन अगर इकट्ठा हो जाए तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेसिटी को कम कर देता है। जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आयरन उसमें से जो है वो निकल जाता है, तो लिवर की भी डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्षमता है, उसमें से जो आपके, जिसको हम एक्चुअली पॉइजन ही कहते हैं, विषयुक्त जो भी केमिकल्स हैं, जो कि टॉक्सिन्स हैं जिनको बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, उनको साफ करने की, रक्त को साफ करने की क्षमता लिवर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कुछ फायदे हैं, पूरे मैं शायद गिनाऊंगा तो कार्यक्रम ही
1: खत्म हो जाएगा।
0: जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान नहीं होता और बहुत सारे फायदे आपके शरीर को मिलते
1: हैं। बहुत सारे आपने गिनाए, तो हमारे मन में जो कई हमारे श्रोताओं के मन में ये जो मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए वो खत्म हुए होंगे कि आप सिर्फ दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य वृद्धि भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, कीवी किचवाहा में लिख रही हैं, दिल्ली में रहती हैं, 19 साल की हैं, लिख रही हैं, एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड टू डोनेट ब्लड बट माई एज वॉज नॉट अलाउंग मी टू डोनेट अर्लियर, सो नाउ आई एम एलिजिबल टू डोनेट, तो मुझे कुछ बताएं, वॉट प्रिकॉशंस शुड आई टेक, वेयर

0: शुड आई डोनेट, वेयर आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन डोनेट. तो हाउ मेनी टाइम्स आप बता चुके हैं प्रिकॉशंस, और ये कहाँ रजिस्टर हो सकते हैं?
1: कहीं भी रजिस्टर हो सकती है, आपको कोई रजिस्टर करने की जरूरत भी नहीं है. आप किसी भी अपने मनपसंद, ऐसा है कि अगर कोई ऐसी कोई हॉस्पिटल है जहां से आपका कोई सगा संबंधी इलाज करा के ठीक हुआ है, आपको कोई हॉस्पिटल है जहां जो आपके घर के पास है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, और जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें भी इनफैक्ट बहुत सारे जो ब्लड बैंक है, जिस तरह हमारा जो एम्स का ब्लड बैंक भी है, हमारे बहुत ही वहाँ पे कर्मठ मेरे सहयोगी जो रहे हैं वहाँ हैं, तो हमारी मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन्स भी जाती हैं, दूर दराज इलाकों में जाती हैं. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाँव में या सबर्बन एरियाज में. और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सब लोग सुन रहे हैं, तो गांव के सरपंच जो है वो अगर एक निवेदन करे अपने एरिया के कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, तो वहां चलता फिरता ब्लड बैंक वहां भी आ सकता है, और वहां पूरे दिन सुबह से शाम तक अगर कुछ जो देना चाहे. सो अगर आप ब्लड देना चाहते हैं, दान देने वाले को कोई रोक नहीं सकता. आपके लिए हजारों संभावनाएं हैं, कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक में चले जाएं, रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपकी डिटेल वो वैसे भी नोट करते हैं और वो आपके डेटा बैंक में है. पर अभी भी ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है जहां पे समय समय पर फोन पर आपको प्रॉम्प्ट देके या SMS देके या उसके द्वारा याद दिलाया जाए. ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्राइवेट लैब्स हैं, वो आपको फोन करती रहते हैं कि आपका अब हेल्थ टेस्ट ड्यू है, आप आ जाइए. मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको समय समय पर ऐसा मैसेज आए कि आप क्या आप डोनेट करना चाहें.
0: जी बिल्कुल सही बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब. एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आपकी ही पसंद का एक और गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेज हैं, हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं. तो ये गीत सुन लेते हैं और कहीं जाना नहीं है, आपको रहना है रेडियो डॉक्टर में. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी मैं लूंगी

0: क्योंकि लगभग वही बातें हैं, पर जो भी जहां भी आप बताना चाहें जरूर बताएं। यशपाल लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू शालिनी मैम एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर मल्होत्रा, सैल्यूट टू यू डॉक्टर मल्होत्रा फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फैक्ट इन इंडिया अबाउट एक्चुअल ब्लड रिक्वायरमेंट एंड ब्लड डोनेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट?
1: तो जैसे कि है, इतना बड़ा देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी जितनी हमें ज़रूरत है उससे अभी हमें आपूर्ति नहीं हो पाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनुअली प्रतिवर्ष हमें करीब 15 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और लगभग 12 लाख के करीब जो है वो डोनेशन होते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे डोनेशन है, देखिए डोनेशन दो तरह से होती है, एक तो वॉलंटरी डोनेशन होती है, कैंप्स के थ्रू होती है, या लोग वैसे ही जाके डोनेट करते हैं कि मेरा मन करता है, मुझे अच्छा करने का मन है। दूसरा ये है कि आपका कोई रिश्तेदार भर्ती है और उसका ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए जो आप उनके लिए जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन है। तो ये सब तरह की डोनेशन मिला के भी अभी आपूर्ति नहीं हो पाती है। और जैसे मैंने कई बार कहा कि कई बार एक जान बचाने के लिए 40 45 50 यूनिट ब्लड भी लगता है, तो इसलिए अभी हमें और वॉलंटरी डोनेशन की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हर मैसेज में आपके लिए तारीफ है, हर मैसेज में है, और सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हमारा प्रणाम पहुंचाइए, हमारा नमस्कार पहुंचाइए, पर एक जो मैसेज आया जो मुझे अभी दिखा है वो मेरी तारीफ भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पढ़ लूं क्या?
1: जी जरूर।
0: आपकी इजाजत हो तो। डियर रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी, सादर प्रणाम। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रोड्यूसर है ना? जी हाँ बिल्कुल हूँ, सही आपने पहचाना, पहली बार शायद आपकी खूबसूरत दिलकश आवाज सुन रहा हूँ। और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी के बारे में जानकर मैं भी ब्लड देने के लिए प्रेरित हो गया हूँ, मैं आज शाम ही ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं, मैं कभी ब्लड डोनेट अभी तक नहीं किया हूं। तो बहुत अच्छी बात ये इन्होंने लिखकर भेजी है। मोहम्मद सरफराज आलम है जो कि हार्ट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से, सर आपकी निस्वार्थ जनसेवा के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न दीर्घायु की शुभकामनाएं। कृपया बताएं कि किस उम्र तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है?
1: 18 से 65 साल की उम्र तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है।
0: जी सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मेरी उम्र 43 इयर्स है और हर साल मैं ब्लड डोनेट करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ऊपर नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? आप पिछले साल भी आए थे, हमने आपको सुनकर, हम आपकी बातें सुनकर बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं।
1: जी तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो पुरुष है उसका अगर हीमोग्लोबिन 12 है तो एक बार आप जांच जरूर कराएं डॉक्टर से कि अगर आयरन की कमी है तो आयरन की कमी आपको, या फोलिक एसिड की या B12 विटामिन की कमी है तो वो सब आपको कैप्सूल और दवा के थ्रू भी कंप्लीट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप नेचुरल चाहते हैं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि सेब और चुकंदर के सेवन से भी आपको इस चीज से आपको मिल सकता है इससे जो, और जो हमारा रक्त है उसमें बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से और प्रोटीन से बनता है, तो नेचुरली अगर आपकी डाइट ठीक है। कई बार गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनको क्रॉनिक, एक तो उनको ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसका कि हमें कारण नहीं पता, लेकिन अक्सर उनका हीमोग्लोबिन 8-9 से ऊपर जाता ही नहीं है। इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर जाता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कई बार हमें ब्लड निकालना पड़ता है क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा उनके अंदर बॉडी के अंदर आयरन जमा हो रहा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन 12 पे तो ब्लड आपका लेना मुश्किल होगा, कम से कम उसको 13 तक लाएं तभी हम ब्लड दे पाएं।
0: जी जी। और ये लगभग ऐसा ही आपने जो बताया, आर्थराइटिस है इनको 14 वर्ष से। राजू कुमार आजमगढ़ से लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि मुझे आर्थराइटिस है 14 वर्ष से और क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूं?
1: नहीं, आपको दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, आप इसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। कोई भी क्रॉनिक डिसीज जो होती है उसमें एनीमिया अपने आप ही हो जाता है, जिसको कि हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए देना मुश्किल होता है।
0: जी मैसेजेस बहुत हैं पर हमारे श्रोता काफी देर से फोन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी मेरे एक सवाल था, जो कहते हैं 40 की उम्र के बाद ब्लड कम बनता है।
1: जी ऐसी कोई बात नहीं है, 40 तो एकदम युवा अवस्था होती है, 40 में तो 18 घंटे काम करने की उम्र होती है। जो ब्लड कम बनता है एज के साथ में, उसमें ज्यादातर जो मैंने जैसे बताया कि सामान्य सीमा जो है 65 साल ली जाती है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, 65 साल से पहले की अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप बेधड़क रक्तदान कर सकते हैं।
0: जी, मनोहर लाल गांधी जी लिख रहे हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से।

0: उम्र 60 के बाद क्या हम रक्तदान कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर साहब बता चुके हैं, रक्तदान करने के बाद हम डाइट में क्या ले सकते हैं? अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो हम क्या कर सकते हैं?
1: तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जब आपको ब्लड ग्रुप मैच करने की तब आवश्यकता होती है जब कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए ब्लड दे रहे हैं, लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें अगर वो रक्त जो है उसके अंदर किसी तरह की रोग के चिन्ह नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसके लिए हमेशा हमें कोई ना कोई जो रिसिपिएंट मिल जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम रक्त जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप है उसको मैच करके डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारे पास बैंक का मतलब यह है कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको अगर 200 रुपए के नोट चाहिए कि 100 के नोट चाहिए कि 50 के चाहिए, आपको वहां से मिल जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ब्लड बैंक है उसमें हर तरह का ब्लड रहता है, तो आप जैसे लोग जब दान करते हैं तो हम उसको ग्रुप करके रख लेते हैं और जब किसी को उस व्यक्ति को उस ग्रुप की ब्लड की जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। तो इसलिए आपको इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दान करें और जैसा कि कहा जाता है दान करें और भूल जाएं, कभी ना देखें कि आपका दान जो है उस दिए हुए से दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है, नाम नहीं लिखा है पर वो लिख रहे हैं कि मैं ओ पॉजिटिव हूं, तो क्या इससे ब्लड ग्रुप से भी कोई फर्क पड़ता है दान पे?
1: जी कोई ब्लड ग्रुप नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि जिसका भी ब्लड ग्रुप रेयर होता है वो हमारे लिए बहुत ही VIP होता है, क्योंकि जब उस ग्रुप के व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो रेयर ब्लड ग्रुप है तो उसको मैचिंग ब्लड ग्रुप मुश्किल से मिलता है। तो ओ पॉजिटिव तो मेरा भी ग्रुप है और
0: यूनिवर्सल डोनर है
1: तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जरूर दें।
0: सुमित लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से कि मैं 31 इयर्स का हूं और मैं आई एम पेशेंट ऑफ क्लॉट इन माय ब्रेन एंड हाई BP, तो क्या मैं रिकवरी के बाद ब्लड डोनेट कर सकता हूं और क्या ब्लड थिनर मेडिसिन इफेक्ट करती है ब्लड डोनेशन?
1: जी बिल्कुल, ब्लड थिनर पे अगर आप हैं तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे इन्होंने बीमारी के बारे में, कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आप अस्थायी रूप से अनफिट हो जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, जैसे आपको खांसी जुकाम है, आपको कुछ इंफेक्शन हो गई है, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, उससे जब आप रिकवर करते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रॉनिक बीमारी जैसे मैंने आपको कहा उसमें रख देना अच्छी बात है।
0: जी डॉक्टर साहब, शिवम हमें लिख रहे हैं कनेक्टेड फ्रॉम आर्चिन जर्मनी, और ये लिख रहे हैं कि मैं 28 ईयर्स का हूं और माय क्वेरी इज अबाउट प्रिकॉशंस एंड स्टेरिलाइजेशन मेजर्स वन शुड चेक बिफोर डोनेटिंग ब्लड ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो।
1: तो ब्लड बैंक्स जो है वो बड़ी ही रिप्यूटेड संस्थाएं हैं और उनके रेगुलर चेक होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग होती है और बहुत ऑडिटिंग होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं आज की डेट में ब्लड डोनेशन करने जाएंगे वहां स्टैंडर्ड्स की कोई इशू है, क्योंकि सब डिस्पोजेबल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं और एजेंसीज हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रेगुलरली इस चीज को एश्योर करती है, और जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे उस पर देखा जाता है, जो कि बहुत ही वैसे इंसिडेंट होना बहुत ही रेयर है आपको बता दूं, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बहुत प्रायोरिटी होती है कि ब्लड देने वाले की सुरक्षा, हमारे लिए ब्लड जिसको मिलना है उससे ज्यादा ब्लड देने वाले की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दे रहा है वो निस्वार्थ दान दे रहा है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा आदमी रोगी है, उसका दूसरा प्रायोरिटी है, वो दान लेने वाला है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि किसी की मदद करने के लिए आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
0: जी गुड आफ्टरनून, टुडेज टॉपिक इज नोबल वन ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस। FM रेडियो हैज लैक्स ऑफ फैंस टुडे, प्रोग्राम हैज मोटिवेटेड मेनी पीपल कि वो डोनेट करें और इस फियर से बाहर निकले। सैल्यूट टू डॉक्टर साहब फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं हमारे श्रोता। और एक और हमारे पास मैसेज आया है, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मैडम आपको भी नमस्कार, मैं शबनम हूं, 125 बार मैं रक्तदान करने वाले डॉक्टर को बधाई देना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से। मेरी बेटी की उम्र 19 साल है, लंग इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन बताया गया, तो क्या ऐसी अवस्था में रक्तदान करना सही है?
1: जी बिल्कुल नहीं, जब उनको इस बीमारी से रिकवर करने दें और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये भी मुझे हिसाब से अनलेस कि इनको कुछ ज्यादा खराब इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जिसमें ठीक होने में समय लगे, पर 19 साल के अगर वो किसी टेम्परेरी बीमारी से ग्रसित है लंग्स की तो ठीक होने के बाद डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर कहूंगा कि जितने लोगों ने आज मुझे इतनी खुल के बधाई दी है, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम एक बार मुझे सही धन्यवाद देने के लिए जाके डोनेट जरूर

0: करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो डोनेट करते रहें, मेरे लिए वो धन्यवाद ज्यादा आवश्यक और ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस विशेष दिवस पर आप यहाँ हैं हमारे साथ। डॉक्टर रहे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो चीफ रह चुके हैं जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और तो हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। नमस्कार स्वीकार करें, शालिनी मित्तल का नमस्कार एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप

0: से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता शामिल हुए। इनमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी समेत 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां कई राष्ट्र व्यापार और रणनीतिक सहयोग में संलग्न हैं, वहीं कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरंकुडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। ये बॉडी की सूजन को
कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीज़ों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। और आज एक बार फिर आपसे पूछने आई हूं बहुत सारे सवाल। क्या करूं जनाब, ये सवाल पूछने की आदत जाती नहीं। और एक आप हैं जो अपना दिल हमसे कभी हटाते नहीं, और आपका ये जो प्यार है हमेशा हमें मिलता है। रेनबो जीनियस में आपकी दोस्त हिनाशीज गीतिका उनियाल करती है दिल से स्वागत। और आपसे वादा है मेरा कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे हर बार की तरह बहुत ज़्यादा आसान, और उनके आसान से

जवाब देकर आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। तो पांच सही सवालों के सही सही जवाब आप देकर आज के जीनियस बनेंगे, ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। दावा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना बहुत आसान तैयार किया है, बहुत सारा होमवर्क किया है, फिर ना कहना कि देखो कुछ मुश्किल पूछ लिया। तो जिंदगी है कांटों भरी, लेकिन उसमें फूल बहुत सारे हैं, ढूंढोगी तो वो फूल तुम्हारा प्यारा वाला तुम्हें जरूर मिलेगा। इसके लिए एक बार अपनी लख को आजमा कर तो देखो। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं 2342-1080 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 2342-1084। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को STD कोड लगाना होगा 01101।

0: भाई लक को भी तभी आजमाया जाता है जब बहुत सारी मेहनत की जाती है, कोशिशें की जाती हैं और प्रयासों के बाद वो सही समय, जिस समय आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी होती है। और हम ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं, हमने पूरी तैयारी की हुई है। तो आज के रेनबो जीनियस में एक बार फिर से आपकी ये दोस्त नाशीज गीतिका कौनियाल आपका स्वागत करती है। और मेरा वादा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के इस शो पर बहुत सारे रेनबो जीनियस हमें मिलेंगे। तो पहले कॉलर यानी कि पहले पार्टिसिपेंट इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम?

0: बताएं और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
1: बात कर रहा हूँ हिसार हरियाणा से।
0: जी नाम क्या बताया आपने अपना?
1: रामधारी अवाना।
0: जी रामधारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल आपके लिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है?
1: सीपीयू जो कंप्यूटर से रिलेटेड।
0: जी जी,
1: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
0: वेरी गुड। डिस्कवरी ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की?
1: ग्राम, अलेक्जेंडर ग्राम बेल।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दो सवाल आपके यहाँ पर सही सही हम तक पहुँचते हुए। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
1: केरला को। बेंगलुरु, बेंगलुरु मैडम।
0: जी पंचायती राज किस दिन मनाया जाता है?
1: पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है मैडम 24th of April।
0: बहुत बढ़िया। तो एक सवाल दूर है आप, और मेरी पूरी कामना है आपके लिए कि आप इस सवाल का सही सही जवाब दें। मधुशाला किसने लिखी? इसकी रचयिता का नाम बताएं।
1: जी जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने।
0: वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको आज कि आप पहले रेनबो जीनियस हैं। तो बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाइयां हमारी ओर से रामधारी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जुड़ चुके हैं अगले लिसनर हमारे साथ, यानी कि कॉलर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
2: जी नमस्कार, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेनबो जीनियस में। तो पहला सवाल आपके लिए, सहारा डेजर्ट कहाँ है, कौन से देश में है?
2: ये अफ्रीका महाद्वीप में है।
0: वाह क्या बात है। अब ये बताएं आपको, आप हमें कि रोम, कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो रोम का फुल फॉर्म क्या है?
2: रीड ओनली मेमोरी।
0: बहुत बहुत बधाई, दो सवाल का आपने सही जवाब दिया। अब आप हमें बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहां खेला गया था?
2: 2022
0: जी
2: कोई हिंट देंगे आप?
0: हिंट चलिए आपको ये दे देते हैं कि 2020 के बाद की बात है ये।
2: ये तो पता है मैडम मेरे को 2000। ये यूरोपियन कंट्री में?
0: यूरोपियन कंट्री तो नहीं कहेंगे हम इसे। खैर कोई बात नहीं, हम चाहेंगे आप फिर हमें दोबारा कॉल करें किसी और शो पर और हम आपको पूरा पूरा मौका देंगे। और आप सभी लिसनर्स से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम एक बारी में सिर्फ आपको एक ही मौका देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के साथ भी इनजस्टिस हो। अगले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार। नाम बताएं और बताएं कहां से बोल रहे हैं।
3: केशव चक्रवर्ती, त्रिपुरा से।
0: जी
3: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: जी गुड आफ्टरनून, आपकी आवाज़ सुनते साथ ही मैं ये रिकॉल कर पाई कि आपसे पिछली बार भी बात हुई थी। जी तो जी आप हमें ये बताएं कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला वो प्रथम व्यक्ति कौन था?
3: क्या मैडम?
0: पर्सन टू वॉक ऑन मून, फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून।
3: नील आर्मस्ट्रांग।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
3: अमेरिका, यूएसए, नील आर्मस्ट्रांग द फर्स्ट मैन।
0: वेरी नाइस। अच्छा आप बताएं, जब कंप्यूटर की बात होती तो ALU ये फुल फॉर्म क्या होगी, क्या होती है ALU की फुल फॉर्म?
3: अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूनिट।
0: कुछ चूक गए आप, कुछ चूक गए आप। ALU
3: अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूनिट।
0: पहला ही शब्द यानी कि ए का ही आपने जो सही इसका एब्रिविएशन है वो नहीं बताया, ए का अर्थ नहीं आप बता पाए। आप बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, और आपके आपके जोश, आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। हेलो
4: नमस्कार मैडम, शिवशंकर बोल रहे हैं कटिहार से। मैडम
0: जी आपको बहुत बहुत स्वागत है शंकर।
5: This call is now being recorded.
0: अच्छा जी, हमारी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं आप?
4: जी जी, बाद में मतलब उसको ही करते हैं,
0: बाद में सुनेंगे अपने आप को तो बहुत खुशी मिलेगी, है ना। चलिए आपकी इस दोस्ती को सलाम है। आप हमें ये बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का यानी कि जब हम पानी की बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
4: H2O होता है मैडम।
0: नहीं, इसका डिग्रीज में बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
4: 100 डिग्री सेल्सियस।
0: जी बहुत बढ़िया। अब ये बताएं आप हमें कि WWW का अर्थ क्या होता है?
4: वर्ल्ड वाइड वेब होता है मैडम।
0: बहुत बढ़िया,
4: क्योंकि कंप्यूटर के हर पहले सर्च में आता है वो चीज।
0: जी बिल्कुल आपने सही कहा, और आज के युग

0: में तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन खोजनी होती है तो हम उसी के माध्यम से खोज पाते हैं। अभी बताएं कि कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है?
1: मैडम
0: सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट जिसे महाद्वीप बोलते हैं वो कौन सा है?
1: सबसे ठंडा मतलब कि क्या
0: बहुत सर्दी होती है वहाँ, बर्फ से? हाँ जी,
1: ये सियाचिन होता है मैडम।
0: हाँ जी, नहीं नहीं नहीं मैंने कॉन्टिनेंट की बात की है दोस्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोस्त हमें यूं ही प्यार देते रहें, प्यार बरसाते रहें, यही तो हम चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नरेश मेरा नाम, जम्मू से बोल रहा हूँ।
0: जम्मू से बोल रहे नरेश, तो आप हमें बता देंगे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है?
1: अंटार्कटिका।
0: बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए कि डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था?
1: महात्मा गांधी ने।
0: जी बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे आज सारे दोस्त बहुत सी तैयारी कर कर आए हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि मैं आज आसान सवाल पूछ रही हूँ। खैर, अब आप हमें बताएं कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य?
1: मध्य प्रदेश।
0: आपके आसपास ही है।
1: लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया मतलब क्षेत्रफल में या जनसंख्या में?
0: हाँ, आप क्षेत्रफल की बात कर देते हैं हम यहाँ पर। समय ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, कुछ सर्च कर रहे हैं।
1: उत्तर प्रदेश।
0: कुछ सर्च कर रहे हैं। खैर दोस्त,
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: देखिए यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सभी को मौका दें, और मौका इस बात पर भी निर्भर करता है कितना समय हम दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही हमसे जुड़े रहें, यही कॉल करते रहें हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर कौन है जनाब हमारे साथ? हेलो हेलो जी दोस्त, की आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। हाँ जी,
2: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: महेश बोल रहा हूँ, राजस्थान से।
0: महेश बोल रहे हैं राजस्थान से। महेश, आप बताएं हमें कि आपने सुना होगा कि हाल ही में महान खिलाड़ी जसपाल राणा साहब का जो है वो निधन हुआ है।
2: जी जी मैम।
0: दिग्गज रहे हैं अपने खेल में, कौन से खेल से उनका संबंध है?
2: जी मैम, वो शूटर थे मैम।
0: जी,
2: शूटिंग
0: से। जी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, उन्होंने हमेशा ही भारत का परचम लहराया, और आकाशवाणी के माध्यम से हम बार बार शत शत नमन कहना चाहेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे उस महान खिलाड़ी को, जिनकी वजह से विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा हुआ। जी, जी अगला सवाल आपसे हमारा ये है कि पंचतंत्र किसने लिखी, पंचतंत्र के रचयिता का नाम? नहीं जानते, नहीं जानते हैं साहब आप? ये आवाज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। हेलो
3: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
3: गुड इवनिंग मैम, रिया।
0: रिया कहाँ से बोल रही हैं? ये कॉल भी कट गया। खैर कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। बातों में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, और सवालों में ही कभी कभी हमें जवाब मिल जाते हैं। बस ढूंढने की राह, ढूंढने की चाह लिए हम आपके लिए प्रोग्राम रेनबो जीनियस लेकर आते हैं। तो सवाल आपके लिए बहुत चुन चुन कर लाई है आपकी दोस्त की तिकोनियाल। बने रहिए, टिके रहिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें रेनबो जीनियस बनाकर। जितनी खुशी मुझे मिलने वाली है ना, यकीन मानिए दुनिया में किसी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक तो आपसे साक्षात बात करने का मौका मिलता है, फिर जिस तरह से आपका रुझान, आपकी इच्छा शक्ति और रेनबो जीनियस बनने की चाह मुझे आपसे मोहब्बत करने के लिए और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है।

0: सवेरे सवेरे तो ख्वाब नहीं आया, लेकिन एक दिन पहले से तैयारी मैंने जरूर की कि कुछ आसान सवाल पूछे जाए आप दोस्तों से, और जब आप दोस्त उन आसान सवालों के जवाब दें तो मैं बड़े प्यार से कहूं कि आप हैं आज के रेनबो जीनियस। अब देख लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर क्या रेनबो जीनियस बनेंगे। जरूर बनेंगे और हौसले बुलंद हैं तो जरूर बनेंगे। हेलो जी, अपना नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मेरा नाम आकाश है।
0: आकाश, लगता है आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ बहुत सारा डिस्टरबेंस है, या तो आपका रेडियो जो सेट है उसकी वॉल्यूम तेज है।
1: मैं भी ट्रेन में हूँ और मैंने इसलिए कॉल लगाया था क्योंकि
0: आप कहाँ हैं, ट्रेन में बैठे हैं?
1: यस।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। अपना नाम बताएं, क्या बताएं आपने?
1: मेरा नाम आकाश।
0: आज आकाश जी, आकाश आप रेगुलर हमें जवाब देते हैं और कई बार इन बिजनेस बने। तो चलिए, ये पहला सवाल आपके लिए है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
1: यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किसे कहा जाता है?
1: पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा, मुद्रा राक्षस इसकी रचयिता?
1: विशाखा दत्तनी लिखी
0: थी। जी, बहुत बढ़िया, ये आपने तीन सही जवाब यहाँ पर हमें दिए। अगला सवाल आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि भारत की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है?
1: वंदे भारत है।
0: जी, बहुत बढ़िया। अब आपको देना है आखिरी सवाल का जवाब। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी,
1: स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी
0: किस नाम से जानी जाती है? अगर हम किसी मानव जाति की शरीर की
1: एनाटॉमी,
0: हाँ जी, इसको बोलते हैं एनाटॉमी, अगर इस शब्द का इस्तेमाल। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के रेनबो जीनियस बनने के लिए आपको, और हम यही चाहते हैं कि आप क्यों ही हर शो पर जुड़े या सही जवाब दें और रेनबो जीनियस बने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमसे जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर इस वक्त, इसे कहते हैं कि हम चूक गए। किसी ने हमारा बेसब्री से इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते जब वो थक गए तो बस फिर ये आवाज़ आने लगी ट्रंग। ये आवाज़ का खेल भी ना बड़ा प्यारा खेल है, इससे कोई दोस्त भी बन जाता है और कभी कभी कभी दुश्मन भी, जैसे कि आप सोच रहे होंगे हमारे कॉल्स नहीं लिए जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है।

0: हेलो,
1: हेलो मैडम, मैं केशव जी त्रिपुरा से। हाँ
0: अभी तो आपने कॉल किया था केशव जी।
1: मैडम, प्लीज गिव मी अनदर चांस,
0: गिव
1: इज
0: यू
1: पॉसिबल?
0: अनदर चांस, इट इज नॉट पॉसिबल केशव जी। प्रॉब्लम
1: ओके ओके
0: ये
1: मैडम,
0: है कि
1: लॉट्स
0: बहुत
1: ऑफ
0: सारे
1: थैंक्स।
0: हमारे
1: ओके ओके
0: कॉलर्स
1: ओके
0: हैं,
1: ओके
0: लिसनर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि उन सबको मौका मिले, और अगर एक को दे दिया और उनको ना दिया तो मेरी खैर नहीं। हेलो

0: जब ब्लड ग्रुप्स की बात होती है ना, तो कहा जाता है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी, यानी कि वो व्यक्ति जिनका ये ब्लड ग्रुप होता है किसी को भी ब्लड दे सकते हैं।
1: ओ ग्रुप का मैडम?
0: जी, ओ नेगेटिव ग्रुप के जो लोग हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, यानी कि वो यूनिवर्सल डोनर है,
1: सभी को दे सकते हैं।
0: जी, अगला सवाल आपके लिए तीसरे नंबर का, आप बताएं हमें वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस?
1: 22 अप्रैल को मैडम।
0: क्या बात है, तो ये आपने तीसरे सवाल का सही सही जवाब दिया। अब आप हमें बताएं, टीचर्स डे तो आपने बहुत सुना होगा है ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है?
1: एक मैडम जो है 11 तारीख को मनाया जाता है और ये 5 तारीख को मनाया जाता है।
0: कौन सी 5 को?
1: 5 जो है सितंबर को मनाया जाता है।
0: नहीं, 5 सितंबर को तो हम राष्ट्रीय स्तर पर
1: मनाते, और 11 नवंबर को मनाया जाता है।
0: नहीं दोस्त बस ये
1: कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है।
0: बहुत गेस वर्क हो गया। नहीं, 11 तारीख को नहीं मनाया जाता है दोस्त। ऐसा करते हैं, हम आपसे ये कहेंगे कि आपके हौसलों को सलाम है, आपके हौसले भी बुलंद रहे।
1: बस
0: ऐसा करते हैं, दूसरे कॉलर से पूछ लेते हैं ना, क्या पता इनको भी बताओ है ना, और आपको जवाब भी मिल जाएगा इस बात का। अगले कॉलर, हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
2: जी, मैं सचिन बात कर रहा हूँ।
0: जी सचिन, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, बहादुरगढ़ से।
0: बहादुरगढ़ से सचिन, अभी हमने सवाल पूछा कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे?
2: 5 अक्टूबर को।
0: वाह क्या बात है, तो हमारे दोस्त जो चूक गए थे बस एक सवाल का जवाब देने से, हालांकि आपने ढूंढा तो नहीं इस बीच में सवाल का जवाब?
2: नहीं, मैंने सुना ही नहीं कि उससे।
0: हाय हाय, दिल ले लिया आपने।
2: ऐप से सुन रहा था मैं।
0: हाय हाय, दिल ले लिया,
2: लगा रहा था साथ में।
0: दिल ले लिया आपने, क्योंकि अमूमन हम बात करते हैं 5 सितंबर की, जब डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, पर जब वर्ल्ड विश्व भर के टीचर्स की बात होती है तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया दोस्त, दिल खुश कर दिया आपने। हाईएस्ट माउंटेन पीक,
2: सबसे
0: ऊंची चोटी?
2: माउंट एवरेस्ट।
0: कंचनजंगा पीक, कंचनजंगा?
2: नहीं, मैं आप क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाए। मैडम आपने इंडिया का बोला या वर्ल्ड का बोला, ये तो क्लियर नहीं हुआ।
0: चलिए हम आपको एक मौका और दे देते हैं।
2: नहीं, आपने क्लियर नहीं किया।
0: चलिए मैं गुस्ताखी माफ, अरे दोस्त नाराज नहीं होते। वैसे ऐसा मैं देती नहीं हूँ चांस, पर अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए। अब आप बताइए, ये वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है?
2: विश्व जल दिवस 22 मार्च।
0: 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया दोस्त। अब आप हमें ये बताएं कि सुरसागर इसकी रचयिता का नाम?
2: सुरसागर सूरदास।
0: जी बढ़िया, 3 सवालों के सही सही जवाब आपने यहाँ पर हमें दे दिए हैं। अच्छा, आप बताएं हमें लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन हमारे शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी, उसका नाम क्या है?
2: फीमर।
0: चलिए जी जनाब, बहुत बहुत बधाई आपको, 1 सवाल का जवाब आपको और देना होगा हमें। अब आप बताएं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया?
2: थॉमस अल्वा एडिसन।
0: वाह क्या बात है, तो अब आपकी जो जीत आपको मिली है ना, थोड़ा सा श्रेय मुझे भी दे दीजिए, एक मौका दिया था। बहुत बहुत
2: नहीं, वो तो सस्पेंस वाला रह गया ना।
0: अच्छा,
2: अगर आप तो इंडिया का पूछते तो मैं इंडिया का बताता।
0: अच्छा, क्लास टीचर को भी ऐसे घुमा दिया करते थे मैडम? सवाल
2: घुमा देते थे मैडम,
0: घुमा देते ना, समझ गए,
2: घुमा देते।
0: आपकी तीक्ष्ण, आपकी चतुर बुद्धि को समझ गए हैं हम, पर कहते हैं कि जीवन में वो लोग जो हमारे लिए रास्ता बने, हमेशा उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, और यूं ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए दूसरों को भी।
2: धन्यवाद।
0: तो हमें हमारे एक और रेनबो जीनियस पर। हेलो
3: हेलो
0: हेलो जी, नाम बताए।
3: जिया
0: बोल रही है?
3: Yes, ma'am.
0: अच्छा जिया, आप हमें ये बताएं कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम?
3: हाँ जी मैम।
0: भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
0: बहुत बढ़िया। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है?
3: अर्थ को।
0: वाह क्या बात है। आईसीयू आपने नाम सुना होगा?
3: Yes, ma'am.
0: इसका फुल फॉर्म?
3: इसका फुल फॉर्म मामला।

0: आइडिया.
1: कोशिश कर लीजिए. ICU,
0: वो हॉस्पिटल वाला क्या?
1: जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है, जब उसको बहुत सारी केयर की जरूरत होती है, तो उसे ICU में रखा जाता है.
0: फुल फॉर्म कभी
1: कोई बात
0: नहीं.
1: नहीं, कोई बात नहीं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप यूं ही पढ़ती रहिए, और हम यही कहेंगे कि आप जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना कम होता है. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी जनाब, अपने पहले रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आपकी और हमारी बात आसानी से हो पाएगी.
2: जी मैम, नमस्कार.
1: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं देवाशीष बोल रहा हूँ, गुड़गांव से. जी
1: अरे वाह, क्या बात है. बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं कि आज आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं. तो आपसे सवाल पूछे जाए.
2: मैम.
1: अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारा शरीर है, इसका सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा, ऐसा हिस्सा जो सबसे बड़ा है हमारे शरीर
2: यह है अपना इंटेस्टिन जो है, वो है सबसे बड़ा अंग.
1: मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, नहीं एक्सटर्नल ऑर्गन की बात कर रही हूँ. एक तो शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर. हाय हाय हाय हाय, सबसे ज्यादा कातिलाना आवाज अगर कोई है ना तो यही है, टंग टंग. कसम से कहती हूँ, ऐसा दर्द, ऐसी चोट तो मुझे आज तक कभी नहीं मिली जो इस आवाज को सुनने के बाद मिलती है. हेलो. अब ये आवाज मुझे और दिलकश लगती है जब अपनी ही आवाज किसी के रेडियो सेट पर सुनाई देती है.
2: हेलो.
1: हेलो, अपना नाम बताएं. बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
2: विनोद.
1: विनोद जी, विनोद कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: पंजाब से.
1: पंजाब से बोल रहे हैं. आजकल ना एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल. एक तो हम समय बचाने के लिए, या यूँ कह लीजिए काम को पूरा करने के लिए, छोटे छोटे एब्रीविएशन यूज़ करते हैं. आजकल कहा जाता है FYI, जब किसी को मेल किया जाता है तो कहा जाता है FYI. इसका फुल फॉर्म पता है आपको? आई
2: FYI.
1: एफ वाई
2: कोई
1: आई
2: और क्वेश्चन?
1: हाँ जी,
2: कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं?
1: अच्छा मुझे लग रहा है कि आज मुझे सबको मौके देने होंगे, और वो जो जो दोस्त मैं जिनको मौके नहीं दिए ना, आज मुझे लगता है कि मुझे स्टेशन के बाहर मिलकर मेरी बहुत सारी पिटाई करने वाले हैं. खैर चलिए दोस्त, अगर आप कहते हैं तो आपसे मैं पूछ लेती हूँ. ये बताइए कि विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं?
2: सेवन.
1: चलिए बहुत बढ़िया, 7 कॉन्टिनेंट आपने सही जवाब दिया. आईफिल टावर कहाँ है?
2: पेरिस.
1: अगला सवाल आपके लिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी किस सन में हुई थी?
2: 1914. 1914.
1: अब मौका नहीं दे पाऊंगी, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी दोस्त. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ. और ऐसा करते हैं कि एक कॉलर और लेते हैं, उसके बाद आपके लिए एक मीठा सा गाना. हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं. नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी रजनेश राठी बोल रहा हूँ, महेंद्रगढ़ से.
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है जो बहुत गर्म होता है पानी,
2: हाँ जी,
1: वैसे
2: हाँ जी.
1: ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब पानी सबसे ज्यादा ठंडा होता है. तो क्या है उसकी वैल्यू, क्या है उसका टेम्परेचर?
2: 4 डिग्री सेल्सियस.
1: 0 डिग्री सेल्सियस दोस्त. खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि आप सभी दोस्त अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए. और हमें इस बात में बिल्कुल भी हैरत नहीं कि आप दोस्त हमसे ना कभी भी रूठते नहीं हैं, हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं इस चाह में कि हमसे बात होगी. ये एक मुलाकात का बहाना है, आप सही जवाब देंगे और रेनबो जीनियस बन जाएंगे. और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आपके हिस्से में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, क्योंकि रेनबो अपना रेनबो एकदम सतरंगी है. और इस सतरंगी चैनल के जरिए हम यही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस को यहाँ हम भर दें. बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए अपनी इस दोस्त गीतिका उनियाल को. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस, और अगर आपने पहली बार हमें ट्यून इन किया है, पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं सही सवालों के जवाब देकर, यानी कि मेरे सवाल एकदम सही होते हैं, सही जवाब देकर. 2342-1080, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1084011, हमारा STD कोड है.

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कवनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस। रेनबो जीनियस पर अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
1: ब्रह्मदत्त, मंगोलपुरी दिल्ली से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? चूक गए पहले ही सवाल में।
1: लक्षद्वीप मैडम।
0: जी, यहाँ पर चूक गए आप। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कॉल करने के लिए। और यही कहेंगे हम कि अगली मरतबा फिर कोशिश कीजिए और अपने हौसलों को यूं ही बुलंद रखिए। ये भी लगता है जनाब हमसे रूठ कर बस कहीं गायब हो गए, लेकिन आपके पास अभी भी मौका है सवाल पूछ मेरे सवालों के जवाब देने का। और बहुत सारे कॉलर्स हम तक पहुँच रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हाँ मैडम, मैं अजीत छैन पटौदी गुरुग्राम से बोल रहा हूँ।
0: जी, गुरुग्राम से बोल रहे हैं आप। तो आपके लिए ये सवाल आसान से पूछूं कि बहुत मुश्किल से पूछूं? ये सब जानते हैं आप। अच्छा, नहीं बताना चाहते तो आप ही चाहते हैं कि बस आपसे ना सवाल पूछ लिया जाए, है ना? यही चाहते हैं ना?
2: हाँ जी, बिल्कुल मैडम, पूरी कोशिश करेंगे बताने।
0: बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम सुना है आपने?
2: हाँ जी मैडम, बिल्कुल।
0: तो ग्रेविटी का आविष्कार किसने किया?
2: ग्रेविटी का आविष्कार मैडम गैलीलियो ने।
0: गलती।
2: न्यूटन, एक मैडम न्यूटन।
0: यस, यू आर राइट माय फ्रेंड।
2: इन्होंने ग्रेविटी के बारे में।
0: सबसे लंबी नदी वर्ल्ड में, विश्व में बात कर रही हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर।
2: क्या कह रहे मैडम?
0: लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी, सबसे
2: सबसे लंबी। एक जैसे अमेजन है और एक नील है, तो अमेजन है मतलब वॉल्यूम में बड़ी है, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो नील है।
0: जी, तो जो आपका सेकंड आपने जवाब दिया ना, खेल रहे हैं आप मेरे साथ, है ना
2: मैडम? एक्चुअल आप जो है ना क्लियर नहीं कर पा रहे ना, तो
0: मैं आपसे जो है ना घुमा फिरा के पूछ रही हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो उस चीज को मैडम उसी में मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन।
0: चलिए फटाफट सवाल पूछो कि समय हमारे पास कम है। अच्छा, अगला सवाल आपसे हर बार की तरह मैं आसान ही पूछने वाली हूँ। तो अब आप मुझे बताएं, अ सूटेबल बॉय किसने लिखी है?
2: इसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं मैडम।
0: इसका नहीं पता आपको आंसर? खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर टेलीफोन लाइन पे। हेलो।
3: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: हाँ जी मैम, मैं दिल्ली बात कर रही हूँ, ममता कुमारी।
0: जी ममता जी, आपसे ये सवाल है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, किसे कहेंगे?
3: कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहेंगे?
0: कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ भाई, ये तो अब आपने बड़ी वाजिब सी बात कही है। अगली बार ना मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगी कि आपके लिए ना हिंदी में भी मैं सवालों को पूछ पाऊँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ी में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महाद्वीप कहा जाता है कॉन्टिनेंट को।
3: ओके मैम, सॉरी मैम, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है आपने?
0: जी
3: मैम, ऑस्ट्रिया महाद्वीप मैम।
0: ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया।
3: हाँ जी मैम
0: जी। अच्छा, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स के बारे में, यानी कि हम जब पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं?
3: मैम वनस्पति।
0: हाँ, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी उसे कहा जाता है।
3: यस मैम
0: जी, सही जवाब आपने दिया। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? सबसे
3: मैम स्टैचू ऑफ यूनिटी।
0: जी बहुत बढ़िया, तीन सवालों के सही सही जवाब आपने हमें दिए यहाँ पर। और अब बताएं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जल्दी से बता दें तो मैं अगले कॉलर को ले लूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सभी इसमें सम्मिलित हों। खैर मैं समझ पा रही हूं आपके लिए मुश्किल है, पर फिर भी आपको ढेरों शुभकामनाएं दोस्त, और हम यही चाहते हैं कि सबको मौका मिले। अभी लास्ट कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अपना नाम बताएं। जी जल्दी से बताएं कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं दोस्त?
4: मैडम, और आपका भी दोनों जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, तो आपके लिए सबसे पहला सवाल हमारी ओर से ये है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है?
4: क्या मैडम?
0: वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, हम खून देते हैं ना, ब्लड देते हैं, कि दिवस किस दिन

0: बनाया जाता है?
1: वो जिनको खून की ज्यादा जरूरत होती है
0: वो
1: उनके
0: दिवस मनाया जाता है
1: लिए
0: ना,
1: मनाया
0: दिवस
1: जाता है।
0: मनाया जाता है जी दोस्त। मैं समझ पा रही हूँ कि बताना नामुमकिन सा हो रहा है। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि हम सबको प्रेरित करते हैं आज ही के दिन इस दिवस को मनाकर अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम सभी को दान देना चाहिए, हमें अपने ब्लड का दान देना चाहिए, खून का दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से माफ़ी हर उस गुस्ताखी के लिए जो आपको नागवार लगी हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप सभी यूं ही प्रयास करते रहें, हमारे शो से जुड़े रहें। इस बार नहीं तो कभी ना कभी तो वो मौका ज़रूर आएगा जब आप सारे सही जवाबों, सारे सही सवालों के, जी सही सवालों के सही जवाब देकर बन जाएंगे रेनबो जीनियस। फिलहाल ये नाचीज दोस्त गीतिका उनियाल आपसे ले रही है इजाज़त, और वादा है आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत सी बातें होंगी। अपना प्यार तकरार हमें यूं ही भेजते रहिए, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता

0: इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

झिंगाट वाली गुड इवनिंग दिल्ली एनसीआर। संडे इवनिंग का मूड सेट हो चुका है और आप सुन रहे 102.6 एफएम। मैं हूं आपके साथ भावना और अगले एक घंटे तक आपके साथ रहेगा संगीत, शहर की बातें और संडे की शानदार वाइब्स लेकर आपका अपना सिटी लाइट्स आ चुका है। सुबह की आरामदायक शुरुआत हो चुकी होगी, दोपहर अपनों के साथ बीती होगी और अब शाम सुनहरे रंगों में सज चुकी है। ये शाम हमारे नाम कर दीजिए, क्योंकि कहीं आपके दोस्तों के साथ ज़रूर आउटिंग चल रही होगी, संडे का दिन है, कहीं चाय और सुकून भरी शाम बीत रही होगी और कहीं दिल में वही संडे वाला एहसास, रविवार वाला एहसास। यार वीकेंड थोड़ा और लंबा हो जाना चाहिए, यह एहसास हर संडे को होता है, लेकिन अभी मंडे दूर है मेरे दोस्त। इस खूबसूरत शाम की बात हम कर रहे हैं, संडे की शाम हमारे साथ आप बिता लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मुस्कुराइए और खुद को दीजिए एक रिफ्रेशिंग रिचार्ज्ड म्यूजिकल ब्रेक। आज सिटी लाइट्स में होने वाली है बहुत सारी बातें और ये जो बहुत सारी बातें उसमें शहर से जुड़े दिलचस्प अपडेट्स आपको देंगे, खास खबरें होंगी और ऐसे किस्से जिन पर टिकी रहेंगी दिल्ली एनसीआर की नजरें, शहर की धड़कनों से लेकर आसपास के हलचलों तक हम रहेंगे आपके साथ पूरे एक घंटे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी करीब है और आज के शो में हम शेयर करेंगे एक ऐसा योग आसन ना जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और साथ ही अपने दिनचर्या का हिस्सा भी बना सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सिटी लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है मेरे साथ यानी भावना के साथ, एक सुनहरी शाम हमारे साथ, सिटी लाइट्स के साथ 102.6 एफएम के साथ।

आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स, मैं हूं आपके साथ भावना 102.6 एफएम रेनबो पर। आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि 21 जून को पूरी दुनिया मनाने वाली है इंटरनेशनल योगा डे। योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है मेरे दोस्त, योग तन मन और विचारों के बीच संतुलन बनाने की भी एक खूबसूरत कला है। और जैसे जैसे ये योग दिवस करीब आ रहा है ना, हम अपने विशेष सेगमेंट आरोग्य पथ में आपको बता रहे हैं ऐसे आसान योगासन जिन्हें आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। आइए सैटेलाइट्स में आज हम बात करते हैं त्रिकोण आसन की। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, इस आसन में शरीर त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल की आकृति बनाता है। त्रिकोणासन शरीर को लचीलापन देता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कमर पैरों और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर के संतुलन को बेहतर करने में भी सहायक माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि त्रिकोण आसन आप कैसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखकर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को दोनों ओर फैलाएं और फिर धीरे धीरे एक तरफ झुकते हुए हाथ को पैर की ओर ले जाएं, जबकि दूसरा हाथ ऊपर की ओर रहे। याद रहे, दूसरा हाथ ऊपर की ओर रहे। कुछ सेकंड रुके, इनहेल एक्सहेल करें, लंबी लंबी सांसें लें और फिर दूसरी ओर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। ध्यान रहे, योग हमेशा ना अपनी क्षमता और सही मार्गदर्शन के अनुसार ही करें। तो इस इंटरनेशनल योगा डे से पहले क्यों ना हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए जरूर निकाले जाए, क्योंकि ये सिर्फ दिन ना रह जाए, 365 दिन आप योग को अपनाएं, क्योंकि अच्छी सेहत किसी मंजिल का नाम नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। मैं हूँ आपके साथ भावना, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, लेकिन याद जरूर रखिएगा, योग अपनाइएगा और स्वस्थ जीवन को अपनी डोर बना लीजिएगा, यही जीवन का असली मंत्र है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
4: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जून की शामों का ना अपना ही अलग जादू होता है, अपना ही अलग मैजिक होता है। दिन भर की गर्मी के बाद जैसे ही सूरज ढलने लगता है, आसमान के रंग भी बदलने लगते हैं। कहीं सुनहरी रोशनी, कहीं हल्का नारंगी रंग, और कहीं बादलों के पीछे छुपता सूरज, और देखते ही देखते शहर की सड़कों पर जगमगाने लगती हैं सिटी लाइट्स। इन दिनों दिल्ली में अगर सूरज ढलने की बात करें, यानी आज की बात करें, तो करीब 7:20 पर आसमान में जो सूरज है वो ढल जाएगा और अलविदा कह देगा। इसलिए अभी भी आपके पास थोड़ा सा वक्त है इस खूबसूरत शाम को महसूस करने का। तो अगर आप घर की अभी बालकनी में है, किसी पार्क में टहल रहे, या फिर गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे हैं, तो एक बार ना मेरे कहने पर आसमान की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सनसेट हमें एक छोटी सी बात सिखाता है। क्या बात? वो ये बात कि दिन चाहे जैसा भी रहा हो, हर शाम जो है ना खूबसूरत समापन लेकर आती है, और हर सुबह एक नई शुरुआत। और इसी सनसेट वाइब विद माय 102.6 एफएम ब्यूटीफुल ट्राइब के साथ सुनते हैं अब अगला गाना आपके अपने सिटी लाइट्स में, यानी मेरे साथ भावना के साथ।

दिल्ली NCR संडे की शाम है और शायद आप में से कई लोग ना अगले ट्रिप की प्लानिंग भी कर रहे होंगे। अगले ट्रिप की प्लानिंग इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, कई लोग तो इस समय माउंटेन्स बीचेस पर होकर आ भी चुके होंगे, शायद कुछ दिन और बाकी हैं, आप मना लीजिए थोड़ी सी और छुट्टियाँ। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल ना ट्रैवल सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रह गया है? पहले लोग वेकेशन पर जाते थे आराम करने, अब लोग पता कहाँ जाते हैं? डेयरकेशन पे। समझे आप, डेयरकेशन यानी कि वेकेशन जहाँ आप खुद को चैलेंज कर सके। कहीं माउंटेन ट्रेल्स पर ट्रैकिंग हो रही है इस समय, कहीं लोग हजारों फीट की ऊंचाई पर सस्पेंडेड ब्रिजेस पार कर रहे हैं, जी हाँ, तो कहीं बंजी जंपिंग की आप वीडियोस देख रहे होंगे, अल्ट्रा मैराथन्स हो रही हैं, एडवेंचर रेसेस हो रही हैं। हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे डेयरकेशन फिटनेस को भी चैलेंज करते हैं, अपना ही रोमांच है अपनी ओर ये खींच रहे हैं डेयरकेशन। दरअसल हो क्या रहा है कि दुनिया भर में ना एडवेंचर ट्रैवल तेजी से एक ट्रेंड बनकर उभर रहा है। लोग अब सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यादें तस्वीरों में नहीं धड़कनों में बसती है। किसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की खुशी एक अलग होती है, अपने को चैलेंज करके वहां तक पहुंचना जहां आपको लगता था शायद मैं कभी सपने में सोचता था यहां पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी। किसी कठिन रास्ते को पार करने का आत्मविश्वास एक अलग ही होता है, या अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का एहसास, यानी कि डर के आगे जीत है, यही वो पल है जो एक सफर को खास बना देता है। लेकिन हाँ, एडवेंचर का मतलब सिर्फ रिस्क लेना नहीं है बल्कि तैयारी हो, सुरक्षा हो, जिम्मेदारी हो, इसके साथ नई सीमाओं को छूने का एक अपना ही रोमांच है। तो अगर आपको मौका मिले आप क्या चुनना चाहेंगे, माउंटेन ट्रैकिंग, स्काई ब्रिज वॉक, अल्ट्रा मैराथन या फिर छड्डो सब परे घर की बालकनी में बैठकर चाय और म्यूजिक का जो वो है ना लुत्फ उठाना, वो अलग ही है। तो आपका जो भी स्टाइल हो, सफर का असली मजा वही है जहां दिल खुश हो जाए। और अब ऐसी ट्रैवल वाइब के साथ सुनते हैं अगला शानदार गीत आपकी अपनी सिटी लाइट्स पर। आप सुन रहे हैं 102.6 FM मेरे साथ यानी भावना के साथ, और हमारी शाम आपके साथ बहुत बढ़िया बन रही है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको

साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो यानी मेरे साथ 102.6 FM और कार्यक्रम का नाम है सिटी लाइट्स। और हमारी गुड इवनिंग बहुत बढ़िया चल रही है, आपकी भी गुड इवनिंग बहुत अच्छी गुड गुड वाली हो रही होगी। पर दिल्ली NCR, कभी आपने सोचा है कि जिस यमुना को हम आस्था, संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं, उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? क्या सिर्फ सरकार के हाथ में है या हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है? आज इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए यमुना तट स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे दिन। और इस अभियान का संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है कि एक संकल्प स्वच्छ यमुना। हम अक्सर पूजा के बाद फूलमाला, कपड़े या अन्य सामग्री नदी में प्रवाहित कर देते हैं, हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यही छोटी छोटी आदतें ना धीरे धीरे नदी को प्रदूषित कर देती है? तो क्यों ना आज एक और छोटा सा संकल्प लिया जाए कि यमुना बिना कचरा नहीं फेंकेंगे। कोई भी नदी हो, यमुना ही क्यों, कोई भी नदी हो, कहीं कचरा नहीं फेंकेंगे, आसपास कचरा नहीं फेंकेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। क्योंकि ना यमुना सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये दिल्ली की धड़कन भी है। और जब हजारों लोग एक साथ किसी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं ना, तो बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं होता, महसूस किया जाता है। तो अगर आप भी मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ यमुना मिलनी चाहिए, तो इसी सोच का हिस्सा ज़रूर बनेगा। नदी साफ होगी तो हमारा शहर भी मुस्कुराएगा और यमुना हमारी है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। क्यों, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं फिर से एक बार शानदार गाने के साथ।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं सिटेलाइट्स, वक्त हो रहा है 5:44 और हमारी हसीन खूबसूरत शाम आपके साथ बीत रही है। सिटेलाइट्स के साथ मैं हूँ आपके साथ भावना, लगातार आपके साथ बनी हुई हूँ। दिल्ली एनसीआरी काम की बात है, अगर आपके घर में ना कोई छात्र 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है या आप खुद नए करियर विकल्प तलाश रहे हैं तो आपकी काम की बात यह हो सकती है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यानी DSEU ने अपने PG और PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और दिल्ली के अलग अलग कैंपस में कई नए और रोजगार कोर्सेज इस समय उपलब्ध हैं, जिसमें डेटा साइंस, अप्लाइड सस्टेनेबिलिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्नाइज्ड टॉपिक्स शामिल हैं। जिनके कोर्सेज की जो तारीख, अगर जो आवेदन की तारीख आपको बताऊं तो लास्ट डेट है 30 जून, इसलिए जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो समय रहते अपनी जानकारी पूरी कर सकते हैं, वहाँ से पा सकते हैं। और आज के दौर में ना दोस्तों, डिग्री सिर्फ मायने नहीं रखती, बल्कि क्या मायने रखता है, वो रहता है कौशल यानी स्किल्स, उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो युवा है वो अब इन कोर्सेज की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य की ज़रूरतों को इनके साथ जोड़ते हुए भी देख रहे हैं। आप सुनते रहिए सिटी लाइट्स, बने रहिए 102.6 FM के पास साथ, और एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए चल रहे हैं, सुनते रहिए और ये संडे की शाम और हसीन बनाते रहिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

दिल्ली एनसीआर, अगर आपकी दिलचस्पी न कला, रंगों और रचनात्मकता में है तो आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत पल है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। राजधानी में बीकानेर हाउस में एक बार फिर कला प्रेमियों के लिए खास आकर्षण आया है और यहाँ इन्फिनिटी वेंस नामक एक समकालीन कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें कलाकारों की कल्पना, विचार और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। अक्सर कहा जाता है ना कि कला सिर्फ दीवारों पर टंगी तस्वीर नहीं होती, ये एक भावना होती है, एक विचार होता है और कभी कभी एक ऐसा संवाद भी जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। तो अगर आप इस रविवार की शाम या फिर आने वाले दिनों में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो आप बीकानेर हाउस का रुख कर सकते हैं। यहाँ ये जो प्रदर्शनी है वो 16 जून तक आयोजित की जा रही है और एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो कभी कभी ना भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा रुक कर रंगों और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना भी जरूर होता है, क्योंकि कला हमें सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की भी सीख देती है। आप सुन रहे सिटी लाइट्स मेरे साथ यानी भावना के साथ। हैव अ वंडरफुल गुड इवनिंग।

तुहूर कहते हैं मुझे, मुझे भावना कहते हैं आप, मुझे प्यार से भावना बुलाते हैं। और दिल्ली एनसीआर, अगर आप अक्सर देर शाम या रात को सफ़र करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। कई बार हम कहते हैं कि शहर की सड़कें ना सिर्फ चौड़ी होने से बेहतर नहीं होती है, बल्कि उनका सुरक्षित और रोशन होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जी हाँ, और अब दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा कम करने के लिए एक नई पहल की जा रही है, एक नई कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश पता है क्या है कि जल्द ही राजधानी में पारंपरिक जो स्ट्रीट लाइट्स आप देखते हैं ना, उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएंगे स्मार्ट LED लाइट से। इनकी खास बात पता है क्या रहेगी? इनकी खास बात ये रहेगी कि इन्हें एक सेंट्रल कमांड सेंटर से ना मॉनिटर किया जाएगा। यानी अगर आप किसी सड़क की लाइट अब ख़राब हो जाती है तो उसकी जानकारी अब तुरंत मिल जाएगी और उसे जल्द भी ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बिजली की बचत होगी, बल्कि रात के समय सफर करने वाले लोगों को भी ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलेंगी। और सच कहूं तो एक रोशन सड़क सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती है, बल्कि भरोसा भी देती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कें और भी ज्यादा सुरक्षित और भी ज्यादा स्मार्ट नजर आने वाली है। और अब रोशनी और उम्मीदों से भरे इस शहर के नाम सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत सिटी लाइट्स में।

और दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद है आपकी ये संडे की शाम आपके लिए सुरीली, खुशनुमा और यादगार रही होगी। कल से फिर शुरू होने वाला नया हफ्ता, यानी कि आने वाला है मंडे, नई चुनौती और नए अवसर के साथ। तो आज ना थोड़ा सा आराम कर लीजिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल लीजिए और नई ऊर्जा के साथ मंडे का फिर स्वागत करिएगा। सुस्वागतम के साथ मैं हूँ आपके साथ भावना। आप सुन रहे थे सिटी लाइट्स पर 102.6 FM के साथ। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आस पास ना रोशनी फैलाते रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल संडे एंड अ वेरी गुड इवनिंग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टि

0: दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमें पूरा यकीन हुआ एतबार है कि आप बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों, आपको पता है, यूँ तो कुदरत ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत सारे तोहफे दिए हैं, जिनके लिए हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम ही है। चाहे ताउम्र करते रहे तब भी कम पड़ेगा। तो और इन सारे तोहफों में एक बड़ा तोहफा हमें और प्यारा सा तोहफा दिया है हमें, और जिसका नाम है आम। आम का पना, मैंगो लस्सी, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो रबड़ी, मैंगो पराठा, आम का मुरब्बा, आम का अचार, आम की खट्टी मीठी दाल, और जो भी मैंगो से बनता है वो, या पीले रसीले दशहरी आम, या कोई ऐसा गाना जो आपको आम को डेडिकेट करना हो, या किसी ने आपके घर में आम की पेटी भिजवाई हो और आपके आम से दिन को खास बना दिया हो, आपकी कोई भी ऐसी बात जो जुड़ी हुई हो आम से, तो हमें बताइए। 9868

8107070 पर हम आपको बताएंगे और सबको बताएंगे आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में पहला गाना चांद की तरफ से आम के लिए। बस आपको एक थोड़ी सी जहमत ये करनी है कि इस गाने में जहां जहां भी चांद शब्द आया है वहां वहां आप आम लगा लीजिए। तो आम के दीवानों शुरू करते हैं।

और यकीन मानिएगा दोस्तों, जब भी हम बाजार में जाते हैं और आम नजर आता है तो यही गाना हमारे दिल में आता है, मेरा आम मुझे आया है नजर। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे अपनी ये दिल की बात शेयर की जाए और आपसे भी जाना जाए कि आखिर आम को देखकर या आम को पाकर या आम को खाकर या किस रूप में आम को खाकर आपके दिल को खुशी मिलती है। बस यही आज हमने जानना चाहा है आपसे मैसेज मसाला मिक्स में, जो आप बता सकते हैं हमें 9868107070 पर मैसेज के जरिए। जैसे हमें बताया है कुमार गौरव, इंदुकर नेशनल पार्क तालुक का चिमूर डिस्ट्रिक्ट चांदपुरा से, चंद्रापुर से इन्होंने लिखा है, आम के जूस रोटी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जी आम है ही ऐसा कि आप आम हाथ में लें और उसको आप मुंह तक ना ले जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। आज का शो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी खास लोगों के लिए है। अभी दो दिन पहले ही हमारे दोस्त ने हमारे घर में आम की टोकरी भिजवाई, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो गया, इसलिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। किशन वंजानी, नीलम, स्वाति एन किश्नु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और टोकरी जो आई है अभी तक चल रही होगी, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगला मैसेज आया है हमारे पास कस्बा बिलराम उत्तर प्रदेश से, इरशाद अहमद शाह, शाह जहां बेगम, मरियम जैनब जी का आया है, लिखते हैं आदाब आदाब, और बस इन्होंने लिखा है और प्रोग्राम लिखा है मैसेज मसाला मिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। आपको नमस्कार, जीवन जीना तो बहुत आम है पर आम बहुत खास है, प्रदीप सोनार, परी सोनी, प्रियली सोनी, मिष्टी सोनी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिखा है। देखिए इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग आम खाते हैं ना, वो आम के दीवाने हुए बिना रह ही नहीं सकते। तो आपकी दीवानगी कैसी है, बस आज हम यही जानना चाहते हैं। और दोस्तों पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, कुछ लोगों को ना मीठा आम पसंद नहीं होता, उन्हें खट्टा आम पसंद होता है। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी रेनबो पर, और आज चांद है आपके साथ। आवाज अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है। आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया।

दोस्तों, आम में कोई ऐसी खास बात है जो ऊपर वाले ने उसको दे के भेजी है कि वो आम नहीं होता। जब आम का मौसम आता है, आम ऐसा लगता है जैसे फैमिली का कोई मेंबर हो। दोस्तों, आपको पता है भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आम की सैकड़ों किस्में हैं, जिसमें अल्फांजो, दशहरी, लंगड़ा और चौसा बहुत फेमस है, ये तो आप जानते ही होंगे। आम केवल स्वाद ही नहीं है बल्कि इसमें विटामिन ए और सी भी पाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा फल होगा जिस पर इतनी कहावतें हों, और आम पर तो कहावत

0: भरी पड़ी हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है। चलिए पहले आपके मैसेजेस लेते हैं, अगर आपको पता है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कार्ड से मोहम्मद फुरकान साहब लिखते हैं कि गुड इवनिंग चांद जी, आप कैसी हैं, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। थैंक यू, पहला ही सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। अगर आपने बताया होता कार्ड मोहम्मद फुरकान जी, कार्ड से जो आपने लिखा है कि आपको आम का कौन सा रूप पसंद है, तो मैं बेहद खुशी होती, लेकिन आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्वरिचित हमें कविता लिख भेजी है, जिन्होंने उनका नाम तो आप जानते ही हैं, इनका नाम है जो कि हार्ट दर्शना बाजार से अररिया बिहार से सरफराज आलम जी ने लिखते हैं, आम से बनता मीठा रस जिसे पीकर मिटता हर त्रास, आम रस शेक और जूस सुहाना सबको लगता बड़ा मन भावना, कच्चे आम का अचार निराला खट्टा मीठा स्वाद मतवाला, चटनी मुरब्बा पना प्यारा गर्मी में देता है सहारा। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने, बहुत बड़ी कविता लिखी है, लेकिन सरफराज जी हम ना आपको बाद में पढ़ के सुनाएंगे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, चांद मुखर्जी मेरा आम गर्मी में आया है मुझे नज़र बाजार में, आम को लबों से छुआ मगर दिल भरा नहीं। जी आम है, होता ही ऐसा है कि जिससे दिल नहीं भरता। आम से बना खाद्य मिठाई श्रीखंड इंदौर की खास पहचान है, जो आम का गूदा दही चीनी के मिश्रण से बनाया जाता है। गर्मियों में ठंडा श्रीखंड देशी व्यंजन मेहमानदारी में खास ख्याल रखता है। अनिल शर्मा सरिता विहार से ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल जिन मेहमानों के आगे आप आम रख दीजिए ना, बस वो मेहमान आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो आम फलों का राजा है, कोई तो खास बात है आम में, यूं ही कोई राजा नहीं बन जाता। बिल्कुल कोई खास बात नहीं, आप उसे एक बार खा के देख लीजिए तो आपको उसकी खासियत पता चल जाएगी। आम एक ऐसा फल है जिसकी इतनी सारी किस्में हैं और किसी भी फल के नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए और अपनी बातें हमसे शेयर करने के लिए। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, इन्होंने गाना लिखा है। नहीं नहीं जनाब, ये गाना आप दूसरे प्रोग्राम में सुन सकते हैं, अभी तो हम आपको सुनाएंगे केवल वो बातें जो आपके भेजे हुए मैसेजेस हैं वो सुनाएंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएगा एक प्यारा सा गाना और उसके बाद आपके मैसेजेस के साथ हाजिर हो जाएंगे आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स के साथ। सुनते रहिए हमें।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

कतल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं,

0: वाणी आकाशवाणी।
1: और दोस्तों, न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें सुन पा रहे हैं और हम अपने कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखते हैं। और आज मैसेज मसाला मिक्स में हमने आपसे जानना चाहा है कि आम आपको किस रूप में खास लगता है, कैसे पसंद है आपको, आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। यहाँ पे चांद है आपके साथ और चांद को आप बता के अपने दिल की बात, अपने दिल की बातें आप हमसे शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर कोई नहीं है, हमारे साथ मैसेज पर कौन है उनका देखते हैं मैसेज क्या है। गुड इवनिंग चांद मैम, कैसी हैं आप? पैन मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि मैम हमें तो आम की चटनी बहुत पसंद है एंड वैसे कच्चा आम नमक के साथ खाने में मज़ा ही अलग है अपना। एंड वैसे मैंगो शेक भी अच्छा लगता है हमें। आम अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से ऐसा लिखती हैं, क्या बात है अंशी, आपके नाम से लग रहा है कि आप ऐसे करके आम खाती होंगी, है ना। आम अगला मैसेज पढ़ते हैं। आम और जामुन का एक बेहतरीन योगदान है, किसी वजह से आम से पेट में ख़राबी हो जाए तो 8 से 10 जामुन खा लेने चाहिए, उसमें पेट को जल्दी राहत मिलती है और पेट भी जल्दी सही हो जाता है। आम हमारे लिए बहुत ख़ास है, फिर भी यदि हम आम पर ज़्यादा ना खाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हिसाब से खाएं और ज़्यादा खा के भी तो 8-10 जामुन ज़रूर खा लेने चाहिए, उससे पेट का संतुलन सही रहता है। सोनू बिजनौर से ऐसा लिखते हैं। सोनू जी बहुत अच्छी बात बताइए आपने, आम के जो दीवाने होते हैं ना, एक बार अगर आम खाने बैठ गए, एक खाया फिर थोड़ी देर बाद दूसरा खाया फिर तीसरा खाया, फिर ऐसे करके कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप ऐसा खा लेते तो सोनू जी ऐसे कहते हैं कि 2-4 जामुन खा लेने चाहिए 8-10, उससे पेट ख़राब होने की संभावना कम रहती है। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं कि आई लाइक मैंगो लस्सी, मैंगो लस्सी पसंद है इनको। ऑस्ट्रेलिया से ऐसा मैसेज आया हमारे पास, हमारे दोस्त बहुत दूर दूर से हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जोया जी आपका मैसेज करने के लिए। और आदाब पीरोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, आमों का फल राजा है, आम काट के खाना चाहिए या चूस के खाना चाहिए, आप बताओ, धन्यवाद। कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह शाहजहाँ बेगम मरियम जैनब, देखिए हमें तो आम जैसे भी मिल जाना, हमें आम बेहद बेहद बेहद पसंद है आम। और अगला मैसेज, मुझे आम बहुत पसंद है, अभी हमारे गांव में आम पर्याप्त मात्रा में है, मेरे पास आम के 12 पेड़ हैं, सब दिन मेरे पिताजी बाग से पके हुए आम तोड़कर लाते हैं जिसे हम रोटी मुरही या चूड़ा के साथ खाते हैं। रंजीत कुमार मंडल 60 अररिया बिहार से ऐसा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और ये यहाँ पे एक गाना और हम आपको सुना रहे हैं, आपको पेश कर रहे हैं, जहाँ पे नाम लिखा है ना वहाँ पे आम कर दीजिएगा, ठीक है, और इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो को चांद के साथ। आज की शाम मैसेज मसाला मिक्स में आज हम आपसे जानना चाहते हैं आम का कौन सा किस्म आपको पसंद है, और अगर आपको पता है नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो हम तो बताएंगे ही आपको।

आम ऐसा खास है ना कि उसकी खासियत तो क्या ही बयां की जाए, लफ्जों से बयां करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आम बहुत खास है, लेकिन इतना खास है कि आम के ऊपर मुहावरे कहावतें देखिए कितनी हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी एक आम से दोहरा फायदा। आम खाओ पेड़ मत गिनो, आम खाओ पेड़ मत गिनो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, आंधी के आम होना या जिसके पेड़ के आम मीठे होते हैं, पत्थर भी उसी पर पड़ते हैं जनाब, आम का मौसम होना, यानी कितना सारा कुछ होता है ना दोस्तों। आम हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये सिर्फ वो इंडियंस यानी हम भारतीय इस खासियत को जान सकते हैं, तभी तो आज हमने ये टॉपिक रखा है। और देखिए ना कितने सारे आम आए, ये फ्रेश आम सिर्फ

आपके लिए मेरे खेत से एंजॉय करो जी, प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप इतने सारे आम भेजने के लिए, काश ये असली होते। और भी बहुत सारे आम की टोकरी आई है। शुभ संध्या चांद मुखर्जी, आपके सबसे बढ़िया आम मुझे कानपुर लखनऊ आम दशहरी लगता है, इसमें स्वाद ज़्यादा होता है, इसकी गुठली बिल्कुल कागज़ की तरह पतली होती है। देखिए इतनी बार आम का नाम ले मुंह में पानी आ गया। राजेश बल्ला एडवोकेट कक्कर खेरा मेरठ से ऐसा लिखते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, फलों का राजा आम है, आई लव आम, बाजार में आम कार्बेट से पके होते हैं। अच्छा, और इन्होंने लिखा, लिहाजा तरीक़े से इस्तेमाल करें, तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही खाएं ताकि स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। ज़्यादा आम खाने से फुंसी फोड़े भी होते हैं। देहरादून से आलोक पवार और मिन्नी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इतना अच्छी बात बताने के लिए। आप तो आम नहीं ख़ास हैं सैयारा फिल्म। अच्छा, ये गाने सुनाने का प्रोग्राम नहीं है। देवती सोनी जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आपने मैसेज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिए, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप सुनें और इन्जॉय करें। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है और आम की बात है तो क्या आम सबके दिलों पर राज करता है और हमें तो आम के बिना खाना ही नहीं पसंद। आम पसंद नहीं आता, आम है तो हम खाना खा लेते हैं वरना खाना छोड़ देते हैं। कभी आम ही हमारे लिए डाइजेशन सिरप है। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। किशन वजैनी, नीलम स्वाति और किशन रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने फिर से मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर पूर्णिमा का चांद जी, गुड इवनिंग। डियर आमों की तो बहुत शौकीन है, शौकीन थी। मुझे सभी वैराइटीज़ का भी पता है क्योंकि मेरे पापा की फ्रूट्स की शॉप थी, बट अब तो ड्यू टू डाई शुगर अब कुछ सब कुछ छोड़ दिया है। मैंगो डे, अरे मैंगो डे बता दिया आपने, क्या बात है। धर्म भाटिया जी ने लिखा है रोहतक से, चलिए हम बाद में बताएंगे, आपने तो बता दिया। धर्म भाटिया जी आप हर तरफ नज़र रखती हैं, चलिए कोई बात नहीं। बहुत आम खा लिया आपने, आप सबको देखे खाते हुए, वो भी दिल को एक खुशी मिलती है। सबको खाते हुए देख कर भी दिल को एक अलग सी खुशी होती है। जब अपने खुश होते हैं ना तो दिल में एक अलग सी खुशी होती है, ये तो आप भी जानती होंगी, है ना। विजय कुमार रामदेव जी लिखते हैं, नमस्ते, कैसी है आम? हम बहुत अच्छे हैं। हमको आम का मैंगो शेक बनाकर पीना और आम का पना बहुत पसंद है। एक गाना हमारी तरफ से आम के लिए, आम का आना। अच्छा, आम का आना ना ना पना बनाना, आम का आना प्यार आ गया रे मुझे प्यार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज भी इन्होंने बता दिया है कि नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है, चलिए हम भी बता देते हैं। नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। तोतापरी और बादामी आम पसंद है, हम तो तोतापरी घर की खिड़कियों पर और छत से ही तोड़ लेते थे। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से ऐसा लिखते हैं। चलिए बहुत सारे मैसेजेस हमने पढ़ लिए, बहुत सारे। अब एक गाना आपको सुनाते हैं, ये भी हमने आम को डेडिकेट किया है। आप भी सुनिए, एंजॉय कीजिए आज की शाम चांद के साथ आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में। आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको आम किस तरीके से, कौन सा रूप आम का पसंद है, हमें बताइए 9868107070 पर।

0: दोस्तों ये प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ये गाना कंटिन्यू रहेगा।
1: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

एक महफिल में वो भी बैठे थे, लोग आमों का जिक्र करते थे, आम ऐसा हो आम वैसा हो। पूछा गालिब से आम कैसा हो, बोले गालिब कि पूछते हो अगर सिर्फ खूबियों पे रखिए नज़र, बात पहली ये कि मीठा हो, दूसरी बात ये बहुत सा हो। दोस्तों यही तो है आम की खासियत कि एक आम खाने से कभी मन भरता ही नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगला मैसेज हमारे पास आया है सुहानी शाम का आदाब, प्यार भरा आदाब। शमसुल कमर राही जी ने लिखा है कि आम वो फल है जिसका नाम लेते ही मुंह में मिठास

0: घुल जाती है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा चौसा आम पसंद है, मैं यही खाता हूँ। वैसे सबकी अपनी पसंद है, आम तो सभी लाजवाब होते हैं, पर इन्हें ज़्यादा ना खाया जाए, नुकसान भी हो जाता है, इसलिए एहतियात बनाए रखिए। लेकिन अभी एक हमारे दोस्त है, उन्होंने मैसेज किया था ना, ज़्यादा आम खा ले तो 4-5-6 जामुन खा लेने चाहिए, उससे पेट ख़राब नहीं होता। अगला मैसेज हमारे पास आया है मिमशाद अली फ्रॉम बिहार से, लिखते हैं मैं अभी आम खा रहा हूँ, आपको भिजवा दूँ? बिहार से यहाँ तक आते आते ना थोड़ा ख़राब हो जाएंगे, ऐसा करिए आप खा लीजिए सारे आम हमारी तरफ से और आसपास बांट दीजिए लोगों को, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर से फारूक अली साहब का, लिखते हैं आम खाने का तो मज़ा बाग में आता है, कच्चे आम को गुड़ के साथ पकाकर बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, कच्चे आम को, लेकिन वो अभी किसने कहा था ना कि आम को भिगो देना चाहिए 4-5 घंटे, तो उसका जो भी उसका बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें होती है केमिकल्स वगैरह सब निकल जाती हैं। अगला मैसेज हमारे पास दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने लिखा है कि ये भी लिखते हैं कि 22 जुलाई को आम राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं कि इन्होंने भी लिखा है कि नेशनल मैंगो डे गेट सेलिब्रेटेड ऑन 22 जुलाई इन इंडिया, इट्स नॉट सेलिब्रेटेड एट ऑल इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज आई डोंट नो द रीज़न, बिकॉज इट्स अ नेशनल फेस्टिवल इन आर कंट्री। सो अच्छा, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सरफराज आलम जी का पूरी कविता पढ़ने के लिए। अरे जनाब, बहुत सारे मैसेज होते हैं, सरफराज जी का मैसेज भी हम पढ़ लेंगे, वक्त बहुत कम बचा है। और अगला मैसेज हमारे पास, बहुत सारे मैसेज हैं दोस्तों, हम तुम, अच्छा जी, नाम भेजें बहुत सारे। अगर आप दोस्तों नाम भेजते हैं ना, उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर भी लिख दें तो बहुत अच्छा लगता है। शुभ संध्या जी, आप कैसे हो? बाहर हो, फूल बरसाओ, चांद मैडम आई हैं, आम अब आम नहीं रहा, आप खास हो गया है। आम और पूड़ी एक साथ खाने का मज़ा आता है। अच्छा, आम का जूस पीने में बहुत मज़ा आता है, आम का पापड़, आम की चटनी, कच्चे आम के साथ नमक लगा कर खाना अच्छा लगता है। आम और जामुन के माहौल में आपका स्वागत है, आप सभी का खेत में आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज किया उसके लिए। अगला मैसेज जाया है मुझे केशर हापुड़ आम दशहरी आम लंगड़ा तोतापुरी आम पसंद है जी। यश शिंदे लिखते हैं मुंबई से, तपती धूप में जब आम मुस्कुराता है हर एक दिल इसके मीठे स्वाद का दीवाना हो जाता है, फलों का राजा यूं ही तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम तो आम के रस में पिसा खोपरा डालकर उसे रोटी के साथ खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। दुर्गेश नागनपुरे ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से ऐसा लिखते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, आम के आम गुठलियों के दाम, आम सब फलों का राजा, आदिल कमर गुन्नौर, शुक्रिया धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास भोपाल से आया, आम पर एग्जीबिशन लगता है जहाँ पर कई सैकड़ों किस्मों के आम रखे जाते हैं, प्रदीपिका सोनी भोपाल मध्य प्रदेश से। बाप रे बाप, इतने सारे मैसेज आप भेजोगे, हमें नहीं पता था, सच में नहीं पता था कि आम, सच में हमें लगा था कि आम सिर्फ हमको ही इतना ज़्यादा पसंद है, सारे लोगों को आम इतना पसंद है। तो दोस्तों, आप खुद खाइए और आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखिए, हो सकता है वो आम ना खा पाते हों या उनके पास इतनी कुव्वत ना हो कि वो आम खरीद सके, तो उनको भी बांट के खाइए, उनको भी अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी दिल में बड़ी खुशी होगी कि मैंने कुछ अच्छा खिलाया है किसी को। स्वस्थ, मतलब थोड़ा भिगो दीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा, पता नहीं वो भिगोए या ना भिगोए या आपसे मिलते ही झट से खा लें। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुनाएंगे गाना। उससे पहले हम आपको बता दें कि अब हम आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। आई होप कि आपने आम के साथ इस प्रोग्राम को ख़ास बना दिया और आपके लिए ये प्रोग्राम ख़ास रहा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने शाम को बहुत इंजॉय किया होगा। तो चांद जाती है लेकिन हम अभी आते हैं एक घंटे के बाद, पूरे घंटे के लिए आपके साथ रहेंगे, छोटे छोटे ब्रेक्स और उसके बाद प्यासा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, आकाशवाणी रेनबो पर। यूं ही बने रहिए हमारे साथ लगातार।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत वेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।

0: 1.4 billion inhabitants.
1: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है. अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है.
0: Frontier Models is spearheading global innovation.
2: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे. हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की. राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई. इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है. 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए. अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता. फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया. महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया. इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर ट्यून्ड इनटू लाइव वायर विथ मी उत्कर्ष शरण। But before we start with our chat today, let's begin with some appropriate music. Here's To Make You Feel My Love by Adele.

0: As always, if you have any suggestions, recommendations, or advice to help your fellow listeners sleep better, please feel free to tell us at 9868107070 on WhatsApp. And while you do, allow us a quick break. We'll be right back.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: If the World Cup fever's got into you too, you might be staying up for tonight's match with plenty of snacks to tide you over. But for a good night's sleep, what you need is a light dinner, taken early. So go fix yourself some food while we play Bluebird by Lana Del Rey.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: और दोस्तों ये शुरू हो चुका है।
8: तुम मत मत मायले, तुम मत मत मायले, तुम मत मत मायले, तुम मत

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

दोस्तों जाना तो हमको भी है, तो हम भी जाते हैं, लेकिन इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आज की शाम आपकी चांद के साथ बहुत खूबसूरत रही होगी। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तो क्या आपका चांद जाए। बाय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है।

जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रेनबो पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: सी तेरी बोली, कु
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर समय हो गया है हमारे इस प्रोग्राम के खत्म होने का, यानी मेरा प्रज्ञा तिवारी का अगले एक घंटे के लिए जाने का। अभी आपसे मिलेंगे उत्कर्ष, प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, संडे रिक्वेस्ट। मैं मिलती हूँ एक घंटे बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: A country with 1.4 billion inhabitants.
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
2: Frontier models is spearheading global innovation.
0: विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज

दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में मिहासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें सभी को बचा लिया गया है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मांदना ने 68 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13वें ओवर में 6 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू द वन द ओनली द मच एंटिसिपेटेड संडे रिक्वेस्ट्स। एंड टुडे आई उत्कर्ष शरण विल बी टेकिंग योर रिक्वेस्ट्स फॉर एनी इंग्लिश सॉन्ग्स दैट यू विश अस टू प्ले। सो व्हाइल वी बिगिन, I would like you to consider, dive into the depths of your memories and tell us which song you wish to hear. Let us begin with a memory of the FIFA World Cup of 2022. In celebration of this year's FIFA World Cup, our first song is Hayya Hayya, Better Together by Trinidad Cardona, Aisha and Davido. Send your requests on while we play this song.

0: That was a lovely song and very much in the spirit of sports. We're waiting for further requests and our contact number is 9868107070. We had a request from Mr. Sanjay who wanted to hear a sea shanty, Velaments. I'm sorry to say we do not have that song. But you seem to like Billie Eilish songs from what I can see. So, we'll try to play a number from Billie Eilish. Meanwhile, allow me to take a very small break.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: We have had another request from Mr. Premchand Premi, speaking from Jitradhampur, District Bijnor, who says, "Greetings to you and your team. I'm a regular listener of your wonderful program. Today I would like to request a song by Lady Gaga. If possible, please play one of her popular songs. It would be a pleasure to hear it on your show. Thank you for entertaining us every day. We thank you for tuning in on the regular, sir. And I would be more than happy to oblige you." So, here is Lady Gaga's Edge of Glory.

0: It has been a lovely evening hosting for all of you, and it hasn't ended yet. So, once again, feel free to request the songs of your choice in English at 9868107070 on WhatsApp, and allow us, meanwhile, to take a very short break.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को

6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम पर वक्त हुआ है 11:05, यानी वक्त हुआ है प्रोग्राम रंगे महफिल का। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, और हम और आप मिलकर चलेंगे खूबसूरत गजलों की गलियों में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए।

0: हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। दिलकश गजरों गजरों का दौर जारी।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिलकश भावों और खूबसूरत लफ्जों का प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी और आप जो सुन रहे हैं हमें अपने तकिए पर सिर रखे वो है हमारे इस प्रोग्राम की रौनक। जगजीत साहब और गालिब का कॉम्बिनेशन।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स

0: जो कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपको बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी के FM रेंदू पर आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम रंगी महफिल, में आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। और ये गजल उन सब के लिए जो आज भी अपने बचपन की रौनक अपने दिल में संजोए हुए हैं, बस उसे झांकना, उसे थपथपाना भूल गए। आइए उस बचपन, उस रौनक को याद कर लेते हैं।

और अब बजने को है 12, यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी इजाजत, पर गानों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की गालिबाना धुनों पर। प्रगति वाड़े की तरफ से बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग CID ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 12:11 मिड नाइट तो नहीं, लेकिन मिड नाइट की शुरुआत हो चुकी है। अगला दिन अध्याय बदलते ही कैलेंडर का आ चुका है, दस्तक दे चुका है और इसका जरिया हम ही बन रहे हैं। हर बार की तरह ये सौभाग्य है हमारा कि दिन की पहली मुलाकात आपके साथ होती है जीरो और शो में, जैसे ही पन्ना पलटता है ठीक 12 बजे। 12:05 बुलेटिन, देश दुनिया का हालचाल लेने के बाद हम आपसे मुखातिब हो जाते हैं और बस अब लगता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपसे जो बात करने का जो कायदा है, जो रास्ता है, कहना चाहिए जरिया है, वो और बढ़ता जाए, वाइड होता जाए। और इसकी शुरुआत कर चुके हैं अफशा खानम जी। अफशा जी हमें लिखते हैं ज़िला बिजनौर से और इन्होंने बस फटाफट बताया कि रजत जी नमस्कार, स्वागत किया। स्वागत तो आप सभी का है और आपका भी अफशा जी। प्रोग्राम है जीरो और शो आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो आप जुड़े हैं ही, जहां 102.6 वाली रेंज खत्म हो जाती है वहां से हमारी ऐप की रेंज शुरू हो जाती है और ऐप की रेंज अभी जा पहुंची है इसराइल धर्मेंद्र जी के पास, जिन्होंने सीधे सर जी नमस्कार कहा। आपके हालचाल बहुत ठीक हों हम ये उम्मीद करते हैं धर्मेंद्र भाई। आपको भी नमस्कार, बहुत सारे शुभकामनाएं आने वाले दिन की आप दोनों को ही और हमारे सभी श्रोता मित्रों की जो अभी बस जुड़ने वाले हैं, जुड़ने जा रहे हैं। जीरो और शो है प्रोग्राम का नाम, इसमें सतरंगी कार्यक्रम है, समझिए इसे। खूबसूरत से खूबसूरत गाना, एक अपने दौर का मशहूर गाना लाने की कोशिश करता हूँ आप तक के लिए। तो आप जुड़े रहें और जुड़े ही रहें क्योंकि मैं आपके साथ ही रहने वाला हूं और करेंगे बातें पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने होंगे खूबसूरत गाने जो इस शो के लिए खास तौर से चुन कर लाता हूं मैं आपके लिए। रजत, स्वीकार कीजिए मेरा नमन, मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी को आभार और शुभकामनाएं आने वाले दिन की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार।

0: दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए

0: 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि

0: भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रात के अंधेरे हैं, कहते हैं कि हमें मंजिल नजर आती नहीं। रात के अंधेरों में हम भी ये कहते हैं कि क्या मंजिल नजर आती है। दोनों ही बातें अलग अलग फलसफे लिए हैं, अलग अलग मायने लिए हैं, और अगर खींचतान ना करें तो कुछ भी इधर का उधर मतलब निकाल लेते हैं लोग। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमेशा एक एक पॉजिटिव नोट के साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि अंधेरे भी हैं कुदरत की तरफ से और उजाले भी हैं। कुछ लोग अंधेरे में ही मंजिल ढूंढ लेते हैं, कुछ उजालों का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो रोशनी का इंतज़ार कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इंतज़ार ही ना करते रहें। इसलिए अंधेरे भी कई बार मुफीद मंजिल दे जाते हैं। ज़रूरत है सिर्फ खंगालने की, एक इच्छा शक्ति की, एक ख़ास किस्म की विल पावर की, जो सब में होनी चाहिए दोस्तों, और बहुत लोगों में होती भी है। और कई बार हम किसी न किसी गफलत का शिकार हो जाते हैं, और वक्त है कि बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जाता है। जब मुट्ठी खाली रह जाती है, तब हमें लगता है कि उस अंधेरे में भी कोई उम्मीद की किरण थी जो हमसे कहीं भटक गई, या हम उससे भटक गए, हमने वक्त रहते उस पर ध्यान नहीं दिया। तो रात के अंधेरे बहुत गुनगुनाती सी बात करते हैं, खूबसूरत बात करते हैं, और कई उलझनों का सुलझान भी उनके हाथ में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में भी, इस अंधेरी रात में भी कुछ अच्छे गाने अच्छी जगह से, एक मंजिल से आप तक पहुंच रहे हैं, तो क्या बुरा है, उन्हें खींच लीजिए, झपट लीजिए और खो जाइए उन खूबसूरत यादों की तरफ, जो शायद दिन में आपको मौका नहीं देती होंगी अपनी तरफ आने का। थकान भर में कई बार तो संडे या किसी पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी भी पता नहीं चलती, किस खास ज़रूरी काम में निकल गई। तो अगर रात का अंधेरा आपके इर्द गिर्द है और आप जागे हुए हैं, नींद ने अभी आपको अपने खूबसूरत आगोश में नहीं लिया है, तो आप जुड़िए ना हमसे हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम का नाम है सुहानी रात, 90 और आसपास के गानों से सजा एक गुलदस्ता लेकर आते हैं हम हर रात इन्हीं चैनल मीटर्स पर। मीटर हैं 102.6, 102.6 आकाशवाणी रेनबो। और इसके अलावा अगर आप कहीं भी दूर हैं, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी किसी भी वजह से नहीं पहुँच पा रही है, तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और इसमें आकाशवाणी रेनबो दिल्ली ढूंढिए और पकड़ लीजिए हमें, और खो जाइए उन यादों में जिन्हें याद करने का ज़रिया हमारे ये खूबसूरत गाने बन रहे हैं, जो ख़ास तौर से हम लेकर आते हैं आप ही के लिए। आप जुड़े मेरे साथ, प्रोग्राम है सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 पर आप जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और नए और आने वाले हर सेकेंड के लिए आपको हमारी तरफ से मिलती रहें ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं ले लीजिए, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो 9868107070 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके ज़रिए कर सकते हैं आप हमसे बात। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुहानी रात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर

0: बीच तक
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
1: क्या

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की

0: वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने

0: नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्तिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है और घड़ी के 2:11 बजाने के संकेत हमें साफ साफ दिख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पर कंप्यूटर के, और ये भी पता चल रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता अभी जगे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और अब चूँकि घंटा बदल चुका है, घड़ी की सुइयाँ इधर उधर हो गई हैं और नया शो शुरू हो चुका है। नए शो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मैं रजत, आकाशवाणी रेनबो पर, और आप हैं मेरे साथ और प्रोग्राम का नाम है, शो का नाम है भुलाए ना बने। भुलाए ना बने में आप जुड़ चुके हैं आज के संस्करण में, आप सभी का कर रहा हूँ मैं तहे दिल स्वागत अभिनंदन, सिर्फ इस बात के साथ

0: कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि आपके दिल में ऐसी कौन सी बात है जिसे आप भूल नहीं पाए। देखिए, गाने तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा जो भुलाए ना बने, लेकिन कुछ बात अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और मतलब बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। 9868107070 पर, 9868107070 पर, क्योंकि प्रोग्राम में गाने तो मैं बढ़िया सुनवाऊंगा, ये वादा तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस को रिप्लाई करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी हम यादों के उस झरोखे में जाने का मादा उठा पाते हैं, कोशिश कर पाते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ाए हैं, क्योंकि फिर वो याद करने का, उनमें जाने का तरीका कैसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने डिप्रेशन की तरफ मुड़ जाएं, ऐसा तो होना ही नहीं है। सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि कोई बात अगर बोझ बनी बैठी है तो उसे दिल से निकाल दीजिए या किसी विश्वास पात्र के साथ साझा कर लीजिए, और अगर भूल सकते हैं तो भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई याद आपके याद आने पर, आपके दिल और दिमाग के झरोखे खटखटाने के बाद कुछ ऐसा महसूस कराती है कि हाँ, आप दिल खुश महसूस करें, थोड़ा सा हल्का महसूस करें। तो ऐसी ही बातों को हम, पता है क्या कहते हैं, भुलाए ना बने। ऐसी बातों को याद कर लेने में कोई हर्ज नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी वक्त अगर आपको ऐसा मिलता है, वक्त का कोई कोना अगर आपको इजाज़त देता है कि वहाँ बैठकर उस तरह की यादों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, थोड़ी देर के लिए ही सही उनके साथ जी सकें, उठ सकें, बैठ सकें, कुछ बाँट सकें, खट्टी मीठी बातें, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से अगर आपके चेहरों पर स्माइल आती है, मुस्कान आती है, तो ये उसके बनिस्पत ही है कि आप दुखी हों, है ना। खामखा टेंशन में, डिप्रेशन में, वैसे ही बहुत समस्याएं हमारे इर्द गिर्द, हमारे अतराफ के, हम उनसे निकलना चाहें तो भी कई बार नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी कोई कोशिश जो उनसे लड़ने की सूझबूझ देती हो हमें, उनसे लड़ने की ताकत देती हो हमें, कुछ देर के लिए मुस्कान हमारे चेहरे पर लाती हो, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा देती हो, तो उसे जगह दें, उसका स्वागत करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी यादों में। मैं यही कहूँगा कार्यक्रम के शुरू में, और कार्यक्रम का आगाज़ चूंकि हम एक खूबसूरत गाने से कर ही चुके हैं, आगे भी बढ़िया गाने आएंगे, आपको यादों की तरफ खींच लेने वाले गाने आएंगे, इस वादे के साथ बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और आप जुड़े हैं कार्यक्रम, चूंकि कहना चाहिए आप जुड़े हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने में, मेरे यानी रजत के साथ। वक्त हो चला है 2:14 घड़ी के मुताबिक।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4-5 रेनबो पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1-2 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं।

ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चांद की आर्ट तो अभी है भी और नहीं भी है, क्योंकि कहीं कहीं बादलों ने आसमान को अभी भी थोड़ा सा ना अपने आगोश में लिया हुआ है। और दिल्ली NCR इस वक्त कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा के झोंके जो है ना पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा है। और मौसम की ये जो आँख मिचौली है, ये अमूमन तो होती है, चलती है, लेकिन कई बार मौसम की जानकारी से बेमौसमी झरोके से झांकना भी कह देते हैं मौसम का। और वो कह देते हैं कि भाई बारिश अभी तो मुफीद नहीं, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ी है पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो दखल होना भी चाहिए बादलों का और बारिश का, तभी ज़िंदगी जो है आसान होगी नीचे। क्योंकि मेहनत बहुत करनी है, देश को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, तो ऐसी मशक्क़त जब हम करते हैं तो कहीं कहीं मौसम का जो संतुलन है वो हमें हमारा सहयोगी बनता देखना चाहिए। और अब क्योंकि ये तो अपने हाथ की बात है नहीं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हर मौसम को जिए, उसका लुत्फ़ उठाएँ और मौसम के हिसाब से एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। ज़्यादा गर्मी है बाहर तो कुछ इस तरह की एहतियात बरत के चलें, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, और बारिश है तो भी एहतियात बरत के चलें, लेकिन लुत्फ़ उठाएँ, आनंद लें। और क्योंकि ये कुदरत का तोहफा है, चाहे बादल हो, लू हो, गर्मी हो, कहीं ना कहीं इसके अगर थोड़े थोड़े नुकसान हैं तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो उन फ़ायदों का पर अपना फोकस करें, अपना ध्यान दें, और उन फ़ायदों का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, घर में हों, घर से बाहर हों, अपना ध्यान ज़रूर रखें, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है चूँकि मिडनाइट मेलोडीज़, और इस प्रोग्राम में अभी आपने साथिया फिल्म से साधना सरगम और साथियों को सुना, आगे भी हम इसी तरह की नए पुराने गानों को आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी कार्यक्रम में। फिलहाल जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं हमारे साथ। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप मुझे सुन सकते हैं, मेरे गानों को सुन सकते हैं, और इस चैनल पर आने वाले हर शो को सुन सकते हैं 24 घंटे। और कुछ कहना चाहें तो 9868107070 पर कह सकते हैं। लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे कि थोड़ा सा गुजारिश है आपसे कि फरमाइश है, इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेखा जोखा तैयार होता है हमारे कार्यक्रमों का, तो रिक्वेस्ट अगर आप भेज रहे हैं तो उसी मोड की भेजें जिस मोड पर हम प्रोग्राम चला रहे हैं। थोड़ा पुराने गानों के बीच में नए गाने और नए में बहुत पुराने गाने, थोड़ा सा जो उसका समायोजन है मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन अब चूंकि शो आपका है, हम आपके हैं, ये चैनल भी आप ही का है, इसलिए इख्तियार तो पूरा है आपका, लेकिन बस थोड़ी सी एक उलझन हो जाती है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, आपके सामने साझा की। और कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने बिना आपके आपकी इच्छा मन में हुई और हम पहुंच गए वो गाना लेकर। अब ये पहला गाना आपने सुना तो समझ ही गए होंगे कि इस किस ढर्रे पर ये कार्यक्रम जाने वाला है, तो बस उस ढर्रे के लिए तैयार रखें अपने आप को आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। मैं हूँ रजत, आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है मिडनाइट मेलोडीज।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जोराज ब्लानार ने उनका स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन मैच में जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हराया। ग्रुप एफ के एक अन्य मैच में नीदरलैंड और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

4:12 वक्त हो चला है कार्यक्रम सारे गामा का और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं रजत आपके साथ और प्रोग्राम में सबसे पहला गीत अभी आपने मोहम्मद अजीज़ और नितिन मुकेश के युगल स्वरों में सुना। फिल्म थी खुदगर्ज, लेट 80s की ये फिल्म थी और यहीं से थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और सारे गामा की मधुरिम धुनों को और मधुरिम बनाएंगे ताकि आने वाला दिन, क्योंकि सप्ताह का आरंभ है और हम चाहेंगे कि ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिलें। आप शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षण से जुड़े हैं या किसी भी कंपनी में, किसी संगठन में कार्यरत हैं, आपके लिए ये हफ्ता, आने वाला वीक जो कि आज से शुरू हो गया है, आपके लिए शुभ हो। और

0: हमारे गीत आपकी कितनी मदद कर सकते हैं ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट करने की दिन को और मुस्कान के साथ जीने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। शुरू करते हैं कार्यक्रम को, क्या शुरू तो हो ही चुका है, आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। आप जुड़े हैं सारेगामा प्रोग्राम में मेरे यानी रजत के साथ, आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार

जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की दो दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। फ्रांस का एवियन शहर आज से शुरू हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे विश्व के नेता और शिष्टमंडल तीन दिन के आयोजन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों G7 देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करेंगे। G7 देशों में फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज विराट 1 का इंजन खराब होने के कारण डूब गया। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन मैच में जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 5:11 आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं हमारे साथ। हमारी दैनिक प्रस्तुति, हमारी नियमित प्रस्तुति भक्ति संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आराधना से। अभी भी इस फिल्म सूर्या के इस गीत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आराधना में आप सभी का बहुत बहुत भावनापूर्ण स्वागत, भक्तिपूर्ण स्वागत। मैं हूँ रजत, स्वीकार कीजिए मेरा हार्दिक अभिनंदन। आराधना कार्यक्रम में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।